FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस वक्त प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेब और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से स्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम चैटबॉट समाधान का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव।

0: और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई का सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में पूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल

0: भारत 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। आराधना में आइए सबसे पहले करें अपनी मातृभूमि को नमन इस देश वंदना के साथ।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी देश वंदना। आइए अब करें ईश वंदना सुधा मल्होत्रा के गाय इस शिव भजन के साथ।

सुधा मल्होत्रा के स्वर में अभी हमने सुना शिव भजन। आइए कार्यक्रम आराधना में अब सुनते हैं तुलसीदास की रचना शीला वर्मा की आवाज में।

शीला वर्मा की आवाज़ में अभी हमने सुना तुलसीदास कृत राम भजन। आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में अगली भक्ति रचना।

0: FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। समय हो चला है श्रोताओं कार्यक्रम खेती की बात का। इसमें आज जानकारी दी जाएगी जैविक खेती के लाभ के बारे में। जानकारी दे रहे हैं त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। आजकल शरीर में बढ़त आनी बानी के रोग और बीमारी ला देख के ऐसे लगत है संगवारी हो कि ये जो रासायनिक खेती है एला बंद करके फिर से अपन परंपरागत और जैविक खेती हमला शुरू कर देना चाहिए। काबर के स्वास्थ्य ले बढ़ के जीवन में कुछ नहीं है। जब शरीर स्वस्थ रही तभी सब काम होता सही ढंग ले हो सके। जैविक खेती के अब्बड़ कन फायदा है तो हमला समझदारी से काम लेते हुए जैविक खेती ला फिर से शुरू करना है। हरियर खाद है, केचुआ खाद है, कंपोस्ट, ये कर प्रयोग करे ले माटी सुधरते और माटी में आवश्यक पोषक तत्व बने रहते। संगे संग जैविक खेती के प्रयोग ले माटी में कार्बनिक पदार्थ के मात्रा तको बढ़ते, जेखर ले भुइया में पानी सोखे के क्षमता बढ़ते। पानी सोखे के क्षमता जब भुइया में बढ़ते तो मां नमी जो है अधिक समय ले बने रहते, अधिक समय तक के रुकते, तो फसल में बार बार पानी देहे बर तको नहीं पड़े। सिंचाई बर पानी के भी बचत होते। पानी पलोए बर जोन भी यंत्र हमन उपयोग में करथन ओखरो उपयोग बहुत कम करे बर पड़े लगते। जैविक खेती ले जोन किसान मन जुड़े हैं और जुड़त हैं उमन ये पावत हैं कि रासायनिक खेती के अपेक्षा जोन उर्वरक है, कीटनाशक है, ओ जोन निर्भरता है वो बहुत कम हो जाते। जैविक खेती में खर्चा जोन है काफी कम होते। आजकल जैविक जोन उत्पाद है ओखर बाजार में आजकल स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए लोगन मन में जागरूकता आए लगे है। बाजार में जैविक रूप ले जोन उगाए गए फसल है, सब्जी है, अनाज है, ओखर मांग बहुत ज्यादा बढ़े लगे है, जेखर कारण ओखर मूल्य घला रासायनिक उत्पाद ले ज्यादा मिलते। संगे संग में भारत सरकार ढले जैविक खेती अपनाने वाला जो किसान भाई है ओमल्ला आनी बानी के प्रोत्साहन वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण तको उपलब्ध कराए जा रहे है। जैविक खेती सही मायने में देखे जाए तो जहर मुक्त खेती है। जैविक उत्पाद में कीटनाशक के हानिकारक नहीं हुए संगवारी हो, जौन उपभोक्ता और किसान दोनों के स्वास्थ्य पर बड़ लाभदायक है। जैविक विधि ले उपजाए फसल, सब्जी, अन्न, फल उत्पाद मन में विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट ये के बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते, जिन्हा बहुत अकन अध्ययन के द्वारा प्रमाणित करे जा चुके हैं। जैविक खेती के सबले बड़े ये फायदा है कि ये प्रणाली से भूजल प्रदूषित हो से बचते, जहरीला रसायन के प्रयोग ले पारिस्थितिक तंत्र ला बहुत ज्यादा नुकसान होते। यही जो नुकसान है वोला जैविक खेती अपना के रोके जा सकते। जैविक खेती से खेत में रसायन के इस्तेमाल नहीं हुए, मित्र कीट जैसे कि केचुआ है, मधुमक्खी है, ये मन सुरक्षित हो जाते। जैविक खेती के माध्यम ले कार्बन उत्सर्जन तको कम होते और स्वस्थ मिट्टी अधिक कार्बन संग्रहित करे में सक्षम होते। तो कहे मतलब जैविक खेती से बहुत अधिक लाभ है और जैविक खेती अपनावा और जीवन ला स्वस्थ बनावा। राम राम, जय जोहार।
0: जैविक खेती के लाभ, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात। FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है।

सुबह की 6:35 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं श्री रामचरित मानस गान का। मुख्य गायन स्वर है लता मंगेशकर और साथियों की। संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगल वाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हूं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं, समय है चिंतन का। आज का विषय है संतोष धन। आलेख है श्री सुरेश तिवारी का।

ज़ेन फ़कीर लिंची से किसी ने पूछा, तुम्हारी साधना क्या है? उसने कहा, भूख लगती है तो खाना खा लेता हूँ, और जब प्यास लगती है तो पानी पी लेता हूँ, और जब नींद आती है तो सो जाता हूँ। तो पूछने वाले ने कहा, लेकिन ये तो सभी साधारण लोग करते हैं। इस पर लिंची ने जवाब दिया, मैं कौन सा असाधारण हूँ, मैं साधारण से भी साधारण हूँ। उस आदमी ने फिर पूछा, फिर फायदा क्या है? लिंची ने कहा, फायदा बहुत है, संतुष्ट हूं, और क्या फायदा। आज अपने सामने हर एक आदमी का चेहरा हम रखें तो कुछ उल्टी ही तस्वीर नजर आती है। कोई भी हमें संतुष्ट नजर नहीं आता है। एक आपाधापी है सबके पास, कोई किसी बात के लिए भाग रहा है तो कोई किसी बात के लिए। औसत आदमी के पास चाहे जो भी हो पर संतोष जरा नहीं है। आदमी ने अपने हिस्से में जो भी पाया है उसे वो कम लगता है। हर आदमी ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहता है। इसलिए सार्वजनिक जीवन में बेचैनी भी बहुत ज्यादा है। आदमी ने अपने आसपास ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं कि उसे जरा भी शांति नहीं मिलती। कभी हम विचार करें तो लगता है कि लालसा ने, चीजों के प्रति मोह ने और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने सबको परेशान कर रखा है। कोई भी आदमी अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वो जो है या जिस हाल में है, कम से कम उस हाल से वो संतुष्ट नहीं है। वो किसी और की तरह की स्थिति और जगह पाना चाहता है। ये चाह उसके भीतर लगातार बनी रहती है, और यही कारण है कि वो न तो आज संतुष्ट दिखता है और न ही उसके भीतर आगे भी संतुष्टि आएगी ऐसा दिखाई देता है। सुनी हुई बात है, अफ्रीका के एक गांव में यूनेस्को की तरफ से नल लगाए गए, पानी के नल लगाए गए। उस गांव में अब तक एक कुआं था, लेकिन कुछ ही दिन बाद गांव के बूढ़ों ने आकर खबर दी कि हम क्षमा चाहते हैं, ये पाइप अलग कर दिया जाए क्योंकि हमारे गांव की सारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। वे लोग बहुत हैरान हुए। व्यवस्था करने वाले लोगों ने कहा कि ये क्या पागलपन की बात कर रहे हो। जवाब में गांव के बूढ़ों ने कहा, इस पाइप की वजह से गांव की पुरानी और मौलिक चीज चली गई है, अपनापन चला गया है। कुआं तो हमारा प्राण था, वहां हम मिलते थे, वहीं सुबह हमारी स्त्रियां मिलती थीं, सांझ हम वहां बैठकर गपशप करते थे। कुआं तो बर्बाद हो गया, अब वहां कोई जाने वाला नहीं रहा। अब तो हर एक घर में पानी पहुंच गया, तो वहां कोई आता ही नहीं, तो पूरी कम्युनिटी फीलिंग खत्म हो गई। यानी हमारा जो एक समूह था, हम जो एक साथ जीते थे, वो खत्म ही हो गया। एक एक आदमी अलग अलग हो गया। इसलिए हम ये जो पाइप है उसे बिल्कुल नहीं चाहते हैं। नए और पुराने तरीके के जीवन से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। सुविधाएं जिस गति से बढ़ रही हैं, आदमी की जिंदगी उसी अनुपात में सिकुड़ती जा रही है। आदमी बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित होता चला जा रहा है। सिर्फ अपना परिवार ही एकमात्र धुरी रह गई है। सामाजिक जीवन में पहले जैसी जीवंतता नहीं है। सालों पहले किसी सामाजिक आयोजन में, संयुक्त परिवार के आयोजन में लोग आत्मीयता के साथ जुटते थे, पर आज ऐसे आयोजन

0: औपचारिक रह गए हैं। समय की कमी बताकर निकट से निकट का आदमी अपनों से भाग रहा है और बाद में सोचता है कि उतनी तेजी से वो ऐसे आयोजनों से निकल तो आया है, पर क्या वास्तव में उसके पास समय की कमी थी? समय की कमी तो आज एक बहाने की तरह हो गई है। मेल जोल कम होने और अपनी बात ठीक से न कर पाने, अपना दर्द ठीक से न बता पाने के कारण एक अलग तरह की बेचैनी हर आदमी के पीछे घर कर रही है। अभिव्यक्ति की कमी से दर्द बढ़ रहा है, पीड़ा बढ़ रही है और उसी अनुपात से संतुष्टि घट रही है। एक विचार ये भी है, पानी में लकीरें बनाते हैं, बनती है, बनते ही मिट जाती हैं, पर फर्क है आकाश में लकीरें बनती ही नहीं। कोई अपनी उंगली खींचता है आकाश में, अंगुली खींच जाती है, लकीर नहीं बनती, मिटने का कोई सवाल नहीं है। इसी तरह हम सोचें कि हमें संतुष्टि क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हम संतुष्ट होना नहीं चाहते हैं। हम अपनी पहुंच से कहीं ज्यादा चीजें पाना चाहते हैं, अपने अच्छे विचार हमने खो दिए हैं। एक दूसरे से स्पर्धा ने हमारी संतुष्टि छीनी है। संतुष्टि तो तभी मिल सकती है जो हमारे पास है, उसी में आनंद लें, ये कठिन तो है, असंभव नहीं।
1: संतोष धन, इस विषय पर अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम चिंतन। आलेख था श्री सुरेश तिवारी का। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:50 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज दिन में 10:55 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे कार्यक्रम मन की बात। इसके तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद का अनुप्रसारण आकाशवाणी रायपुर से किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे। समय होगा आज सुबह 7:10 पर। ट्रैफिक अपडेट का प्रसारण किया जाएगा सुबह 7:05 पर। सुबह 7:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इसमें आज चर्चा होगी त्वचा रोग पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं आज सुबह 7:40 पर। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर का प्रसारण किया जाएगा सुबह 8:30 पर। दिन में 10 बजे का समय होगा नन्हे बच्चों के कार्यक्रम आओ बच्चों का। इसमें सामयिक चर्चा में सुनेगा माता पिता दिवस और वर्ल्ड मिल्क डे पर बच्चों से चर्चा। प्रायोजित कार्यक्रम गिब मास कोचिंग सेंटर बहतराई बिलासपुर की बच्चों की प्रस्तुति आप सुन सकते हैं। कार्यक्रम नए तराने का आनंद आप ले सकते हैं दिन में 10:30 पर।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का समय होगा संध्या 5 बजे। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी सुनिएगा संध्या 6:05 पर। और कार्यक्रम कानून की बात में आज आप सुनेंगे जिला धमतरी के असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री मयंक ठाकुर से घरेलू हिंसा एवं समाज में व्याप्त कुरूतियों के संबंध में कानूनी सहायता पर जानकारी। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 7:20 पर चलेंगे ग्राम सभा की और इसमें बेरा के गोट का विषय होगा सामयिक कृषि कार्य। साथ ही सुनिएगा फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे कार्य

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के समारोह में रक्षा कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने में सीपी ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात

0: टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार।

0: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त सुबह की 7:05 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है यातायात नियमों पर आधारित कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट, जिसे लेकर आ रहे हैं उमा शंकर पांडे।
1: नमस्कार, ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर में उमा शंकर पांडे से आप सुन रहे हैं अपने जिले की आज की यातायात की स्थिति। आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर नगर निगम अर्थात शहरी क्षेत्र की सभी सड़कों, चौक चौराहों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह शहर से बाहर भी सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग के अलावा सभी ग्रामीण सड़कों में भी सुगम आवागमन बना हुआ है। अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में विभिन्न प्रकार के वाहनों की भी संख्या सड़कों में बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में सहज सुरक्षित आवागमन कठिन है। सड़कों में वाहनों का घनत्व बहुत अधिक है, उसमें भी तेज रफ्तार। ऐसे में थोड़ी सी चूक बड़ी से बड़ी आफत बन सकती है। इसी चूक का परिणाम है कि प्रतिदिन छोटी से बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो ही रही हैं। लोग घायल हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। इसकी पीड़ा वे ही जानते हैं जिन्होंने इन हादसों में अपनों को खोया है। दोस्तों, इसलिए यदि हम इन छोटी छोटी सावधानियों को अपना कर चलें तो बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जैसे सबसे पहले जिस वाहन में आप सफर कर रहे हैं वह पूरी तरह स्वस्थ हो, अर्थात टायर, ब्रेक, लाइट, गियर, स्टेरिंग आदि बिल्कुल सही काम कर रहे हो। सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण वाहनों को तेज गति में होना पाया गया है, अतः सीमित गति में चले। किसी भी दिशा में मुड़ने से पूर्व रात में इंडिकेटर लाइट और दिन में हाथ से संकेत जरूर करें। वाहन चलाते नजरें सामने सड़क पर रखें, न कि अगल बगल सौंदर्य दर्शन में। वाहन चलाते मोबाइल का प्रयोग हरगिज न करें। ओवरलोड माल या यात्री कभी न चले। दो पहिया में तीन सवारी कभी न चले और हमेशा हेलमेट पहनकर ही यात्रा करें। कार में सीट बेल्ट लगाकर ही चले। नशा कर वाहन भूल कर न चलाएं और क्रोध, मानसिक तनाव या बीमार होने पर वाहन न चलाएं। स्टंट से हमेशा बचकर रहें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये तो था आज का ट्रैफिक अपडेट। इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज दिन में 10:30 पर। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज दिन में 10:55 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे कार्यक्रम मन की बात, और इसके तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद का अनुप्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से किया जाएगा। श्रोताओं, कार्यक्रम आओ बच्चों आप सुनेंगे आज दिन में 10:00 प्रस्तुति होगी लिंडा मनोज की। इसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा माता पिता दिवस और वर्ल्ड मिल्क डे पर बच्चों से चर्चा। साथ ही सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम गिबमास कोचिंग सेंटर बहतराई बिलासपुर के बच्चों की प्रस्तुति। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त सुबह की 7:10 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में हम रिले करेंगे आकाशवाणी की 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देश की वाणी आकाशवाणी। इसमें सुनिए आकाशवाणी के पूर्व उपनिदेशक कार्यक्रम श्री लखनलाल भौर्य से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुत करता है दीपक हटवार।

0: आवाज का ये सफर ऑल इंडिया रेडियो के नाम से शुरू हुआ 8 जून 1936 को, जो अपने 90 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। 9 दशकों की इस लंबी सृजन यात्रा में आकाशवाणी से कितने ही नाम जुड़े, कुछ मशहूर हुए, कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो गए, मगर आकाशवाणी के लिए समर्पित ऐसे कलाकारों और प्रस्तुतकर्ताओं के अलावा कुछ ऐसे भी नाम रहे हैं जिनके कांधों पर केंद्र की संपूर्ण जिम्मेदारियां भी रही हैं। देश की वाणी आकाशवाणी में आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व से। आप हैं सहज सरल व्यक्तित्व के धनी आकाशवाणी के पूर्व निदेशक कार्यक्रम श्री लखनलाल भौर्य। इस कार्यक्रम में आप बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद दीपक जी, और नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
0: भौर्य साहब, आपका नाम आकाशवाणी बिलासपुर, अंबिकापुर और रायपुर के श्रोता विगत कई वर्षों तक सुनते रहे हैं। अगर आकाशवाणी से आपकी यात्रा की शुरुआत करें तो ये शुरुआत किस सन में कहां से हुई थी?
1: मैं 10 जून 1991 आकाशवाणी सूरतगढ़ राजस्थान से जुड़ा
0: जी,
1: और उस समय शुरुआती जो पोस्टिंग कार्यक्रम अधिशासी के रूप में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा डायरेक्ट भर्ती अभियान में हुआ था, और करीबन वहाँ पर 2-3 साल बिताया, और आकाशवाणी सूरतगढ़ में जो कार्य अनुभव प्रारंभिक दौर में हुआ वो मेरे लिए एक आधार बना और आगे वही काम आया।
0: बड़े साहब, उसके बाद फिर सूरतगढ़ के बाद आपकी शख्सियत का कारवां कौन से आकाशवाणी केंद्र तक पहुंचा?
1: आकाशवाणी सूरतगढ़ के बाद 1993 में आया आकाशवाणी बिलासपुर
0: जी,
1: और वो आकाशवाणी बिलासपुर में लगभग 14 साल वहाँ पर कार्यकाल रहा, और 14 साल में हमने सभी तरह के कार्यक्रमों, चाहे स्टूडियो के अंदर हो चाहे बाहर हो, बाह्य ध्वन्यांकन के आधार पर बहुत से ऐसे कार्यक्रम वहाँ 14 साल के अंतर्गत किया। और उसके बाद 2007 में आकाशवाणी अंबिकापुर स्थानांतरित होकर के गया, और आकाशवाणी अंबिकापुर में लगभग 11 साल, और आकाशवाणी अंबिकापुर का थोड़ा से अलग ही लोक संगीत और अलग आदिवासी संगीत का माहौल रहा, तो वहाँ अलग तरीके से जानने समझने सुनने का अवसर मिला, लोगों के बीच जाता था, लोक कलाकारों को जोड़ने का काफ़ी वहाँ पर प्रयास भी किया। बहुत से ऐसे कलाकार थे जो कहते थे कि आप आए हैं, आप अपने स्थानीय स्तर के हैं, तो ऐसे सुनने में लगता था कि अरे बड़े अच्छी बात है, मैं आप ही लोगों के लिए आया हूँ। तो ऐसे तरह से वहाँ आकाशवाणी अंबिकापुर में 11 साल का कार्यकाल रहा।
0: मौर्य साहब, आकाशवाणी बिलासपुर, अंबिकापुर और उसके बाद फिर रायपुर, इन तीन केंद्रों में आपके जीवन के बहुत लंबे समय को आपने गुजारा है। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो जिस वक्त, जैसा कि 1997 के आसपास आपने बताया कि आप आकाशवाणी बिलासपुर गए, हाँ, तो उस वक्त तो बिलासपुर केंद्र की शुरुआत हुई थी ना?
1: हाँ, 1991 में
0: जी,
1: जितने LRS केंद्र खुले थे लगभग 10-12, उसमें आकाशवाणी बिलासपुर भी रहा
0: जी,
1: और आकाशवाणी बिलासपुर जो स्थानीय केंद्र है वो पूरे भारत में 12वें जो केंद्रों में से एक रहा, और वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम शुरू किया गया जो

0: सही मायने में कहा गया कि वो प्राइमरी जो केंद्र होते हैं उससे अलग भिन्न कार्यक्रम हो, लेकिन बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते थे लगभग लगभग बड़े होते थे। बहुत अच्छा अनुभव हुआ और वहाँ पर मतदान, मतगणना और क्रिकेट मैच वगैरह भी, हम एक क्रिकेट मैच वहाँ कोरबा से किए
1: जी,
0: जो पाकिस्तान और भारत रिटायर्ड खिलाड़ी होते हैं उनका बढ़िया कार्यक्रम सजीव प्रसारण, श्रोताओं ने आनंद भी लिया सजीव प्रसारण का, जो हमको भी बड़ा अलग अनुभव भी रहा।
1: भौरिया साहब, आप चूंकि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं,
0: जी हाँ,
1: और पहली पोस्टिंग तो आपने बताया कि राजस्थान में आपकी हुई थी,
0: सूरतगढ़, हाँ हाँ,
1: तो राजस्थान से जब आप अपने अंचल में छत्तीसगढ़ में आ गए, उस समय तो हम अविभाजित मध्य प्रदेश में थे जब आप बिलासपुर आए, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की माटी की जो सौंधी खुशबू है वो तो आकाशवाणी अंबिकापुर, रायपुर और बिलासपुर, इन तीनों केंद्रों से उस वक्त भी आती थी। तो छत्तीसगढ़ी संगीत को लेकर बिलासपुर में किस तरह का कार्य आपने किया?
0: बहुत बढ़िया आपका ये, मैं वहाँ जब रहता जरूर था सूरतगढ़ में, लेकिन जब मैं बहुत पहले से जुड़ा था आकाशवाणी रायपुर, आता जाता था, नाटकों से जुड़ा था तो आना जाना हुआ था, होता था जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज के भी विद्यार्थी था तो आना जाना आकाशवाणी रायपुर में होता था, तो गीत संगीत वगैरह सुनता था। लेकिन जब सूरतगढ़ में था तो यहाँ के आकाशवाणी का अनुभव होने लगा, मैं अगर जाता तो यहाँ पर जो लोक संगीत है और दूसरे संगीत, कला, साहित्य जो मैं समझता हूँ, जानता हूँ, उसमें मैं कितना सहयोग कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं आया आकाशवाणी बिलासपुर तो लगा कि मैं अपना मायके आ गया हूँ।
1: जी,
0: आदमी जब अपना मायके आता है और मायके का अनुभव करता है तो एक निसंकोच, मतलब उसमें एक भाव आता है कि ये तो मेरा जाना पहचाना है, ये लोग अपने हैं और यहाँ पर जो मैं करूँगा मुझे सहयोग मिलेगा। और ये होता भी गया, बिलासपुर के जो बहुत से गांव सुने होंगे, पंडरिया, मस्तूरी, मुंगेली
1: जी,
0: और उधर कोरबा भी बिलासपुर के अंतर्गत आता था, ये सब क्षेत्र जो है कलाकारों का गढ़ रहा।
1: भौरिया साहब, जब कोई आकाशवाणी केंद्र नया शुरू होता है,
0: हाँ हाँ,
1: तो उसकी शुरुआत के साथ साथ प्रसारण की विभिन्न विधाओं से जुड़े लोगों को वहाँ आमंत्रित करना, एकत्रित करना, उनकी रिकॉर्डिंग करना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि एक नई शुरुआत उस अंचल में हो रही होती है। तो बिलासपुर की शुरुआत के बाद में अलग अलग विषयों के टॉकर्स भी आपने ढूंढे होंगे, वार्ताकारों को भी आपने ढूंढा होगा, किस तरह का उस समय माहौल?
0: बिल्कुल दीपक जी, सही बात है और ये होना भी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, वहाँ पर वार्ताकार भी, चाहे वो विज्ञान क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और अलग अलग प्रतिभा, चाहे वो बाल कलाकार हो, युवा कलाकार हो, और यहाँ तक कि कुछ कुछ ऐसा कलाकार भी होते थे जिनको मौका नहीं मिलता था दूर होने के कारण, क्योंकि रायपुर और बिलासपुर अभी तो नज़दीक महसूस करते हैं लेकिन उस दरमियान दूर महसूस करते, दूरी महसूस करते थे
1: जी।
0: तो बहुत से उधर के कलाकार इधर आने में, क्योंकि लोग अपना पहचान, अपना जान ढूंढते हैं जहाँ पर हम अपनी बात रख सकें, तो उस आधार पे तो हमने काफ़ी लोगों को जोड़ा, काफ़ी हम कॉलेज स्कूल जाते थे, एक कार्यक्रम भी किए थे महाविद्यालय प्रांगण से, तो कॉलेजेस में जाते थे, महाविद्यालयों में जाते थे, वहाँ पर सभी विधाओं के, चाहे वो खेल हो, साहित्य हो, क्योंकि जो होता है कॉलेज में परिपक्वता के मंच पर आ गया होता है और जानने समझने और सीखने के उस स्तर में आता है, तो हम आधे घंटे का जो महाविद्यालय से करते थे उसमें कार्यक्रम करते थे, तो उस जो आप कह रहे हैं वार्ताकार भी मिलते थे, कवि भी मिलते थे और कलाकार जो कला साहित्य वो सब मिलते थे, तो हम लिस्ट बना के, सूची बना के लाते थे अलग अलग युवाओं के कार्यक्रम में, इनसे मिलिए वगैरह में उनको मौका देते थे, तो इस तरह से काफ़ी जुड़ते हैं।
1: भौरिया साहब, बिलासपुर से फिर आपकी सृजन की यात्रा अंबिकापुर की ओर आगे बढ़ी,
0: हाँ,
1: और अंबिकापुर हमारे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर का एक जिला है, और वहाँ पर सरगुजा क्षेत्र की अपनी एक बोली भी अलग तरह की होती है, वहाँ का संगीत भी थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी से अलग तरह का होता है, तो वहाँ जाने के बाद में किस किस तरह के कार्यक्रम आपने करवाए, और खासकर

0: संगीत की अगर हम बात करें तो
1: जैसे गया वहाँ पर तो लोक संगीत मैं ही देखने लग गया,
0: जी
1: और लोक संगीत किसी भी केंद्र का एक जान होता है, क्योंकि जान इस लिहाज से क्योंकि गांव हमारा आकाशवाणी का एक बड़ा आधार है। ग्रामीण जो जो श्रोता हैं, गांव के जो कलाकार हैं, आकाशवाणी का मूल आधार होता है। और इस तरह से जब मैं वहाँ देखा गीत संगीत का अच्छा माहौल है, लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए भी हैं। बहुत से ऐसे गीत संगीत को मैं समझता भी था, क्योंकि छत्तीसगढ़ी और सरगुजिया ज़्यादा अंतर नहीं है, छत्तीसगढ़ी और सरगुजिया में लहजे का है, एक फूट का अंतर है, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मैं जल्दी से समझने लग गया। और जब उन लोगों के लोक संगीत के कुछ लिख के लाते थे, उसको देखता था, पढ़ता था, तो मैं वो टोक भी देता था, ये ऐसा गीत नहीं है, इसको ऐसा करो, ये नहीं बनेगा इसमें ऐसा, तो इस तरह से वो भी समझने लगे। और हम जब कहते थे कि ऐसा करो, तो वो ऐसा करने भी लगे। तो लोक गीत जो है, छत्तीसगढ़ी लोक गीत के आसपास होने की वजह से वहाँ के कर्मा, ददरिया और बायर, भिनसरिहा, अधरतिया, ये सब जो है बहुत लोकप्रिय रहा। तो वो सब कलाकारों के हमने मौका दिया, और वो जो कलाकार हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर भी गए। एक दो कलाकार ऐसे हुए जो लगातार आते थे और कहते थे कि हमको सर बाहर भेजिए और हम जाना चाहते हैं, तो उनको हमको बताना पड़ता था कि आप बी हाई होंगे, ए ग्रेड होंगे, तो तभी आपको मौका मिलेगा। तो परीक्षा थे, पास होते चले गए, तो इनको हम मौका मौका भी देते गए। और जब मौका मिलता गया तो लोग आगे बढ़ते गए। बहुत से ऐसे कलाकार वहाँ हुए हैं, अभी भी हैं, जो भोपाल, दिल्ली और बड़े मंचों पर प्रस्तुति दे रहे हैं, और बहुत से अवसरों पे आकाशवाणी के द्वारा भी लोक संगीत संध्या में उनको अवसर देते हैं मंच के माध्यम से। और वहाँ के जो लोक संगीत है, पूरे मैं तो भारत कहूँ क्या कहूँ, पूरे विश्व में अलग किस्म का है, क्योंकि वाद्य वहाँ पर जो विविधता लिए हुए हैं, वो वाद्य यंत्र अद्भुत होता है, जो मांदर में और एक सिंगोटी बाजा जो कहते हैं, निशान
0: जी
1: बाजा का जो कहते
0: जी
1: हैं, उसमें अलग किस्म के उपकरण लगा के जो बजाते हैं और
0: जी
1: डांस करते हैं, तो उनका जो रिदम बनता है वो बहुत
0: हाँ
1: आकर्षक और दर्शनीय होता है
0: जी
1: मंचों पर। और गाते हैं तो अच्छा ही लगता है उनका, बहुत बढ़िया होता
0: अरे साहब, अंबिकापुर से फिर आपकी शख्सियत का कारवां
1: है।
0: आकाशवाणी रायपुर में आया, और रायपुर में रहते हुए आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें आप कभी भूल।
1: यहाँ पर चूंकि जैसे आया बहुत से कार्यक्रम तो स्थापित रहा, और आकाशवाणी से चूंकि हमेशा जुड़ा, चाहे श्रोता के रूप में हो और एक पदेन उसका के रूप में कार्य जिम्मेदारी की बात हो, तो दोनों दृष्टिकोण से आकाशवाणी रायपुर शुरू से जैसे मैं होश संभाला और समझने लगा कि आकाशवाणी से बहुत से कार्यक्रम होते हैं, तो आकाशवाणी रायपुर को मैं शुरू से सुनता रहा हूँ। और बहुत से कार्यक्रम यहाँ स्थापित कार्यक्रम रहा है, और मैं तो आया ही हूँ आकाशवाणी रायपुर सुन करके। आकाशवाणी के युवानी कार्यक्रम में रोजगार सूचना जो देते थे, तो उस रोजगार सूचना में रोजगार संबंधी जानकारी देते थे, तो वही सुन के मैंने आवेदन दिल्ली से, यूपीएससी से, संघ लोक सेवा आयोग से मंगवाया, भरा, और भराने के बाद परीक्षा दिया और यहाँ आ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया। तो इस तरह से आकाशवाणी रायपुर में बहुत से कार्यक्रम स्थापित रहा। जब मध्य प्रदेश में रहा तो सवाल जनसाधारण के, जवाब मुख्यमंत्री के जैसे कार्यक्रम, तो
0: जी
1: उसमें भी हमारे गांव से एकजुट होकर के मैं सहयोग करता था, तो चिट्ठी भेजते थे, चाहे भोपाल हो, यहाँ शायद भेजते थे, यहाँ से वहाँ भेजते थे, तो वो भी मेरे को ध्यान में आ रहा है। तो ऐसा आकाशवाणी रायपुर का काफ़ी श्रोता रहा हूँ, और यहाँ जुड़ करके अलग पता चला है। तो यहाँ जैसे आया तो बहुत से कार्यक्रम तो पहले से चल ही रहा था, कुछ कुछ हमने आप सब के सहयोग से, पंकज जी भी यहाँ पर जब रहे तो भी थे,

0: जुड़ करके बहुत से ऐसे, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो और विज्ञान संबंधी हो, साहित्यिक हो, तो उसको हमने एक नए रूप में, अभी भी स्वास्थ्य जानकारी कर्स वगैरह का होता है, तो वो हमने आगे बढ़ाया और लगभग लगभग मेरे को लगता है साल दो साल ये चल रहा है, अभी भी जारी
1: लगातार
0: है, लगातार चल रहा है
1: डॉक्टर की सलाह।
0: तो डॉक्टर की सलाह, और मुझे विशेष रूप से इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अभाव रहा है
1: जी।
0: और ग्रामीण अंचल में सब तरह के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होने से लोग जागरूक भी होते हैं स्वास्थ्य के बारे में और अपने इस सर्वे जितना क्या किया जा सकता है कर भी सकते हैं। तो हमने पूरा प्रयास किया मिलजुल करके, चौपाल कार्यक्रम जो उस समय आया, जिसके अंतर्गत फिर बाद में किसान वाणी का भी रूप दिया गया कि, और चौपाल के अंतर्गत ही किसान वाणी को शुरू किया गया। तो किसान वाणी में बहुत से क्षेत्रों में जहाँ जहाँ नहीं जा पा रहे थे वहाँ भी मैं भी जाने लगा। कोरोना काल में भी किसान वाणी चौपाल देख रहे थे, मैं कहा जाएंगे और किसानों को इसमें जोड़े रखें क्योंकि इस समय कोरोना काल में किसानी तो बंद होना नहीं है
1: जी।
0: तो किसानी को इसमें जोड़ करके उनको श्रोताओं को बता सकते हैं। तो ये भी हमने किया और जितने कृषि महाविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है उस दरमियान, तो ये भी एक अलग किस्म का था। जो कार्य उस दरमियान नहीं होने थे, मतलब हो सकते थे, वो भी जाके हमने किया।
1: भौरिया साहब, हमने सुना है कि आप खुद भी एक कलाकार हैं।
0: हाँ, मैं शुरू से मंची कलाकार रहा और प्राइमरी स्कूल से नाटकों के माध्यम से जुड़ा, मंची कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमको एक नट नटी टाइप का, जोकर टाइप का उपयोग करते थे तो उसमें भाग लेता था। उस तरह से प्राइमरी स्कूल, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, और कॉलेज में गया तो फिर भारतीय जन नाट्य संघ से जुड़ गया।
1: अच्छा।
0: तो बड़े मंच मुझे मिला, तो कुछ कुछ हम गाना गाते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो बहुत से अवसरों पे गाना मुझे कभी कभी याद भी आ जाता।
1: कोई गाना याद होगा?
0: हाँ, वो है, चल खल्लाड़ी जाबो संगी मोर, चल खल्लाड़ी जाबो संगी मोर, जामर जोड़ी मिल के खल्लाड़ी जाबो, चल खल्लाड़ी जाबो संगी मोर, जामर जोड़ी मिल के खल्लाड़ी जाबो, उहाँ लेबो मुर्रा खाबो उत्ता धुर्रा, उहाँ लेबो मुर्रा खाबो उत्ता धुर्रा, चल खल्लाड़ी जाबो, चल खल्लाड़ी जाबो संगी मोर, जामर जोड़ी मिल के खल्लाड़ी जाबो।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो भौरिया साहब, आप चूंकि कॉलेज के समय, स्कूल के समय गाते भी थे, नाटक भी थे, तो आकाशवाणी में आने के बाद किसी रेडियो नाटक में भी काम किया क्या आपने?
0: रेडियो नाटक में सूरतगढ़ में किया था।
1: अच्छा।
0: पीहर के नौकर उसमें।
1: हाँ,
0: अब इधर आता गया चूंकि बिलासपुर में लोगों का ऐसा रहा नहीं, नाटक निर्देशन वगैरह भी नहीं रहा, और अंबिकापुर में गया तो वहां हुआ, लेकिन अब खुद ही ऐसा और खुद ही ले लें तो ऐसा कुछ ना हो, ये दूसरे के मौका को या अपना ऐसा करके मेरे में थोड़ा एक झिझक भी आया, मैं महसूस भी करने लगा आपत्ति ना हो जाए, तो ऐसे ऐसे करके तो वहाँ सूरतगढ़ में पीहर के नौकर वगैरह एक दो ऐसे नाटकों में ढाई तीन साल में जुड़ा रहा।
1: भौरिया साहब, सेवानिवृत्ति के बाद अभी आपका समय कैसा कट रहा है?
0: दीपक जी, बहुत अच्छा कट रहा है। क्या है, नौकरी में एक टाइम टेबल में आना, टाइम टेबल में काम करना, टाइम टेबल तक रहना, मतलब समय में प्रतिबंधन रहा है और जरूरी है, कार्य के दौरान बहुत से कार्य होते हैं जिसको संपादित करना है तो समय में करना है, समय में रहना है। तो उसके बाद देखा स्वतंत्र हो गया हूँ तो बढ़िया, मेरा दिनचर्या मेरे मुताबिक होता है, ज़्यादा मैं अंतर नहीं किया हूँ। सवेरे उठ जाता हूँ और तैयार हो जाता हूँ, फिर मेरा थोड़ा से योगासन भी होता है और सामने सड़क वगैरह है अपने कॉलोनी में, उसमें भी दो चार राउंड लेके उसमें घूमते रहता हूँ। बहुत से घरेलू कार्य मैं अपने से करता हूँ।
1: तो भौरिया साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
0: हाँ।
1: कि आपके चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई दे रही है ये यूं ही बरकरार रहे, आप मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। इस कार्यक्रम के लिए आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 7:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इसमें आज आप सुनेंगे त्वचा रोग पर जानकारी।
1: सेहत की बात डॉक्टर के साथ इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
2: डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन क्योर, लिंक रोड, नारायण प्लाजा, बिलासपुर। फोन नंबर है 07828093301 और 7587453632।
3: सेहत की बात डॉक्टर के साथ इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं इस अंचल के जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे। पिछले 3 अंकों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कुष्ठ रोग के बारे में। आइए इस अंक में और विस्तार से जानते हैं कि कुष्ठ रोग में विकृति क्यों होती है, कब होती है, इसका इलाज कैसे हो सकता है और हमारे प्रशासन ने इस संदर्भ में क्या क्या सुविधाएं हमें दी हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत।
4: धन्यवाद आकाशवाणी बिलासपुर एवं धन्यवाद सुप्रिया जी मुझे इस विषय पे अपनी बात दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। चूँकि मैं इस बीमारी को पिछले लगभग 15 वर्षों से इस समाज में देख रहा हूँ, इलाज और उसका इलाज कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि अभी भी मीन्स हम पूरे भारत देश की लगभग 1/3 ऊर्जा का बिजली जो है हम देते हैं। हमारे राज्य की बिजली से बहुत सारे राज्य रोशन होते हैं और हमारे राज्य में हम कुष्ठ जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देख के मुझे बड़ा असंतोष सा होता था। आपके माध्यम से इसके बचाव के उपाय पहुँचाकर मुझे हार्दिक खुशी होगी। कुष्ठ को लेकर शासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है
3: जी।
4: शासन को ये पता है कि कुष्ठ की बीमारी से ग्रसित लोग अक्सर दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में या बहुत दूर दूर जहाँ तक ट्रेन बसों की सुविधाएं नहीं होती वहाँ पे इसके मरीज अमूमन ज़्यादा रहते हैं, ये बात पता है। इस बात को ध्यान रख कर ही हमारी सरकार ने NELP नाम का कार्यक्रम बनाया हुआ है
3: जी जी।
4: और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि दूरस्थ ग्रामीण अंचल तक आपको ये दवाई मिल पाए, आसानी से मिल पाए, क्योंकि जब इस बीमारी की दवा आपको आपके घर के पास और आसानी से मिलेगी तभी आप इसका ट्रीटमेंट पूरा कर पाएंगे।
3: सही बात
4: है ना। तो क्या होता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो लगभग गाँव या कई गाँव के स्तर पर होता है, उसके ऊपर हम उठते हैं तो एक होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके ऊपर होता है जिला चिकित्सालय, उसके ऊपर होता है मेडिकल कॉलेज, उसके ऊपर होता है रीजनल सेंटर। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पे MBBS डॉक्टर बैठते हैं जो अमूमन कुष्ठ जैसी बीमारियों के लिए प्रशिक्षित होते हैं
3: जी।
4: विशेष प्रशिक्षण 15 दिन का दिया जाता है, कभी कई बार उसको रिपीट भी किया जाता है। तो और वहाँ पे आप जाके दिखा सकते हैं। और उससे भी छोटा जो हमारे बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM होते हैं
3: जी,
4: शासन ये दवा का जो ब्लिस्टर पैक है उनको देकर रखती है एक रजिस्टर के साथ, और उनकी ये ड्यूटी है कि लगभग एक गांव पे एक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता होता है, लगभग मोटा मोटा जिसको हम लोग आशा वर्कर बोलते हैं ANM, तो जिसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने एरिए के कुष्ठ रोगी को यदि वो आने में असमर्थ है या किसी कारणवश नहीं आ पाया है तो उसके घर जाके ये जो है दवाई पहुंचाए।
3: क्या बात।
4: और अब ये सोचिए कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता तक ये दवाई रहती है तो आपको ये आपके घर के समीप ही मिल जाएगी। तो यदि आपको आपके पास के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिल पाया तो आप CHC चले जाइए जो अमूमन 30-40 किलोमीटर के दायरे में आ ही जाता है
3: जी।
4: नहीं होता है तो जिला चिकित्सालय में चले जाइए, वहाँ पे तो मिलेगी ही मिलेगी। और ये तो दवा आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है इसका मैंने बताया
3: बता दिया जी जी।
4: और

0: दूसरा ये कि यदि आप दवा तो आपको पास से मिल जाएगी, यदि आप सपोज दैट कि आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर साहब अनुपस्थित रहते हैं, किसी कारण नहीं रहते हैं, तो आप CHC या ऐसे ही जिला चिकित्सालय में जाके आप पता कर सकते हैं। इस बीमारी को जो टेस्ट होता है वो अमूमन जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज में होता है। जैसे एक तो होता है बीमारी को लक्षण को देख के पहचानना,
1: जी
0: और एक होता है कि जब वो बीमारी आंशिक रूप से या शुरुआती अवस्था में होती तो उस समय टेस्ट के सहारे उसको पहचानना, है ना। तो टेस्ट की जो सुविधा है अमूमन हमारे छत्तीसगढ़ में या तो जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज में, खास
1: जी
0: तौर से यदि हम बोलें तो सारे मेडिकल कॉलेज में स्लिट स्मियर की सुविधा उपलब्ध रहती है। कुछ जिला चिकित्सालय में है, कुछ में नहीं है, लेकिन हाँ सारे मेडिकल कॉलेज में और सारे रीजनल सेंटर्स में है। रीजनल
1: मतलब
0: सेंटर्स,
1: लक्षणों से आपको जांच नहीं हो पा रही है तो आप उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए
0: हाँ
1: कंफर्म करने के लिए मेडिकल कॉलेज या जिला चिकित्सालय में करवा
0: हाँ
1: सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी
0: कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि नहीं, मीन्स ये चकत्ता है, मीन्स ये नहीं है, आपको बता दिया गया है, फिर भी आपका मन नहीं मानता कि नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, तो आप चाहेंगे कि कोई जांच से प्रूव हो जाता तो अच्छा रहता,
1: पक्का हो
0: तो इसके
1: जाता।
0: लिए आप मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं। स्लिट स्मियर बहुत ही सस्ता सुगम टेस्ट होता है, 2 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन 10 में से 6 से 7 मरीजों को ही ये पकड़ पाता है, 3 से 4 मरीजों को ये पकड़ नहीं पाता। ऐसी स्थिति में पंच बायोप्सी की जाती है या चमड़ी का एक टुकड़ा काट के उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है।
1: जी
0: ये सुविधा यूजुअली जिला चिकित्सालय और रीजनल सेंटर में होती है। तो ऐसा नहीं है कि स्लिट स्मियर आपका निगेटिव आ गया और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आपको कुष्ठ है, तो आप मीन्स आप
1: पक्की
0: आगे हाँ
1: जांच।
0: पक्की जांच के लिए आप बायोप्सी भी करवा सकते हैं। तो ये तो है कि दवाई आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर ऊपर तक सब जगह मिलेगी, जांच जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज या रीजनल सेंटर में आपकी जांच हो जाएगी। अब आते हैं डिफॉर्मिटी पे। इस
1: जी डॉक्टर साहब,
0: बीमारी
1: अलग अलग स्तर पर ये
0: जी
1: बीमारी है,
0: जी
1: जैसा कि आपने बताया कि विकृति के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे, तो किस स्थिति में ये तकलीफें बढ़ना शुरू हो जाती हैं?
0: यदि हमने कुष्ठ का ट्रीटमेंट लेट चालू किया है तब हमारे शरीर में विकृति आने लगती है। ये विकृति क्या होती है, इसको हम बोलते हैं क्लॉ हैंड, मतलब कि हाथ और पैर की उंगलियां मुड़ने लगती हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा हमने शुरू में बताया था कि ये कीटाणु, कुष्ठ का कीटाणु नसों में घर बनाता है और घर बना के नस को दबाता है। अब वो नस को दबाएगा तो नस अपना काम नहीं कर पाएगी, जिसके कारण जो है इस तरह की विकृतियां आती हैं। कई बार तो कुष्ठ को हम विकृति देखकर पहचान लेते हैं,
1: जी
0: है ना। आपकी सारी उंगलियां सीधी हो रही हैं, पंख जैसे उंगलियों को फैलाएं और फिर सिकोड़ें, क्या ये आप कर पा रहे हैं? पूरी उंगलियों को सीधा कर पा रहे हैं? शुरुआती अवस्था में आप देखें यदि किस तरह का आपको शक हो तो, और यदि किसी भी प्रकार की विकृति आप में नजर आती है तो आप पास के चिकित्सक से मिलें, और जब तक नहीं मिलते हैं हाथों की तेल से मालिश करें, हाथ को रख लें टेबल पे और नारियल तेल या सरसों तेल से उसकी मालिश करें, इससे आप विकृति को रोक सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक हुआ कि आप मालिश कीजिए। विकृति के लिए सर्जरीज होती है जो अमूमन रीजनल सेंटर में होती है। छत्तीसगढ़ का रीजनल सेंटर शासकीय क्षेत्र में रायपुर, लालपुर, धमतरी रोड पे लालपुर गांव है,
1: जी
0: वहां
1: जी
0: पे
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो रीजनल लेप्रोसी सेंटर है। वहां पे सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है, वहां पे आपका रहना, खाना, सर्जरी और इलाज के पैसे, आने जाने के पैसे भी आपको सरकार ही देती है। यहाँ तक कि विशेष परिस्थितियों में कुष्ठ के मरीजों को रहने के लिए फ्री में घर और एक छोटा रोजगार भी दिया जाता है ताकि वो रहें, क्योंकि तो इसका इलाज साल भर 2 साल चलता है, तो वहाँ रहें और रह के छोटा मोटा काम करें और अपने फैमिली का निर्वहन कर सकें। तो रीजनल जो लेवल होता है वो कई राज्यों के स्तर पे एक होता है अमूमन, जैसे हमारा जो लालपुर है,
1: छत्तीसगढ़ का लालपुर में है।
0: छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ भाग महाराष्ट्र का लिए हुए लालपुर है।
1: अच्छा
0: हाँ, तो
1: जी
0: यहाँ
1: जी
0: पे आसपास के राज्यों के मध्य प्रदेश से भी मरीज आते हैं, यहाँ पे रिहैबिलिटेशन की भी सुविधा होती है।
1: देखिए कितनी अच्छी बात हमारे श्रोताओं को आज पता चल रही है आपके माध्यम से, कि एक तो इलाज पहले कराना है समय रहते ही, जैसे ही लक्षण आए जो आपने शुरू से अब तक बताया, और यदि इलाज के दौरान ये पता चल जाता है कुष्ठ है तब तो आप इलाज से ही ठीक हो जाएंगे दवाइयों से, लेकिन देर हो चुकी है फिर भी डिफॉर्मिटी शुरू हो रही है, आपको दिख रहा है तब भी विलम्ब नहीं हुआ है। देखिए वो आपने इस जगह का भी नाम बताया जहाँ जाकर हमारे इस डिफॉर्मिटी को ठीक भी किया जा सकता। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
2: सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इस कार्यक्रम के

0: ये थे
1: डॉक्टर अजय पांडे, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्किन क्योर, लिंक रोड, नारायण प्लाजा, बिलासपुर। फोन नंबर है 07828093301 और 7587453632।
2: सेहत की बात डॉक्टर के साथ, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रही थी FM बैंड 103.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 7:40 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सदाबहार नगमे का।

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सदाबहार नगमे में बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं आप सभी का। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है लोफर।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और आइए अब सुनते हैं आरडी बर्मन की संगीत निर्देशन में गुलजार का लिखा गीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम है घर।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अप

0: आर हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: एफएमएनडिक्स 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आप आकाशवाणी बिलासपुर सुन रही हैं और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। इसी कड़ी में आइए अब सुनते हैं सुनैना फिल्म का गीत यशुदास की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

यशुदास की आवाज़ में सुनैना फिल्म का गीत बना सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गीत। तो इसी के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अंक हम यहीं संपन्न करते हैं। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर

0: समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
4: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारी

0: अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना

0: ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 30 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब

0: बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 आखिर किस टीम के हाथों में जाए। और अब बात महिला क्रिकेट की। खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश में बवंडर, अमर उजाला ने चित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। आईपीएल के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में डुबने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। के साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू शेयर हिज थॉट्स इन मन की बात प्रोग्राम ऑन आकाशवाणी एट 11 AM टुडे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज इंडियन नेवी फोर्स्ड पाकिस्तान नेवी टू रिमेन कन्फाइंड टू इट्स पोर्ट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। म्यांमार प्रेसिडेंट उमिन आउंग लैंग अराइव्स इन न्यू दिल्ली ऑन अ 5-day विजिट टू इंडिया ऑफ

छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी श्रोता मित्रों का। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पुष्पा साव। तो चलिए श्रोताओं, करते हैं आप कार्यक्रम की शुरुआत आप सभी के भेजे गए फरमाइशी लोकगीतों के साथ। तो पहला लोकगीत हमने लिया है संतोष शुक्ला और साथियों की आवाजों में, और इस लोकगीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं कोरबी बेलतरा से मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुनीता, सुमित, सोमू, मंजीत और मानस राज। करही भदर बालोद से ये पत्र आया है पुरुषोत्तम निर्मलकर, श्रीमती शारदा निर्मलकर, कुमारी लोचन विद्यार्थी, गिन्नी गुड़िया और खिलेश कुमार का। आपने भी इसी लोकगीत के लिए फरमाइश भेजी है। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हमारे श्रोता साथी हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र सेन और यहीं से हैं खुशी रौनक सेन। हथनीपारा भाटापारा से हैं दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश वर्मा, हरीश, किरण, दुलारी वर्मा। ये खत आया है हठरी बाजार भाटापारा से मोतीलाल देवदास, श्रीमती गौतम देवदास, मुकेश और पवन गोलू देवदास का। ग्राम दामन बोर्ड से हैं कुमार यादव, श्रीमती अमृत यादव, कामदेव और लेखूराम यादव। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से ये पत्र लिखा है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। आपने भी इसी लोकगीत के लिए फरमाइश भेजी है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर संतोष शुक्ला और साथियों का गाया ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

अभी आपने सुना संतोष शुक्ला और साथियों का गाया ये लोकगीत। अगले लोकगीत की फरमाइश भेजी है हमारे इन श्रोता साथियों ने। आप हैं परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारनी और खुमेंद्र मसिया, यहीं से हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रिहान। ये खत आया है ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त का। शांति नगर भाटापारा से हैं रमजान खान, सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयाज, अल्फैज खान, महजबीन बानो, सादिया खान, हजीरुन निशा। मेहता नगर भाटापारा से हैं दुर्गेश साहू, समीर टंडन और अश्वनी कुमार। ग्राम रसेड़ा कलतरा से ये पत्र लिखा है मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या साहू और डिकेश कुमार साहू ने। यहीं से है वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। भाटापारा से हमारे श्रोता साथी हैं बचकामल, मोतीलाल यादव,

बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुआराम वर्मा, सूरज वारीकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम लतेल साहू, मारवाड़ी कुआं भाटापारा से ही हैं सियाराम, अश्वनी पांडे, सोनाडी से हैं सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा और रायपुर से हैं नीलू मेघ। बलौदा अकल तरसी हमारी श्रोता साथी हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर पंचराम मिर्झा और साथियों का गाया ये लोकगीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोक गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर का। इसी कड़ी में आइए अब सुनते हैं ममता चंद्राकर का गाया ये लोकगीत, जिसे पसंद किया है आप सभी ने। आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। भांटापारा दतरंगी से ये खत आया है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और छाविंद्र कुमार वर्मा का। आपने भी इसी लोकगीत के लिए पत्र भेजा है। भाटापारा से ही हैं हम दान सिंह रावत, पद्मनी रावत, नीरज, शुभम और सौरभ रावत। इंदिरानगर रायगढ़ से ये खत आया है शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम राजा का। इन्होंने भी इसी लोकगीत के लिए फरमाइश भेजी है। ग्राम बसीवार से हैं शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, रामप्रसाद, कुमारी आंचल, चंचल, चांदनी, विनय कुमार, वर्षा और मनोज कुमार कंवर। शांतिनगर पाली से हैं विष्णु सिंह कोरम, श्रीमती संतोषी कोरम, कुमारी आरती, कुमारी पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और उनका समस्त कोरम परिवार। दतरिंगी से हैं नुखेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि और पुष्पेंद्र मणि वर्मा। बेमित्रा से ये खत आया है श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा, आरती, भाव्या और श्रीमती सुषमा सारथी का। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ममता चंद्राकर का गाया ये लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम माटी के स्वर का अंतिम लोक गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं माया खापर्डे की आवाज़ में। और इस लोकगीत को पसंद किया है आप सभी ने। आप हैं देवरी भाटापारा से कन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मायाराम रजक, पुनीश्वर फानीश्वर, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाव्या और कुमारी टान्या रजक। रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये खत आया है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। चिरमिरी गोदरी पारा से हैं एलपी साहू, नंदनी साहू, निधि और कामेश्वर प्रसाद साहू। गांव मिस्दा शिवरी नारायण से हैं भुवनेश्वर प्रसाद साहू, पार्वती साहू, दीप्ति साहू, साथ में हैं पुनीराम कश्यप। सुभाष वार्ड भाटापारा से हैं एमएल यादव, अजय कुमार, अमित अमीन, गिरीश करण यादव, युवान ढाबेश यादव। हथबंद नेवधा से हैं सेवक राम, टुपेंद्र कुमार, तुलेंद्र कुमार यादव और देव कुमार यादव। ये खत आया है ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति का। नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज, आप हैं लुथरा खमरिया से। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर माया खापर्डे का गाया ये लोकगीत।

माया खापर्डे के गाए इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम माटी के स्वर हम यहीं संपन्न करते हैं। कार्यक्रम में पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम माटी के स्वर द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 49 नूतन कॉलोनी सरकंडा आकाशवाणी बिलासपुर। हमारा पिन नंबर है 495006। तो दीजिए अब हमें अनुमति इस कार्यक्रम से जिसका नाम है माटी के स्वर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, इस वक्त दिन के 9 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बचना ए हसीनों इस फिल्म का गाना के और शिल्पा राव की आवाजों में, अन्विता दत्त गुप्तन का लिखा हुआ गाना, विशाल शेखर का संगीत।

जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें सबसे पहले कुछ अल्पकालिक प्रभाव दिखने लगते हैं, जैसे कि हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, और इन तात्कालिक प्रभावों से हृदय प्रणाली पर दबाव पड़ता है और शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। कई धूम्रपान करने वाले लोगों में सहन शक्ति में कमी हो जाती है, लगातार खांसी और स्वाद और गंदगी अनुभूति में भी कमी होने लगती है। ये बात हम आज कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं। आयम कलाम फिल्म का गाना, के की आवाज में मानवेंद्र का लिखा हुआ गाना, अभिषेक राय का संगीत।

अब हम बात करते हैं तंबाकू सेवन के जो दीर्घकालिक परिणाम होते हैं उसके बारे में। फेफड़ों का कैंसर जो है वो तंबाकू से होने वाली सबसे मुख्य बीमारी है। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये भी जो बीमारियां हैं फेफड़ों की कार्य क्षमता को धीरे धीरे कम करती चली जाती है और उसके बाद नष्ट कर देती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और तंबाकू जो लोग उपयोग करते हैं उनमें मुंह के कैंसर, मसूड़ों की बीमारी और दांतों की जो बीमारी है वो बहुत देखी जाती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनजर प्रतिवर्ष 31 मई को ये दिन मनाया जाता है। और अगर हम चाहें तो ये जो तंबाकू है इसके सेवन से बच सकते हैं और लाखों लोगों की जो जान इस के सेवन से चली जाती है उसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए आज नो टोबेको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम तंबाकू को यानी कि टोबेको को कहें नो और अपने स्वास्थ्य को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना के आवाज़ में कौसर मुनीर के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना इकबाल फिल्म से के सलीम मर्चेंट, डोमिनिक क्लिंटन और साथियों की आवाजें, इरफान सिद्दीकी के बोल, संगीत है सलीम सुलेमान का।

इकबाल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा किया जाए।

0: मौसम ऐसा है कि आंगन आंगन में बरस रहा है रिमझिम पानी।
1: रिमझिम बरसे पानी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहां वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास

का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935, अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी बानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

0: सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।
1: जहां हम

0: पढ़ो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है।
1: सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल विश्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल विश्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल विश्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल विश्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल विश्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल विश्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल विश्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल विश्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल विश्वास के लिए कई गाने गाए।

0: अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल बिस्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

सन 1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिप कर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी, अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल विश्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल विश्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। आइए आकाशवाणी रायपुर से अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव कल 1 जून को होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे और खेत बचाओ अभियान देशभर में कल 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए लगभग पूरी कर ली है। इन चुनावों के लिए शनिवार रात 12 बजे प्रचार थम गया। इसके बाद से प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। त्रिस्तरीय

0: पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 से 640 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था और इस तरह से 1 जून को 107 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है, शेष 34 पदों पर मतदान होगा। इसी तरह जनपद सदस्य के 10 पदों के लिए 1 जून को मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष 5 स्थानों के लिए मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से और पंचायत चुनाव के लिए मत पेटी के माध्यम से मत डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज ऑन AIR वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण न्यूज ऑन AIR, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। खेत बचाओ अभियान देशभर में कल 1 जून से 30 जून तक चला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए से व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों में सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। यह कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेशवासियों से तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तंबाकू सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज तीनों के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर कार्य करना चाहिए। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज अंतिम दिन है। इस महोत्सव में देशभर की 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। महोत्सव में बस्तर संभाग के जंगलों में मिलने वाले करीब 150 दुर्लभ किस्मों के आमों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये आम आदिवासी अंचल के स्थानीय हाट बाजार में उपलब्ध हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने चांपा स्टेशन में चौथी रेल लाइन को जोड़ने के लिए बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन के बीच प्रस्तावित नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। इस वजह से 7 से 19 जून के बीच रद्द की गई सभी ट्रेनें अब बहाल कर दी गई हैं, निर्धारित समय पर चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी अधिकृत पूछताछ सेवाओं तथा वेबसाइट से जरूर कर लें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे और खेत बचाओ अभियान देशभर में कल 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त दिन की 10 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है नन्हे बच्चों का कार्यक्रम आओ बच्चों। प्रस्तुति है लिंटा मनोज की।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: आप सभी को आपकी दीदी लिंटा का प्यार। आशा करते हैं अपना अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए आप सभी परिवारजनों के साथ गर्मी की छुट्टियों का आनंद भी उठा रहे हैं। वाकई बच्चों, गर्मी की छुट्टियां ही वो समय होता है जब आप मम्मी पापा, दादा दादी और भाई बहनों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं और हर पल का मजा भी लेते हैं। वैसे बच्चों, आपको मालूम है?

0: कल हम माता पिता दिवस भी मना रहे हैं। दुनिया में यदि कोई आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, आपकी छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराता है, और जब आप कोई परेशानी में होते हैं या दुखी होते हैं आपकी हर तरह से मदद करता है, तो वो सिर्फ आपके माता पिता ही होते हैं। बच्चों, आपकी मम्मी जहां आपको बहुत प्यार करती है, वहीं पापा आपके जीवन में आगे बढ़ने का साहस और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सम्मान और धन्यवाद देने के लिए हर वर्ष हम 1 जून को माता पिता दिवस मनाते हैं। बच्चों, जो कि हमें ये संदेश भी देता है कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, जो हमें अच्छे संस्कार, शिक्षा और जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता होगा बच्चों कि आप खेल में, पढ़ाई में या अन्य चीजों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मम्मी पापा से बात तो दूर, उनके साथ कुछ देर बैठना भी भूल जाते हैं, है ना। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ये बात सोची है कि आपके माता पिता आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं? मम्मी दिन भर किचन में, ऑफिस में रहकर आपके बारे में सोचती है, पापा भी आपकी हर जरूरतों का ध्यान रखते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, और दोनों यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और एक अच्छे बच्चे भी बने। इसलिए बच्चों, ये दिन हमें सिखाता है कि केवल एक दिन ही नहीं, लेकिन हर दिन, हर पल आपको मम्मी पापा के लिए समय निकालना, उन्हें सम्मान देना और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और ऐसा करने से मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बच्चों, आपके चेहरे की एक छोटी सी मुस्कान, एक धन्यवाद का शब्द या मैं आपकी मदद करूं जैसे शब्द भी मम्मी और पापा को खुश कर देते हैं। बच्चों, इसलिए हमेशा उनकी बात ध्यान से सुने, कभी ऊंची आवाज में पलट कर उन्हें जवाब नहीं दें। मम्मी पापा आपको जो भी बातें सिखाते या समझाते हैं वो आपके अच्छाई के लिए ही होती है बच्चों, इसलिए उनकी अच्छी बातों को मानना और गलत आदतों से दूर रहना भी आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों, इसी प्रकार हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छा बच्चा भी बने, इसलिए मेहनत के साथ पढ़ाई करना और अपने भविष्य को बेहतर बनाना आपका कर्तव्य है। बच्चों, इसके अलावा घर के छोटे मोटे कामों में भी मम्मी पापा की आप मदद करें, जैसे कमरा साफ रखना, पौधों को पानी देना, सामान व्यवस्थित रखना, जो कि मम्मी पापा को खुशी देते हैं। बच्चों, और हाँ, मम्मी पापा के साथ कुछ समय भी बिताएं, उनसे आपकी बातें शेयर करें, उनके दिन भर की बातें उनसे सुने, ऐसा करने से उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से बच्चों, हमेशा मम्मी पापा से आप प्यार करें, उन्हें धन्यवाद बोलें और उन्हें ये भी बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं और जीवन में वे आपके लिए कितने खास हैं। हमें पूरा विश्वास है आप सभी प्यारे हैं, ऐसा जरूर करेंगे। चलिए, इस छोटी सी बातचीत के बाद आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम रूपी सफर में हमारा साथ देने और अपनी प्यारी प्यारी प्रस्तुतियों से हमारा मनोरंजन करने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं गिबमास कोचिंग सेंटर बेहतराई बिलासपुर के बच्चे। तो देर किस बात की, आइए जुड़ते हैं हम इनसे।
1: नमस्कार बच्चों, मैं नीलाद्री गुहा गिबमास कोचिंग सेंटर का संचालक हूं। हमारे यहां नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की कोचिंग संचालित होती है। हमारे संस्था को लगभग 12 वर्ष पूर्ण हो गया है। कोचिंग में छात्रों की संख्या की बजाय उनके गुणवत्ता पर हम विशेष ध्यान देते हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का विधिवत पढ़ाई कराई जाती है। पढ़ाई के साथ साथ मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास पर भी हम जोर देते हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। जो भी अभिभावक इस कोचिंग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें CGBSE और CBSE तथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों की पढ़ाई कराई जाती है, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9981247453 और 9131801214। धन्यवाद।
0: आइए सुनते हैं बच्चों सरस्वती वंदना। गीत की प्रस्तुति दे रही है निर्मिता गुहा।

0: पहा। धन्यवाद।
1: नमस्कार, मैं दिव्यांशी शाहू, मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। मैं उपस्थित करने जा रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता, जिस कविता का नाम है नहीं मांगता नहीं मांगता प्रभु, विपत्ति से मुझे बचाओ, त्राण करो, विपदा में निर्भीक रहूँ मैं, इतना हे भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, दुखों को मैं आप जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। कोई जब ना मदद को आए, मेरी हिम्मत टूट न जाए, जग जब धोखे पर धोखा दे और चोट पर चोट लगाए, अपने मन में हार ना मानूं, ऐसा नाथ विधान करो।

0: नमस्कार, मैं दिव्यांशी शाहू, मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। मैं उपस्थित करने जा रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता, जिस कविता का नाम है नहीं मांगता नहीं मांगता प्रभु, विपत्ति से मुझे बचाओ, त्राण करो, विपदा में निर्भीक रहूँ मैं, इतना हे भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, दुखों को मैं आप जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। कोई जब ना मदद को आए, मेरी हिम्मत टूट न जाए, जग जब धोखे पर धोखा दे और चोट पर चोट लगाए, अपने मन में हार ना मानूं, ऐसा नाथ विधान करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। नहीं मांगता प्रभु मेरी जीवन नैया पार करो, पार उतर जाऊं अपने बल, इतना हे करतार करो। नहीं मांगता हाथ बटाओ, मेरे सिर का बोझ घटाओ, आप बोझ अपना संभाल लूं, ऐसा बल संचार करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना हे भगवान करो। धन्यवाद।
1: जम्मो साथी मन ला हर्षित नेताम के गाढ़ा गाढ़ा जोहार। तो साथी मन, आज मैं यहाँ आप मन ला भारत के महान वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताना चाहता हूँ। तू मन जाना था साथी हुआ, अब्दुल कलाम के जन्म 15 अक्टूबर 1931 के तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक मुसलमान परिवार में हुए रहीस। तू मन ला पता है ओखर दादा के नाव जैन उलब्दीन रहीस, बेचारा नाविक रहीस। ओखर दाई के नाव जाना था? नहीं ना, मैं बताऊँ। ओखर दाई के नाव असी अम्मा रहीस। ओ हा घर के काम बूता ला करे, कलाम हा कम उम्र ले पेपर बाटे के काम करे, फिर ओहा ना संगी पढ़ाई लिखाई में सामान्य रहीसे, और हर चीज ला सीखे बर आगे रहे, ओखर दिमाग तेज रहीसे। ओहा ना साथी पढ़ाई लिखाई में घंटों समय देवे, बेचारा अपन स्कूल के पढ़ाई ला रामनाथपुरम के मेट्रिकुलेशन स्कूल ले पूरा करीस, और ओहा ना संगी पढ़े के बाद कॉलेज ला तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज ले पूरा करी। 1955 में ओहा मद्रास चल दीज, जहाँ ले ओहा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के शिक्षा ग्रहण करी। तू मन जाना था ओहा साल 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले इंजीनियरिंग के पढ़ाई पूरा करीज। आप मन ला पता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बनीज। बेचारा के जीवन मेहनत और प्रेरणा से भरे हवा। बेचारा साधारण परिवार ले होए के बाद घलो कठिन परिश्रम और शिक्षा के दम में बड़ी सफलता पाई। एक और जरूरी बात है संगवारी हो, ओह भारत के मिसाइल कार्यक्रम ला मजबूत बनाई, एकरे सेती APJ अब्दुल कलाम ला भारत के मिसाइल मैन घलो कही थे। हमार 11वें राष्ट्रपति अर्थात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा लइका मन ला बड़े सपना देखे और ओला पूरा करे बर प्रोत्साहित करत रहिन। साथियों, ओखर जिंदगी हमन ला बताते कि ईमानदारी, मेहनत और आत्मविश्वास ले कोनो मनखे सफलता पा सकते। डॉक्टर कलाम बड़े अच्छा गोट कहे है कि हम अपन भविष्य ला तो नहीं बदल सकन, लेकिन अपन आदत ला बदल सकतन, और निश्चित रूप ले तुम्हार आदत तुम्हार भविष्य ला बदल दी। धन्यवाद साथियों।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार पांडे कक्षा 9वीं का छात्र आप सबके सामने रोमांचक हंसी मजाक चुटकुले प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सुनिए दोस्तों, एक बार की बात है, गप्पू डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर से बोला, क्या आप बिना दर्द किए भी दांत निकाल लेते हो? तब डॉक्टर बोले, नहीं तो। फिर गप्पू बोला, लेकिन मैं तो निकाल लेता हूँ। फिर डॉक्टर बोले, कैसे बेटा? गप्पू बोला, ही ही ही ही। दोस्तों एक और सुनाता हूँ। एक बार क्लासरूम में टीचर ने संजू से कहा, संजू एक टोकरी में 10 आम है, उसमें से 2 आम सड़ गए, तो बताओ कितने आम बचेंगे? फिर संजू बोला, सर पूरे 10 आम बचेंगे। टीचर ने संजू से पूछा, वो कैसे? संजू बोला, सर सड़ने के बाद आम तो आम ही रहेगा ना, केला थोड़ी बन जाएगा। एक और सुनाता हूँ दोस्तों। एक बार अध्यापक ने छात्रों से पूछा, बच्चों बताओ अगर पृथ्वी गोल है तो इसका मतलब है इसके किनारे नहीं है। तब एक छात्र बोला, बिल्कुल सही सर, इसीलिए तो कहते हैं कि दुनिया में कोई कोना नहीं बचा। धन्यवाद।
3: समय का मोल, सभी सुनने वाले मेरे छोटे छोटे साथियों को मैं पीहू सिंगौर का प्यार भरा नमस्कार। मेरे छोटे छोटे साथियों, मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणा कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ।

0: एक सुंदर और समृद्ध गांव में रामदीन नाम का एक बहुत ही कुशल कुम्हार रहता था। रामदीन के हाथों में जैसे जादू था। वह मिट्टी के इतने सुंदर बर्तन और खिलौने बनाता था कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आते थे। रामदीन की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह अपने काम को कल पर टालने का आदी था। समय पर काम पूरा करना उसकी आदत नहीं थी। वह अक्सर आलस और गप्पे मारने अपना समय बिता देता था। जब भी कोई ग्राहक उससे अगले हफ्ता की शादी के लिए मटके मांगता तो वह मुस्कुरा कर कहता कि अभी तो बहुत दिन बाकी है, और उस काम को टाल देता था। दोस्तों, गांव के एक छोर पर सोहन नाम का एक कुम्हार रहता था। वह रामदीन जितना कुशल तो नहीं था, लेकिन समय का बहुत पाबंद और मेहनती था। गांव के मुखिया ने दोनों कुम्हारों के काम की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने दोनों को 100-100 किलो की अच्छी किस्म की मिट्टी दी। मुखिया ने कहा कि जो कल सुबह सूरज उगने तक सबसे सुंदर और मजबूत घड़े बनाएगा उसे राजमहल की ओर से पुरस्कार मिलेगा और साल भर का कच्चा माल मुफ्त मिलेगा। रामदीन ने सोचा कि 100 किलो मिट्टी के घड़े बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और वह इसे रात के कुछ ही घंटों में पूरा कर लेगा। बहुत समय होने का सोचकर रामदीन आराम करने चला गया और उसने काम को अगले दिन सुबह के लिए टाल दिया। सोहन ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत करके बड़ी बारीकी से मिट्टी के खूबसूरत और मजबूत घड़े बनाए। दूसरी ओर रामदीन पूरा समय सोता ही रहा और उसने अपना काम पूरा नहीं किया। दोस्तों, अगली सुबह मुखिया ने सोहन के बनाए खूबसूरत और मजबूत घड़े देखकर उसे विजेता घोषित कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें समय का मूल समझना चाहिए और तय समय में ही अपना हर कार्य को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ने वाला छात्र और आपका दोस्त यशवर्धन सिंह आपसे पूछने जा रहा हूँ कुछ मजेदार पहेलियाँ। क्या आप सभी तैयार हैं?
2: हाँ हाँ, तैयार हैं।
1: तो बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जिसका वजन कुछ नहीं पर कोई ज्यादा देर तक पकड़ नहीं सकता?
2: मैं बताऊँ।
1: ठीक है निमिषा, आप बताओ।
3: यशवर्धन भैया, इस पहेली का उत्तर है सांस।
1: दोस्तों, एक और पूछूं?
2: हाँ,
1: वो क्या है जो आपका पीछा करती है और अंधेरे में गायब हो जाती है?
2: मैं बताऊँ।
1: ठीक है तुषार, आप बताइए।
4: यशवर्धन, इस पहेली का उत्तर है दोस्त।
1: नहीं, दोस्त ये तो गलत उत्तर है।
2: मैं बताऊँ।
3: यशवर्धन भैया, वो चीज जो हमारा पीछा करती है और अंधेरे में गायब हो जाती है वो है हमारी परछाई।
1: एकदम सही उत्तर दिव्यांशी। अच्छा बताइए दोस्तों, ऐसा क्या है जो जन्म लेता है, बड़ा होता है लेकिन चलता नहीं?
2: मैं बताऊँ।
1: ठीक है कृष्णा, आप बताइए।
5: यशवर्धन, जो जन्म लेता है, बड़ा होता है लेकिन चलता नहीं, वो तो पेड़ है।
1: सही उत्तर कृष्णा।
6: नमस्कार दोस्तों, मैं निमिषा गुहा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवन से लिए गए एक प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जो उनके छात्र जीवन से जुड़ी घटना है, जिसका शीर्षक है मुझे बहुत पढ़ना है। दोस्तों, बाबा साहेब जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे उस समय वो अकेले ऐसे विद्यार्थी थे जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सबसे पहले पहुँचते थे और वे लाइब्रेरी बंद होने तक पढ़ते रहते थे। कभी कभी वे ज़्यादा समय भी वहाँ रुकते थे। लाइब्रेरी का एक कर्मचारी हर रोज अंबेडकर को देखा करता था। एक दिन उसने भीमराव से कहा, मैं आपको रोज देखता हूँ, आपकी उम्र के यहाँ कई लोग हैं, वे पढ़ाई के अलावा अन्य काम भी करते हैं, वे मौज मस्ती भी करते हैं, लेकिन आप हमेशा पढ़ाई ही करते हैं, ऐसा क्यों? अंबेडकर बोले, मुझे बहुत पढ़ना है क्योंकि मेरे पास भविष्य का एक बड़ा लक्ष्य है। मैं केवल अपने लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, देश में मुझसे जुड़े कई लोग हैं, मुझे उनके लिए शिक्षा से बहुत कुछ करना है। अंबेडकर की बातें सुनकर कर्मचारी हैरान रह गया। वो सोच में पड़ गया कि शिक्षा का दूरगामी लक्ष्य लेकर भी कोई विद्यार्थी इस तरह पढ़ाई कर सकता है। कर्मचारी ने

0: देखा कि अंबेडकर अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं की किताबें भी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। काफी समय बाद भारत में अंबेडकर और लाल बहादुर शास्त्री के बीच संस्कृत में वार्तालाप हुआ तो उन्हें देखकर सभी चौंक गए थे कि बाबा साहेब शास्त्री जी के साथ संस्कृत में वार्तालाप कर रहे हैं और उनका संस्कृत ज्ञान भी बहुत बेहतरीन था। दोस्तों, हमें बाबा साहेब के इस प्रेरक प्रसंग से इस बात की शिक्षा मिलती है कि शिक्षा का सदुपयोग तभी हो पाएगा जब किसी विद्यार्थी का परिश्रम, साधना और लगन इन तीनों के साथ लक्ष्य और भाषाएं भी स्पष्ट होंगी तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद।
1: सभी सुनने वाले श्रोताओं को लक्ष्य निराला का नमस्कार। जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी पर आधारित मेरी कविता सफलता की उड़ान। सफलता की सीढ़ी चढ़नी है तो मेहनत को अपनाना होगा, हर मुश्किल से लड़ते लड़ते खुद को मजबूत बनाना होगा। जो गिरकर फिर उठ जाता है वही शिखर तक जाता है। जीत उसी को मिलती है जो हार से नहीं घबराता है। रात अंधेरी चाहे कितनी भी हो, सवेरा फिर आ जाता है। जो चलते रहना जानता है वही मुकाम पाता है। मेहनत की धूप सहो तुम, तभी सफलता की छांव मिलेगी। पसीने की हर बूंद तुम्हारी एक नई पहचान बनेगी। जो खुद को तपाता है वही सोना कहलाता है। लक्ष्य को अपना बनाकर हर दिन आगे बढ़ते जाओ। रुकावटें चाहे आए कितनी, तुम कभी ना घबराओ। हौसले जिनके ऊंचे होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। सपनों को सच करना है तो नींद को त्यागना होगा। हर दिन नई कोशिश करके खुद को आगे बढ़ाना होगा। जो मेहनत को दोस्त बना ले वही सफलता पाता है। धन्यवाद।
2: सभी दोस्तों को असीम सिंह का सुख भरा नमस्कार। आज मैं आप सभी साथियों और सहपाठियों को उन गुणों से ज्ञात कराना चाहता हूं जो मैंने अपने इन 16 वर्षों के जीवन में सीखे। ये वो मानसिक गुण हैं जो जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, क्या आप में से कोई बता सकता है कि हम सबसे पहले किस गुण की बात करने वाले हैं?
3: सेल्फ डिसिप्लिन।
2: तुषार, आपने सही बोला पर इसमें छोटी सी चूक हो गई। ये केवल डिसिप्लिन है। दोस्तों, इसका नाम है डिसिप्लिन या अनुशासन। ये हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण आधार है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। ये केवल नियमों का पालन करना नहीं बल्कि अपने समय, विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखना है। जीवन में सही दिशा और मानसिक शांति पाने के लिए अनुशासन का होना बेहद आवश्यक है। चलो दूसरे मानसिक गुण की ओर बढ़ते हैं। वो गुण है दोस्तों आत्मनिर्भरता या सेल्फ डिपेंडेंस। दोस्तों, आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने जीवन के निर्णयों, जरूरतों और चुनौतियों के लिए खुद पर भरोसा करना। ये गुण व्यक्ति में आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और मानसिक मजबूती जगाता है। दूसरों की मदद लेना गलत नहीं, लेकिन आत्मनिर्भर इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। ये आपको स्वाभिमानी बनाता है और जीवन में सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। चलिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं तीसरे मानसिक गुण के बारे में जो है आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, ये वो आंतरिक शक्ति है जो हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा दिलाती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कठिन चुनौतियां आसान लगने लगती हैं। क्या आप सभी को पता है इसे सफलता की पहली सीढ़ी भी कहते हैं जो हमें असफलताओं से लड़कर आगे बढ़ना सिखाती है। खुद पर अटूट भरोसा ही साहस पैदा करता है जिससे हम अपने सपने सच कर पाते हैं। दोस्तों, चौथा और आखिरी गुण है करेज या साहस। ये भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। ये वो आंतरिक शक्ति है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने की प्रेरणा देती है। साहसी व्यक्ति चुनौतियों से डरता नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करता है। न्याय और अपने सपनों के लिए खड़ा होना ही सच्चा साहस है जो जीवन को सही दिशा देता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये गुण आपके जीवन में भी काम आए। थैंक यू।
4: सभी सुनने वाले श्रोताओं को कृष्णा साहू का नमस्कार। तो आइए साथियों, आज हम पर्यावरण पर आप सभी से चर्चा करते हैं। आज इस प्रदूषण भरे माहौल पर पर्यावरण संरक्षण करना बेहद आवश्यक है।

0: साथियों, इसके लिए हमें सभी बच्चों और युवकों को ही इसकी पहल करनी होगी। दोस्तों, हमें समझना होगा कि इसकी आवश्यकता क्यों है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी, जल, वायु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और प्राकृतिक संसाधन मिलाकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अगर पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा, तभी मानव जीवन स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। साथियों, प्रकृति हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें हमें देती है, जैसे शुद्ध हवा, जल, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन और छाया प्रदान करते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसके बदले में कपड़े का थैला का उपयोग करें और प्लास्टिक का उपयोग कम करें। हमारे आसपास प्रदूषण इतना बढ़ गया है जिससे वातावरण में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साथियों, जल संरक्षण भी पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है। पानी के बिना भी जीवन संभव नहीं है। दोस्तों, पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। वर्षा जल संचय करना चाहिए और जल स्रोतों को स्वच्छ रखना चाहिए। हमें अपने आसपास व घरों को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अगर साथियों हमारे आसपास कीटाणु मच्छर जैसे पनप उठेंगे, जिससे हमें बीमारी होने की संभावना होगी। साथियों, हमें विद्यालयों में भी बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए। यदि बचपन से ही हम प्रकृति का सम्मान करना सीखेंगे, तो ही आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में जीवन जी सकेंगी। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण हमारी अमूल्य धरोहर है। साथियों, अगर हम इसकी रक्षा करेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। आइए हम सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें और धरती को हरा भरा व स्वच्छ और सुंदर बनाएं। स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन। धन्यवाद।
1: तो साथियों, आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहती हूँ, वो विषय हर विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं इस विषय को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता से चालू करूँगी। जिंदगी को यूं ही नहीं बहने दूंगी, ख्वाबों को हकीकत में मैं गढ़ने दूंगी। मंजिल बड़ी है तो हौसले भी बड़े रखूंगी, एक दिन दुनिया में अपना नाम करूंगी। तो सर्वप्रथम सभी सुनने वाले श्रोताओं को निर्मिता गुहा का नमस्कार। और मैं आज आप सबसे कुछ अलग तरीके से जीवन के दृढ़ संकल्प के बारे में बात करूंगी, जिसका शीर्षक मैंने रखा है, जीवन में कुछ बड़ा करना है। तो सबसे पहले, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र है भीतर की शक्ति को पहचानना। क्योंकि दुनिया आपको आपकी शुरुआत से नहीं, बल्कि आपके संघर्ष और आपकी मंजिल से याद रखती है। क्योंकि हर बड़ा इंसान कभी ना कभी साधारण रहा होगा, उसको भी डर लगा होगा और कई बार असफलता भी मिली होगी, पर उसने हार नहीं मानी और हर परिस्थिति का डटकर सामना किया। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी को ही ले लीजिए, या हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सफलता की कहानी याद कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मेहनत और आत्मविश्वास से अब काम लिया और आज वो कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए हमेशा याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान रातों की नींद और दिन का आराम छोड़ देता है। अगर आज परिस्थितियां आपके खिलाफ है, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं और बार बार असफलता मिल रही है, तो समझ लीजिए कि जीवन आपको मुश्किलों में नहीं डाल रहा, बल्कि आपको मजबूत बना रहा है। क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता की कीमत समझ नहीं आती। अपने लक्ष्य पर इतना ध्यान लगाइए कि दुनिया की नकारात्मक बातें आपको सुनाई ही न दे। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, परंतु आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। और आज जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी क्षमता पर शक करते हैं, एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। इसीलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए मैंने तीन बेहद अत्यंत ही महत्वपूर्ण चीजें रखी हैं, जो है अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास। अनुशासित रहिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाइए, बिना रुके लगातार प्रयास और मेहनत करते रहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं रखेगी। यदि आप हार जाते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन कोशिश छोड़ देना आपकी सबसे बड़ी हार होगी। इसलिए उठिए, आगे बढ़िए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। क्योंकि इतिहास वही लोग लिखते हैं जो कठिनाइयों से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। आखिर में मैं डॉक्टर श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक

0: चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।
1: बच्चों, आशा करते हैं कि हमारे इन नन्हे बच्चों की प्रस्तुति आप सभी ने जरूर पसंद की होगी। आप सभी हमें पत्रों और मेल के जरिए बताएं कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। पत्र आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं, कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी नूतन कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर। पिन नंबर है 495006। आप हमें पत्र ईमेल bsp@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। फिलहाल इससे पहले कि आपसे हम विदा लें, बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि हर साल 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। बच्चों आपको मालूम है कि जब आप छोटे थे तब से मम्मी पापा आपको रोज दूध पीने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूध केवल एक पेय नहीं है बच्चों, लेकिन आपकी सेहत, ताकत और पोषण का खजाना भी है। इसलिए दूध आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को मजबूत भी बनाते हैं। यही नहीं, दूध हमारी हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, आपके शारीरिक विकास में भी मदद करता है, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, दिमाग को ताकत देता है और आपको हमेशा स्वस्थ रखता है बच्चों। इस तरह से ये दिन हमें सिखाता है बच्चों कि अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए पौष्टिक भोजन भी कितना जरूरी है। यही नहीं, दूध किसानों और डेयरी से जुड़े लोगों की मेहनत का सम्मान करना भी सिखाता है बच्चों, जो कि हम तक रोज ताजा दूध पहुंचाते हैं। और हाँ, एक बात और बच्चों, दूध पीने के साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि आप जो दूध पी रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, या जहाँ से आप दूध खरीद रहे हैं, पैकेट में ले रहे हैं, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह भी जरूर देखें कि कितने समय के अंदर आपको उस दूध का उपयोग कर लेना है। इस तरह से बच्चों हमेशा याद रखें कि स्वस्थ और एक्टिव रहने के लिए रोज पौष्टिक भोजन और दूध का सेवन आप जरूर करेंगे। और इन्हीं सुंदर संदेशों के साथ अब अनुमति दीजिए आपकी दीदी लिंटा को कार्यक्रम समाप्त करने की। जय हिंद,
2: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे नन्हे बच्चों का कार्यक्रम आओ बच्चों, प्रस्तुति थी लिंडा मनोज की। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है और इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने।

0: श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे पुष्पा 2 फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था रकीब आलम ने और धुन बनाई थी देवीश्री प्रसाद ने।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
0: आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम नए तराने का, और इसी कड़ी में आइए अब सुनते हैं अमाल मलिक के संगीत निर्देशन में कुमार का लिखा गीत, जिसे गाया है अरमान मलिक ने और फिल्म है हीरो।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हीरो का गीत अरमान मलिक की आवाज़ में। गीत लिखा था कुमार ने और धुन बनाई थी अमाल मलिक ने। श्रोताओं, आपको एक सूचना हम देना चाहेंगे। हमारे कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत, जिसकी रिकॉर्डिंग रविवार को होती है, उसकी लाइन खुल चुकी है। इस कार्यक्रम में हमें अपने फरमाइशी गीत भेजने इस कार्यक्रम में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 310026। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से पहले BSP का STD कोड 07752 अवश्य लगाएं। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा एक और नंबर 266592 अभी काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे दूसरे नंबर 310026 पर कॉल करें। कॉल करने से पहले बिलासपुर का STD कोड 07752 अवश्य लगाएं। हमें आपके कॉल का रहेगा इंतज़ार। आप इस नंबर पर कॉल करिए। हमारा इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग अभी शुरू हो चुकी है। सूचना समाप्त हुई। FM बैंड 103.2 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने।

0: श्रोता, कार्यक्रम में अब समय हो चला है आज की यातायात व्यवस्था के बारे में जानने का, तो आइए सुनते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट का पुनः प्रसारण।
1: नमस्कार, ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर में उमाशंकर पांडे से आप सुन रहे हैं अपने जिले की आज की यातायात की स्थिति। आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर नगर निगम अर्थात शहरी क्षेत्र की सभी सड़कों, चौक चौराहों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह शहर से बाहर भी सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग के अलावा सभी ग्रामीण सड़कों में भी सुगम आवागमन बना हुआ है। अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि

0: जिस प्रकार जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में विभिन्न प्रकार के वाहनों की भी संख्या सड़कों में बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में सहज सुरक्षित आवागमन कठिन है। सड़कों में वाहनों का घनत्व बहुत अधिक है, उसमें भी तेज रफ्तार। ऐसे में थोड़ी सी चूक बड़ी से बड़ी आफत बन सकती है। इसी चूक का परिणाम है कि प्रतिदिन छोटी से बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो ही रही हैं। लोग घायल हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। इसकी पीड़ा वे ही जानते हैं जिन्होंने इन हादसों में अपनों को खोया है। दोस्तों, इसलिए यदि हम इन छोटी छोटी सावधानियों को अपना कर चलें, तो बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जैसे सबसे पहले जिस वाहन में आप सफर कर रहे हैं वह पूरी तरह स्वस्थ हो, अर्थात टायर, ब्रेक, लाइट, गियर, स्टीयरिंग आदि बिल्कुल सही काम कर रहे हो। सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण वाहनों को तेज गति में होना पाया गया है, अतः सीमित गति में चले। किसी भी दिशा में मुड़ने से पूर्व रात में इंडिकेटर लाइट और दिन में हाथ से संकेत जरूर करें। वाहन चलाते नजरें सामने सड़क पर रखें, न कि अगल बगल सौंदर्य दर्शन में। वाहन चलाते मोबाइल का प्रयोग हरगिज न करें। ओवरलोड माल या यात्री कभी न चले। दो पहिया में तीन सवारी कभी न चले और हमेशा हेलमेट पहनकर ही यात्रा करें। कार में सीट बेल्ट लगाकर ही चले। नशा कर वाहन भूल कर न चलाएं और क्रोध, मानसिक तनाव या बीमार होने पर वाहन न चलाएं। स्टंट से हमेशा बचकर रहें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये तो था आज का ट्रैफिक अपडेट। अब श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और सुनते हैं बॉबी जासूस फिल्म का गीत ऐश्वर्य निगम और मोनाली ठाकुर की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं और शांतनु मोइत्रा का संगीत।

0: ऐश्वर्या निगम और मोनाली ठाकुर की आवाज़ों में अभी आपने सुना बॉबी जासूस फिल्म का गीत, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नए तराने हम यहीं संपन्न करते हैं। FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत की रिकॉर्डिंग आज रविवार को की जाती है, और आज हमारा नंबर, फ़ोन नंबर 2665 काम नहीं कर रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे नंबर 310026 पर कॉल कर सकती हैं। कॉल करने से पहले बिलासपुर का STD कोड 07752 अवश्य लगाएं। सूचना समाप्त हुई। FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोता, एक और सूचना आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। दिन के 10:55 होने को है। आकाशवाणी रायपुर से अब हम रिले करेंगे, आकाशवाणी दिल्ली से अब हम रिले करेंगे कार्यक्रम मन की बात।
1: श्रीमद् भगवत गीता ने कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी
2: अच्छा
3: हाँ चला था बढ़िया वहाँ
2: अच्छा
1: उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: बोल बोल के थक गया।
8: क्या हुआ?
7: नया किडबैग चाहिए।
8: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
7: करेक्ट।
8: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
9: RBI कहता है
10: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
11: पर्सनल लोन ऑफर
12: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
11: फ्री ट्रिप टू दुबई
12: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
13: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
12: तो क्या करूं?
13: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
12: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
13: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
14: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
15: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में

0: इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेष जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार
2: नमस्कार सर।
0: अचा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले। अच्छा,
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ। एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है। एंड मैं वहाँ से नेशनल का सेलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है, जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कहा भी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
2: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट

डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी, कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं।

0: ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे। तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहाँ पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: थैंक यू,
2: शुक्रिया सर,
0: थैंक यू सो
1: शुक्रिया
2: मच
1: आपका
2: सर।
1: सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी

से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया ज
जिसने हर भारतीय

को गर्व से भर दिया। नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में किन्यान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी
एस्ट्रोनॉमी के

सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाए। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।

0: साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूं जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: कृपया हमारे जी आकाशवाणी दिल्ली है।
3: प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दिन के 11:32 हुए हैं। प्रस्तुत है मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन

0: का छत्तीसगढ़ी अनुवाद।
1: मोर देश के मयारुक रहवैया हो, जोहार। मन की बात मा एक घाव फेर आप मन ले जुरिया के मोला बहुते खुशी होवत हे। देश के आने आने हिस्सा मा हमर देश के लोगन मन देश हित मा समाज हित मा ऐसन अद्भुत काम करत हैं, और जब उनखर विषय में सुनथन तो हमन ला एक नवा प्रेरणा मिलते। आज कार्यक्रम के शुरुआत मैं एथलेटिक्स मा देश के ऐसने उपलब्धि लेकर हूँ। कुछ दिन पाछू झारखंड के रांची मा नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुईस। इमें करीबन 800 एथलीट मन हिस्सा लेन देश भर ले आए रहिन। ये दौरान चार आने आने आयोजन मा चार राष्ट्रीय कीर्तिमान टूटीस। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, ये संगवारी मान आने आने श्रेणी मा नवा कीर्तिमान बनाइन। मैं सबले पहली त ये सब्बो मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। संगवारी हो, एक आयोजन जेखर देश भर मा बहुते चर्चा हुआ थे वो है 100 मीटर रेस, 100 मीटर के दौड़। खाली 2 दिन के भीतरी पुरुष 100 मीटर के दौड़ मा राष्ट्रीय कीर्तिमान 3 घाव टूटिस। जेन 2 झन एथलीट मन ये कमाल दिखाए हैं वो हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैं सोचे ये पई मन की बात मा ये दोनों खिलाड़ी मन ले गोट करे जाए। अनिमेश जी जोहार, गुरिंदर वीर आप मन ला घलो जोहार, सत श्री अकाल।
2: जोहार सर।
3: जोहार सर।
1: अच्छा भैया, आप मन त बहुते बड़का उपलब्धि पाए हो। आप मन के जोड़ी है घलो बड़का कमाल करे है। हमन संगीत मा त जुगलबंदी देखे रहें, फिर चुनौती मा अब जुगलबंदी होते कि एक घाव एक झन चुनौती देते, फिर दूसर उही चुनौती ला उठा लेते, फिर तीसरैया घाव कर लेते। बहुते रोचक विषय रहे है आप मन के। मैं चाहत हूँ कि मन की बात के सुनैया मन ला पता चले कि आप मन के विषय मा वो मन ला जानकारी होवे। आप मन जिन पराक्रम करे हो ओखर पता चले।
2: जोहार सर, मोर नाव अनिमेश कुजूर। मैं 200 मीटर और 400 मीटर के राष्ट्रीय कीर्तिमान धारक हूँ, और मैं छत्तीसगढ़ के रहैया हूँ सर, और अभी मैं उड़ीसा ले खेलता हूँ। मैं पाछू बच्चर एशियाई पदक और विश्वविद्यालय खेलकूद पदक लेके आए हूँ, और मैं 2021 में एथलेटिक्स चालू करें जब मैं स्कूल ले पास हो रहे हूँ। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर ले पास हुए हूँ, और मैं पहली फुटबॉल खेलत रहे हूँ। अब मोर दाई दादा मन कोविड के बखत मोला थोर बहुत छूट देवत रहिन कि तैं बाहर जाके दौड़ ले खेल ले। ता जब कोविड खत्म होए लगीस तब तो मोर फुटबॉल के दोस्त मन मोला कहिन कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होइया है, तैं घलो भाग ले। और मैं भाग ले, और मोला पता नहीं रहीस कि वहाँ ले राष्ट्रीय स्तर के चयन हुआ थे। मैं वहाँ ले राष्ट्रीय स्तर में चयनित हुए, और आज मैं भारत के प्रतिनिधित्व करत हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में।
1: और गुरिंदर वीर सिंह जी का है?
3: जोहार सर, मोर नाव गुरिंदर वीर है, और मैं भारतीय जल सेना मा पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं भारत के सबसे तेज धावक हूँ। अभी मैं 100 मीटर मा 10.09 के राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाए हूँ, और मैं पहली भारतीय हूँ जेन 10.1 के बाधा के नीचे भागे है। और मैं प्रयास करत हूँ कि मैं ट्रैक और वर्दी में घलो अपन देश के सेवा करो। मोर दादा और बाबा दोनों खेल कूद वाला रहिन, ता हमर भारत के संस्कृति है जब भी कोनो त्योहार आते जैसे दिवाली जैसे नवा बछर, ता हम अपन घर के सफाई करथन। ता मैं अपन दादा के ट्रॉफी और पदक मन के सफाई करत रहो ता मोला वो बहुत अच्छा लागत रहीस। मैं बहुत खुश होवत रहो। तो जब मैं कोनो ट्रॉफी साफ करत रहो तब मैं पूछत रहो कि भाई ये ट्रॉफी कहाँ जीते रहो, ये पदक कहाँ जीते रहो, ये फोटो कब के है। तब फिर वो मन मोला अपन कहानी सुनावत रहिन कि भाई मैं यहाँ खेले पर गेव, मैं ये राष्ट्रीय पदक

0: जीतेउ, मैं अपन टीम ला एमे जितायो। तब फिर मैं घलो वो मन ला बोलेउ कि भई मैं घलो कोनो खेल खेलना चाहत हौ। वो बिहनिया दौड़े बर जावत रहिन त मैं उन ला बोलेउ भई मोला घलो अपन संग ले जाए करो। तब मोला ले के जाय लगिन त वो मन अपन खेल मा जिन सीखे रहिन वो मोला सिखाए लगिन। तब मोर रुचि बने लगिस, मैं उसेन बोल्ट के विश्व रिकॉर्ड टूटत देखेओ। एक मनोरंजक कहानी है, मैं टीवी देखत रहो तब मोर दाई टीवी ला बंद कर दीस कि बेटा अभी पढ़े के बेरा हो गए है, ते पढ़। तब मैं कहो भाई ठीक है, आप मन मोला टीवी देखे ला नहीं देवत हो। एक दिन ऐसे आही आप मन मोला टीवी मा खोजहु कि देखो वो गुरिंदर दौड़त है। तब मोला घलो खुशी होते जब मोर दाई मोला टीवी मा दौड़त देखते।
1: वाह वाह वाह, बहुत शानदार बात है भाई आप मन के।
0: हाँ जी, मध्यम वर्गीय परिवार है सर। फिर मोर दादा बालीबाल खेलत रहिन, घर के समस्या के चलत वो मन अपन खेलकूद छोड़ दिन। उखर जेन सपना रही गई रहीस त वो मन मोर भीतर वो सपना देखिन भाई मोर बेटा वो सपना पूरा करही। तब मैं उखर ले बात करेउ, फिर सुनत रहो मिल्खा सी अतका मेहनत करत रहिन। मैं वो मन ला कहत रहो मैं घलो एक दिन आप मन के सपना पूरा करहू। तब बोलिन सपना पूरा ऐसे नहीं होए, एकर बर बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ते, मेहनत करना पड़ते। मिल्खा सिंह जी खून के उल्टी करत रहिन, धूप माँ भागत रहिन, पूरा पूरा दिन प्रशिक्षण करत रहिन। तब वो चीज मोला प्रेरित करत रहिस, मोर दादा मोला प्रेरित करत रहिन कि मैं भागू ता अपन देश खातिर पदक लावाओ जीताओ। और ये घलो रहिस कि भाई जब मैं 100 मीटर के विधा के चयन करेउ त सबो मन कहत रहिन कि भाई 100 ला झन कर, 100 भारतीय मन के विधा नहीं है, भारतीय मन के शरीर 100 मीटर बर नहीं बने हैं। त मैं और मोर दादा हरदम बोलत रहिन कि अभी गुरिंदर ए चयन करे है, हम एकर ले पाछू नहीं हटबो। जेन मन हमन ला बोलते कि भाई हम नहीं कर सकन, हम वो मन ला करके दिखाबो औ ते करके दिखाबे, मोला तोर ऊपर भरोसा है। तब वो भरोसा जब मोर दादा मोर ऊपर करीस त मैं वो भरोसा ला अपन हिम्मत बना के चलेओ। औ आज हर भारती बोलते कि भाई भारती दौड़ाओ।
1: देखो आप दोनों जन बहुते बड़का कमाल करे हो, औ खाली 2 दिन के भीतरी आप दोनों जन 3 घाव राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हो। 100 मीटर के रेस में दौड़ना, जैसे गुरिंदर वीर है कहिस कि लोगन कहते कि भारत के लोगन मन के बदन ये काम बर हैच नहीं, अत का अलकर होवत हुए घलो आप मन काम करेओ। तो ये दोनों मन ले मैं जानना चाहूँ और मन की बात के सुनैया मन घलो सुनना चाहे कि कौन से जज्बा रहीस, का जिद रहीस, का सोचे रहे हो और कैसे करत रहे हो, ये कतका मुश्किल होते।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं शुरू में जब संघर्ष करत रहे हो सर, कईयों बार संसो में रहे हो कि मैं सही करत हो, मैं सही चयन करे हो। काहे कि हर बारी आप मन नहीं जीता, कभू कभू आप मन सीखता हो, जब मैं हारे हो, जब मोर सही प्रदर्शन नहीं आईस, जब चोट लग जात रहीस तब मोर घर वाला मन मोला सहारा देन कि भई कुछ नहीं, एक दिन बुरा चल दीस, एक बछर बुरा चल दीस, त एकर ले जिंदगी खराब नहीं होए, सपना देखना नहीं छोड़न। तब मोर प्रशिक्षा का घलो मोला ये सिखाइस कि अगर तय नहीं करबे त कोनो औ नहीं कर पाही। त ऐसने जब हमर समुदाय हमर तीर तखार के लोगन मन हमला उत्साहित करते ता हमर प्रोत्साहन नहीं टूटे।
1: अनिमेश जी।
2: सर, मोला ता सबो मन बोलत रहिन जब मैं 2021 मा एथलेटिक्स चालू करेउ, तब मोला कहिन कि देख ए नवा क्षेत्र है, तय कर पाबे कि नहीं। तब मैं कहूँ कि मैं ए क्षेत्र में घुस गए हों तक करवे करूँ। मोर दादा घलो हरदम मोला बोले कि तय ए क्षेत्र में घुसे हस तो कभू पाछू मुड़ के झन देखबे, काहे कि सोचते ता सबो मन कि ये करना है वो करना है, फिर करके बहुते कम झन दिखाते। तय बस यही क्षेत्र में घुसे हस तो यही में रहबे, यही में आगू बढ़बे। तोला सबो सुविधा सब जिनिस सहयोग हम करबो, पारिवारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, सबो चीज हमन करबो। बस तय मेहनत कर और भारत ला देखा कि भारतीय मन घलो भाग सकते। काहे कि लोगन मन मोला घलो कहत रहिन कि भारतीय मन

0: के जीन्स ऐसे नहीं हैं कि वो मन 10 के नीचे या 10.1 के नीचे माँ भाग ले सकें या तेज दौड़ सकें। फिर अब हम दोनों जन सिद्ध करे हैं कि भारतीय मन घलो कर सकते हैं, ऐसा कोनो कठिन नहीं है हमन पर, हम घलो सब कुछ कर सकत हन। त सर ये सबो मोला बहुत प्रोत्साहित करते और जैसे जैसे हम प्रशिक्षण करत हन हम और अपन समय सीमा ला तोड़त हन और बाकी भारतीय मन ला घलो ये दिखत है कि भारतीय मन घलो कर सकत हैं और हम और करबो सर अभी। और हम दोनों जन के चयन कॉमनवेल्थ गेम खातिर घलो होए है तो वहाँ अवैया प्रतियोगिता में हम और अच्छा प्रदर्शन करबो।
1: अच्छा देखो मोर मन में घलो एक कौतूहल है और लोगन मन ला घलो हो ही। मैं सुने हूँ कि आप दोनों जन अच्छा दोस्त घलो हो, आप दोनों जन कुछ ठाने रहे हो का कि तय मोर रिकॉर्ड तोड़ेस तो मैं तोर रिकॉर्ड तोड़ देवाऊ का, पहली अनिमेश बताही।
0: सर जी पहली रिकॉर्ड 10.18 के रहीस जेन मोरेच रहीस और फिर एला गुरिंदर वीर भैया हा सेमीफाइनल में तोड़ देस 10.17 करके और मैं फिर ओला दूसर सेमीफाइनल में 10.15 करके तोड़ देऊ। तो ओ बखत जब मोर सेमीफाइनल होइस तो हम दोनों जन खुश होइन कि चलो ठीक आज रिकॉर्ड टूटीस और चलो हम दोनों जन तोड़ेन। काहे कि वो बखत प्रतियोगिता में प्रतिद्वंदिता रही थे फिर हम दोनों जन पहली स्थान के रखे रहन। एकर ले पहली हमन प्रतियोगिता पर सऊदी अरब घलो गए रहन, वहाँ हम दोनों जन एक कमरा में रहन। त हम दोनों वहाँ गोट करन कि भारत के दौड़ ला आगू लेके जाना है और हमरे छात में है वो चीज, हम जेन करबो वो आने मन ला प्रोत्साहित करही।
1: गुरिंदर वीर का कहना चाहू?
2: हम दोनों जन निर्णय करे रहन हम दोनों जन बने दौड़बो, त सर एक दूसर ला कभू जरूरत होते ता एक दूसर संग खड़े होथन। जैसे अभी रिकॉर्ड करे ले पहली जब मैं रिकॉर्ड करेव फिर अनिमेश करीस, त जब हम वार्म अप करत रहन त मैं अनिमेश ला बतावत रहो कि अनिमेश वो ब्लॉक सही है ओमे जाके बैठ, वहाँ ले छलांग लेबे, हमन वार्म अप यहाँ करबो, यहाँ वार्म अप सही होही त एक दूसर के मदद करथन त दूसर मा घलो सुधार होते, हमन मा घलो सुधार होते, दोस्ती घलो चाही। फिर मैदान के बाहर है सर, प्रतियोगिता के बाहर है ता हम दोस्त हन, जब हम मैदान में जाथन ता एक दूसर के प्रतियोगी बन जाथन, ता ये होते कि मैं एकल ले ज्यादा तेज भागू, मैं एकल ले तेज भागू।
1: देखो आप मन जेन स्पर्धा करे हो ना वो देश के मान बढ़ाए खातिर करे हो, देश ला भविष्य मा ये ठिया तक पहुंचाए खातिर करे हो और एक सकारात्मक भावना लेकर रहे हो। और मैं मानता हूँ कि आपके ये जेन खेल भावना है खेलना घलो है, एक दूसर ला चुनौती घलो देना है और फिर आगू निकले के प्रयास करना है और फिर आगू जाए बर एक दूसर के सहायता करना है। ये अद्भुत काम करे हो आप मन, मोर कोती ले आप मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई, मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना और आप मन देश के नाव घलो उजर करहू, मुला पूरा विश्वास है आप मन ऐसने मेहनत करत रहो बहुत प्रगति हो ही, मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना।
0: धन्यवाद सर, आप मन के धन्यवाद,
1: गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, ये बखत देश के ज्यादातर हिस्सा मा बहुत गर्मी पड़त है, तेज घाम गर्म हवा, ऐसन मौसम मा अपन ध्यान रखना बहुते जरूरी है, पानी पियत रहो, घाम मा अगर निकलना पड़े तो थोकिन संभल के निकलाओ। ये दिशा मा सरकार के आने आने विभाग मन जिन दिशा निर्देश जारी करे हैं वो घलो भुलाहू जन संगवारी हो, हमार यहाँ गर्मी ले लड़े के तरीका कईयों बार रसोई मा घलो मिलते, आप मन घलो देखे हो, जैसे जैसे गर्मी बाढ़ते वैसे वैसे घर के रसोई के स्वाद बदलत जाते, रसोई के प्रकार बदल जाते, कहूँ मटका के पानी निकलते, कहूँ दही जमे लगते तो कहूँ कच्चा आमा उबले लगते और फिर शुरू होते देसी पेय के दौर। देसी पेय ले आप मन घलो परिचित हो, अगर आप मन उत्तर भारत में जाहू तब बने जगह आप मन ल मिलही आम पना।

कच्चा आमा के स्वाद और गर्मी ले राहत घलो। पंजाब हरियाणा जाहू तो लस्सी मिल जाही, बड़का गिलास वाला लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाना के संगवारी बन जाते। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू के शरबत, ओखर तो बाते का है। पेट घलो भरए, ताकत घलो देवाए। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी। दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और उड़ीसा में बेल पना। वो खाली पेय नहीं, भारत के आने आने क्षेत्र के परंपरा के हिस्सा है। और एमे एक भारत श्रेष्ठ भारत के भावना के झलक घलो मिलते। और एक ठन बात खचित ध्यान रखू, एमे ले ज्यादातर जिनिस हमार अपन रसोई ले निकले है, हमार खेत खलिहान ले निकले है, कोनो बड़ा ब्रांडिंग नहीं है। फिर पीढ़ी मन के अनुभव एमे समाये हुए है। आप मन घलो गर्मी मा देशी पेय के खूबे आनंद लेवाओ। संगवारी हो, गर्मी के आतेच एक ठन औ चर्चा हर घर मा शुरू हो जाते, और वो है आमा। आमा, आम चर्चा के विषय होते। भारत मा शायदे कोनो घर हो ही जिहां गर्मी मा आमा के बात नहीं होत होवे। हर इलाका के अपन आमा, अपन स्वाद, अपन सुगंध। महाराष्ट्र और कोंकण के हापुस, अल्फांसो, गुजरात के केसर, ये ता आमरस के जान हैं। उत्तर प्रदेश के दशहरी और मोर काशी के लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम के खास बात होते, पके के बाद घलो ओखर रंग कईयों बार हरच रही थे। बिहार के जरदालू, जेकर सुगंध दूरे चले चिन्हा जाए। चौसा, मालदा, हर नाव के संग लोगन मन के सुरता जुरियाए है। दक्षिण भारत जावो तब बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल के हिमसागर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सुवर्ण रेखा। माने ठिया बदल थे, आमा के रंग रूप और ओखर स्वाद घलो बदल जाते। और संगवारी हो, आमा के ये यात्रा अब गांव ले वैश्विक बाजार तक घलो पहुंचा थे। आज मन की बात के माध्यम ले मैं आमा के पैदावार ले जुड़े अपन किसान भाई बहनी मन के प्रशंसा करूं। आप मन देश के कृषि अर्थव्यवस्था खातिर आम किसान नहीं, बहुत विशेष हो, ऐसने छाए रहो। संगवारी हो, गर्मी के ये दिन मा ऐसे ता स्कूल मन के छुट्टी होते। फिर मैं एक ऐसन वर्ग के बात करूं जेमे आप मनला प्रवेश लेके मन कर जाही। संगवारी हो, एक स्थिति के कल्पना करो। एक ऐसन स्कूल जिहां लइका मन आते, युवा मन आते और सियान मन घलो, जिहां कोनो फीस नहीं लगे, कोनो बड़का इमारत नहीं है, कोनो कक्षा घलो नहीं है। और सबले रोचक बात, उहां कक्षा नदिया में लगते। संगवारी हो, ये कोनो कहनी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुआ मा साजी वाला शेरिल जी ऐसने एक ठन तैराकी क्लब चलावत हैं। अब तक 15,000 ले ज्यादा लोगन मन यहाँ तौरना सीख चुके हैं। साजी जी हा दिव्यांग लइका मन ला घलो तौरना सिखोए हैं। ये प्रयास के पाछू एक पीड़ा घलो छुपे है। कुछ बछर पाछू एक नाव दुर्घटना मा कईयों छात्र मन के मौत हो गए रहिस। ये घटना हा साजी जी ला भीतरी तक झकझोर देस। वो मन सोचिन, अगर लइका मन ला तौरना आवत होतीस त शायद कईयों जान बच जातीस। बस इहे ले शुरू होइस उनखर ये अभियान। संगवारी हो, साजी वाला शेरिल जी के जिंदगी हमन ला एक ठन बहुते बड़का सीख देते। सेवा करे बर बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होवे, जरूरी होते एक अच्छा इरादा और सरलक करेगे प्रयास। एखरे दम मा हजारों लोगन मन के जिंदगी मा बदलाव लाए जा सकत है। मोर देश के मायारुक रहवैया हो, पहाय दिन मा मुला यूरोप के नीदरलैंड

जाए के मौका मिलिस। वहां मैं कईयों ठन बैठक में सम्मिलित होयो। इही दौरान एक ऐसन क्षण आईस जेन हर भारतीय ल गर्व ले भर देस। नीदरलैंड मा आयोजित एक विशेष समारोह मा चोला काल के प्राचीन ताम्र पट्टिका भारत ल वापस सौंपे गईस। ये कार्यक्रम मा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री घलो उपस्थित रहिन। ये ताम्र पट्टिका मन ल लेके मुला देश विदेश ले सरलग संदेशा मिला थे। लोगन मन खुशी व्यक्त करत हैं, गर्व व्यक्त करत हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में घलो एला लेके विशेष उत्साह है। संगवारी हो, ये ताम्र पट्टिका मन ला लेके लोगन में बने जिज्ञासा घलो है। यही पाए के आज मैं एखर ले जुड़े कुछ बात आप मन संग साझा करना चाहत हूँ। एमे 21 बड़ा और 3 छोटे ताम्र पट्टिका है। ये मुख्य रूप ले राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपन पिता राजा राज राजा चोला के एक ठन वचन ला पूरा करे ले जुड़े है। एमे आने मंगलम गांव के एक बौद्ध बिहार ल दान दे के उल्लेख है। ये ताम्र पट्टिका मन मा चोला वंश के उपलब्धि के वर्णन घलो मिलते। एखर ले पता चलते कि चोला साम्राज्य के समुद्री शक्ति कत का जबर रहिस। दक्षिण पूर्व एशिया के देश मन संग इनखर संबंध के जानकारी घलो एमे मिलते। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति मा हम सबो मन ला बहुत गर्व है। संगवारी हो, हमर सरकार भारत के ऐसन अमूल्य धरोहर मन के संरक्षण खातिर सरलग प्रयास करत है। इही क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार मा घलो एक महत्वपूर्ण खोज होए है। यहाँ 3 ठन दुर्लभ ताम्र पट्टिका मिले है। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासन काल ले जुड़े माने जाते। विशेषज्ञ मन मानते कि ये शिलालेख 6वां-7वां सदी के है। माने 1400-1500 बछर जुन्ना ये ताम्र पट्टिका मन प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाखा मा लिखाए है। एमे वो बखत के शासन व्यवस्था धर्म और संस्कृति के बारे मा महत्वपूर्ण जानकारी मिलते। संगवारी हो, हम भारतीय मन मा खगोल विज्ञान माने एस्ट्रोनॉमी ला लेके हरदम विशेष आकर्षण रहे है। हमर देश मा आज घलो कईयों सदी जुन्ना वेधशाला विद्यमान है। यहाँ अद्भुत गणितीय खोज होए है। नवचालन हो, पंचांग हो या हमर परब तिहार, ये सब के संबंध आगास और तारा मन ले रहे है। हमर यहाँ एस्ट्रोनॉमी हर पीढ़ी मा कौतूहल जगाए है। एला अन्वेषण बर प्रेरित करे है और आज के युवा मन मा घलो एला लेके बने उछाह दिखते। आजकल आप मन घलो देखत हो, देश भर मा एस्ट्रोनॉमी क्लब तेजी ले लोकप्रिय होवत है। बड़ा शहर ले छोटा कस्बा तक, स्कूल ले बगीचा तक इनखर गतिविधि देखेला मिलते। मुला बंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलिस। यहाँ अवलोकन सत्र आयोजित करे जाते। ये संस्था है ग्रामीण क्षेत्र मा एस्ट्रोनॉमी ला लोकप्रिय बनाए के मिशन घलो शुरू करे है। खगोल मंडल नाव के एक टीम है 30 घंटा के एक बहुते नवाचारी पाठ्यक्रम शुरू करे है। संगवारी हो, रात मा तारा मल्ल निहारना अपन आप मा अद्भुत अनुभव होते। एस्ट्रो केरला नाव के एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और कार्यशाला आयोजित करते। यहाँ युवा साथी मन टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स के उपयोग करना सीखते। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब है गिर के जंगल ले कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट आयोजित करे है। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था घलो एस्ट्रोनॉमी के सबले जुन्ना संस्थान मा एक है। यहाँ अवलोकन सुविधा के संगे संग किताब, पुस्तकालय
और टेलीस्कोप।

लाइब्रेरी के सुविधा घलो है। मैं आईसेक के घलो उल्लेख करना चाहूँ। ये एक विद्यार्थी मन द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है जिन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब मनला आपस में जोड़ते। संगवारी हो, अपन शौक पर बखत निकालना और सरलग कुछ नवा सीखत रहना बहुते जरूरी है। मैं युवा मन ले आग्रह करूँ कि कोनो एस्ट्रोनॉमी क्लब ले खचित जुड़े और ये छुट्टी मन मा कोनो तारा घर ला घलो देखेला खचित जावें। संगवारी हो, मन की बात कार्यक्रम ला जिन लोगन मन टीवी मा देखत हैं, मैं वो मन ले कहूँ एक वीडियो खचित देखाओ। ये वीडियो पाछू दिन बहुते चर्चा मा रहिस। एमे कुछ लोगन मन बहुत धैर्य ले, बहुत सावधानी ले एक गंगा डॉल्फिन ला बचाए की कोशिश करत हैं। आप मन ला ये जान के आश्चर्य हो ही, ये जम्मो प्रयास मा करीबन 13 घंटा लगिस और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गईस। संगवारी हो, एमे बहुते बड़का भूमिका रहीस भारत के पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस के। ये घटना उत्तर प्रदेश के है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गए रहिस। ऐसन बखत में नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत बने ये एम्बुलेंस ओखर बर उम्मीद बन के पहुंचीस। फिर बहुते सावधानी ले ओला बाहर निकाले गईस, ओखर जांच करे गईस, ओखर इलाज करे गईस और ओखर बाद ओला सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दे गईस। एक रकम ले कहन त एक जिंदगी फिर अपन घर लहूट गईस। संगवारी हो, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुते खास है। एला एक चलत फिरत अस्पताल कस तैयार करे गए है। एमे डॉल्फिन ला सुरक्षित रखे के व्यवस्था है, ऑक्सीजन के सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। माने अगर कोनो डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी ले कट जाए त तुरते ओखर सहायता करे जा सकत है। संगवारी हो, जब हम गंगा डॉल्फिन ला बचाथन त हम खाली एक प्रजाति ला नहीं बचावन, हम गंगा के जैव विविधता ला बचाथन, नदी के पूरा जीवन तंत्र ला बचाथन और अपन अवैया पीढ़ी खातिर प्रकृति के एक अमूल्य धरोहर घलो बचाथन। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, आप मन ले बहुत अकन लोगन के नदिया तरिया या कुआं के पानी ले जुड़े सुरता खचित हो ही। कोनो ला तरिया में तौरना याद हो ही, कोनो ला संगवारी मन संग तरिया के तीर में खेलना, कोनो ला वो माटी के सुगंध के सुरता हो ही। ननपन के ऐसन याद जिंदगी भर मन में बसे रही थे। संगवारी हो, ऐसने याद मन ला बचाए के एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला ले आघू में आए है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपन गांव के मनोरमा नदी ला देख के बहुत दुखी होवत रहिन। काहे कि जे नदी ला वो मन ननपन में साफ और जीवंत देखे रहिन, बखत के संग वो नदी में प्लास्टिक जमा होए लगिस, गंदगी बाढ़त चले जात रहिस। श्रीमान आकाश ह तय करिन कि शिकायत नहीं करही, एक नवा शुरुआत करही। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गईस। वो मन अपन संगवारी मन ला साथ लेन खाली जाल रहीस, रापा रहीस, झुहा रहीस और सबले बड़का ताकत रहीस कुछ बदले के संकल्प। ये युवा मन नदिया मा उतरत रहिन, जल कुंभी निकालत रहिन, प्लास्टिक और कचरा बाहर लावत रहिन। कईयों बार एक दिन मा 50-60 किलो तक कचरा नदी ले निकाले गईस। धीरे धीरे मनोरमा नदी के वो हिस्सा फिर साफ दिखे लागिस। तीर तखार के लोगन मन के ध्यान घलो ये काम कोती गईस। लोगन मन मा स्वच्छता ला लेके जागरूकता बाढ़िस। संगवारी हो, ऐसने एक प्रेरक कहनी गोवा ले घलो आघू आए है। गोवा के बालकृष्ण अय्या जी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, फिर समाज पर काम करे के उनकर उत्साह आज घलो वैसने हैं।

0: उनला मड्डी तोलाब क्षेत्र मा पानी के समस्या बहुत परेशान करत रहिस। वो मन घलो समाधान खातिर काम शुरू करिन। बाल कृष्ण जी हा पाइपलाइन बिछाए के काम मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाइन। एखर ले कईयों घर तक पानी पहुंचिस। जिन परिवार मन ला पानी खातिर रोज संघर्ष करना पड़त रहिस उनखर बर ये बहुत बड़ा राहत बनिस। संगवारी हो, पाछू महीना मुला एक बहुते अच्छा अनुभव होइस। एकर संबंध मन की बात ले घलो जुड़े हे। इही पाए के आज मैं एकर चर्चा आप मन ले करना चाहत हूँ। तमिलनाडु के नागर कोइल मा मोर भेंट एक शिक्षक ले होइस। करीबन 3 दशक पहली घलो मैं वो मन ले मिले रहे हूँ। मैं बात करत हूँ गिरिजा अम्मा जी के। ये भेंट के दौरान कुछ युवा विद्यार्थी मन घलो उनखर संग रहिन। संगवारी हो, गिरिजा अम्मा जी करीबन 15 स्कूल चलाते। एमे चेन्नई के जय गोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनखर देशभक्ति के भावना हर भारतवासी ल प्रेरित करने वाला है। वो मन की बात ले प्रेरणा लेके देश के अनेक सैनिक मन बर योगदान के संकल्प लिए हैं। एकर बर वो मन अपन सब्बो स्कूल के विद्यार्थी मन ला प्रेरित करिन। वो मन लैका मन ले कहिन कि वो मन वीर जवान मन बर हर दिन 1 रुपया योगदान करें। माने 1 बछर मा हर विद्यार्थी कोती ले 365 रुपया जमा होइस। ये नान नान योगदान ले करीबन 40 लाख रुपया इकट्ठा होइस। गिरिजा अम्मा जी हा ये पूरा राशि के चेक मुला सौपिन। वो मन ले गोटबात के दौरान मैं महसूस करे हूं कि माँ भारती के प्रति उनखर समर्पण कत का गहिर है। पाछू बछर चेन्नई के पहली हिंदू विद्यालय हा अपन 50 बछर पूरा करे है। देश के शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव ला आगू बढ़ाए मा ये स्कूल नेटवर्क के भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं एकर ले जुड़े सब्बो लोगन मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ और वो विद्यार्थी मन के घलो विशेष सराहना करत हूँ जेन मन अपन वीर सैनिक मन खातिर योगदान दिए हैं। संगवारी हो, भारत के हर गांव मा हर शहर मा कुछ न कुछ ऐसन होवत है जेन हमन ला प्रेरणा देते। कईयों बार ये प्रयास मन के ज्यादा चर्चा नहीं होवे, फिर जब हम इनला जानथन त ये विश्वास और मजबूत होते कि देश अपन लोगन मन के शक्ति ले आगू बढ़ते। मोर आप मन ले आग्रह है, अपन तीर तखार मा ऐसने प्रयास मन ला खचित देखाओ। जिन लोगन मन समाज खातिर अच्छा काम करत हैं वो मन ला चिन्हाओ, उनखर सराहना कराओ, वो मन ले सीखाओ और हो सके त खुद घलो कोनो अच्छा काम ले जुड़ाओ। अवैया महीना मन की बात मा कुछ और प्रेरक गाथा मन संग मैं फिर आप मन ले जुड़ू। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। जोहार।
1: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
2: महाविद्यालयः स्वस्य 50वार्षिकीं पूर्णताम् अगच्छत्। देशस्य शिक्षाक्षेत्रे सांस्कृतिक गौरवस्य च संवर्धने अस्य विद्यालय समूहस्य भूमिका अतीव प्रशंसनीयास्ति। अहं तेन सम्बद्धेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः हार्दिकाः शुभकामनाः वितरामि, तथा च तेषां छात्राणामपि विशेषतया प्रशंसां करोमि ये स्वेषां वीर सैनिकानां कृते योगदानं कृतवन्तः। सखायः, भारतस्य प्रत्येकस्मिन् ग्रामे प्रत्येकस्मिन् नगरे किञ्चित् एतादृशं कार्यं प्रवर्तते यत् अस्मान् प्रेरयति। कतिपयेषु अवसरेषु एतेषां प्रयत्नानां व्यापकः प्रचारः न भवति, किन्तु यदा वयं तान् ज्ञातुम् आरभामहे तदा विश्वासोऽयम् अधिकं दृढो भवति यत् देशः स्वजनानां शक्त्या अग्रे गच्छति। मम भवद्भ्यः आग्रहः अस्ति, स्वं परितः एतादृशान् प्रयत्नान् अवश्यं पश्य

0: चन्तु ये जनाः समाज हिताय उत्तमानि कार्याणि कुर्वन्ति तानि परिचिनुत तेषां प्रशंसां कुरुत तेभ्यः शिक्षां आप्नोतु शक्यते चेत् स्वयमपि कस्यचित् सत्कार्यस्य अंगं भवतु। आगामी मासे मन की बात कार्यक्रमे अन्याभिः प्रेरणादायिनीभिः गाथाभिः सह पुनरपि भवद्भिः सह संबद्धो भविष्यामि। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम मशहूर पार्श्व गायक केके को याद कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है सॉरी भाई। आवाजें केके, सुनिधि चौहान और अभिषेक नलवाल की। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा और संगीत दिया है विवेक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सॉरी भाई का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं के और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे दहला इस फिल्म का गाना। गीतकार हैं पंची जालुनवी और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के और सुनीति चौहान, फिल्म का नाम हमराज।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रीतम के संगीत निर्देशन में अनिल भारद्वाज का लिखा हुआ सुनिए। आवाजें हैं के और राकेश पंडित की और ये फिल्म है स्टम्प्ड।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज केके की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम का अगला गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नितिन उरेकवार का लिखा हुआ, इसे आवाजें दी हैं केके और सुनीति चौहान ने। फिल्म का नाम है रोड़।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: ये आवाजें के अलीशा चिन्नॉय और जयेश की थी। फिल्म का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे

0: स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम के संगीत निर्देशन में सईद कादरी का लिखा हुआ, आवाज केके की, और ये फिल्म है मेट्रो।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन पटवा के संगीत निर्देशन में डॉक्टर सागर की रचना, स्वर के और अन्वेषा सरकार की। फिल्म का नाम है लव यू सोनियो।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने मशहूर पार्श्व गायक के को याद किया।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का? और मेरा भी जी, इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदायी हो जाता है, है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के चले जाने से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायी होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमने हमारी इबारत लिख भी दी है कि किसी के जीवन, घर, विचार से कहीं चले जाने का एहसास बहुत पीड़ादायी होता है साजना, और दीवाने रूठ कर न जाने कहां चले जाते हैं कि फिर उनके बगैर नींद भी नहीं आती। किसी के छोड़कर कहीं चले जाने पर दिल उनकी धुन में रोता जाता है और जोगी बन जाता है। तो ये है आज का सुरीला सफर। हमने आपको इबारत बता दी है, आपने पढ़ भी ली है, और जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनने भी ये सुन लिया होगा कि आज हमने क्या इबारत रखी है। और साथ ही हम उन शब्दों को भी बता देते हैं जो आज के चयनित गीतों में आएंगे। साजना कहीं दीवाने कहां छोड़ के रूठ कर जाता है नींद धुन दिल और जोगी। जी, ये ठीक उसी प्रकार का दुख कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना? बस इसी प्रकार कोई जिंदगी से जब चला जाता है और जिंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक बस उन्हीं रिश्तों से हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और उसके चले जाने पर, उस किरदार के चले जाने पर हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं कि वो हमारी जिंदगी से चला गया है, तो बस इसी जाने पर आज इस सुरीले सफर को हम तय करने वाले हैं। ठीक है, आप हैं ना हमारे साथ? तो कार्यक्रम का यह है पहला गीत। राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना।

ये स्वर थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं, और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। और जब मन को पता है कि ये जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं, इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं, जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है। जब कोई अपना रूठकर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है, ये विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछोह को निरूपित करता है और आना

मिलन को निरूपित करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब, देखिए बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संबंधों के बिछुओं में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछुओं प्रेम युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है। तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं आप सभी ने। लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं, ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी जिंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूं चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं, एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी जिंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। और बाद में हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की जिंदगी से यूं चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे, कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं। बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं। बिछड़े से भी बारी बारी ये सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगो कर चली आ रही हैं, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारे सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है, हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी, हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे, कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोचकर लिखने बैठूंगा। नमस्कार।

एक श्रोता लिखते हैं कि जाने यानी एक छोटा सा शब्द है ये, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए है। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसर, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है, जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

0: फिफ्टी, कुछ तेरे दिल में फिफ्टी, कुछ मेरे दिल में फिफ्टी, जमाना है बुरा।
1: फिल्म का नाम है CID, गायिका हैं गीता दत्त, जानिसर अख्तर की रचना, ओपी नैयर की धुन।

0: जमाना है बुरा।
1: जी तो हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं, मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत

तक यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो कभी दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द कई भाव लेकर आता है। ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहाँ एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ उन यादों को हम जरूर कहीं ना कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरजू। जी, ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की पसंद मिलती है इस गीत के जरिए, है ना।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहर में ठंडक पहुंचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहर में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघ कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है, दिल की बस्ती ऐसे उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है, रातें जागकर कटती हैं, आंखें बंद करते ही उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींदें छीन लेता है, इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार हैं, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो है हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे, मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कही नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है। हर छोटी चीज उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात, और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारी रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहां हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखते हैं कि आज संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है, पर उठकर नहीं हम जा रहे, माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं।

साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से, ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए? लिखिएगा ये बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठकर चले आए हैं, आप किसी की जिंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

0: जाता है तो जा, ओ जाने वाले जा, मेरे मन से धड़कन से तू जा सके तो जानू
1: जाता है।

यह आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो।

हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, यह अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द ता उम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है, मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। लूट कर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई, तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम की आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो, मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है, न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौट कर आएगा अचानक और कहेगा, मैं यहीं था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूं मैं आपके लिए, क्या कहूं मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है, ये आपने अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो, तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं, शायद वहां दूरियां ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दुनिया बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज, शकील बदायूनी के बोल और रवि की धुन।

0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां माँ लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंदी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहां सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें जरा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियां साथ नहीं देती और आंखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।
1: अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी

मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ भी नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूं और सारे गानों को अकेले में जोर जोर

से मैंने गाया है, इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूँ विविध भारती को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पूछा है, कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती, ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी, और मेरे जीवन में वो इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और अब सुरीला सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाजत। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है कि इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।

साथियों, आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे है। अलग अलग तरह से किया जाने वाला तंबाकू सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। एक शोध के अनुसार तंबाकू का सेवन करने वाले 10 लोगों में से प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की मृत्यु इससे होने वाले कैंसर या अन्य घातक बीमारियों से हो जाती है। इतने खतरनाक परिणामों को जानते हुए भी लोग इसकी लत के गुलाम बने हुए हैं, जो बेहद चिंताजनक है।

0: हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रूढ़ियां भी तंबाकू सेवन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू युक्त पान और पान मसाले आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मेहमान नवाजी और आवभगत के रूप में ऑफर किए जाते हैं। ऐसे शौक और परंपराएं किस काम की जिनसे एक पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाए, जीवन पर घोर संकट आ जाए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के बारे में डेविड बिन का कथन है, तंबाकू का वास्तविक चेहरा बीमारी, मौत और डर है, न कि चमक और कृत्रिमता जो तंबाकू उद्योग के उत्पाद बेचने वाले लोग भ्रमित विज्ञापनों के माध्यम से हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। चिकित्सकों के अनुसार मुंह और गले के कैंसर के 90% मामले केवल कैंसर के कारण होते हैं। अपनी पत्नी के लिए, अपने वृद्ध माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस समाज के लिए और देश के लिए अपने जीवन को तंबाकू सेवन से खतरे में मत डालिए। आज ही और अभी दृढ़ संकल्प लीजिए, नो टोबैको, अब और तंबाकू नहीं।

तो साथियों, अब आज का त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है। ये कार्यक्रम विविध भारती के लिए आकाशवाणी कोटा की प्रस्तुति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइन

0: जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर, पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।

0: उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना। आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आप

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने। फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास की संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल विश्वास का।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आपसे भी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है,
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
4: अच्छा मैं कहती हूँ।

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशिला देवांगन, हेमलता देवांगन।

इम्पल देवांगन और इनके परिवार वाले, और ये खत हमें मिला है धमतरी से, रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के

0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए
1: हैं। मनचाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एमजी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनिता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा
2: रहा है। नहीं, बल्कि ये तो मुझे मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डेजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूं 2 हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो नो नो नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना।
2: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा नन्ना। छोड़ दीजिए ना।
1: अरे अरे सुनो तो।
2: नहीं सुनती।
1: ओफो, अरे बात तो सुनो
2: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
1: ओ डेजी, डेजी माय लव। डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
1: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
1: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: डिजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत है।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी,
0: डेजी व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की साड़ी।
0: ओह डेजी माय गॉड।

सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने

0: सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
1: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
1: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
1: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
1: भले उसे दवा दी जा रही है,
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
1: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में नहीं।
1: तेजी,
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
1: तो क्या करूँ मैं? आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
1: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
1: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
1: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
1: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
1: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं उठा सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूँ। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
1: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूँ, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
1: जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
2: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
1: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों जी?
0: जी
2: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
2: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
1: अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
2: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा। ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
0: एक साथ घूमने लगेंगे? आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
2: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है?
0: वो
2: सो रहा है।
0: वो तो बहुत बीमार है, दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
1: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
2: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
1: Well, but that doesn't matter, doctor. A slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
2: अच्छा, मैं चलता हूँ। मेरे को जरूरी काम है। चलो डेजी।
1: ओके।
0: अच्छा डॉक्टर।
1: बाय डॉक्टर। बाय।
0: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
1: जब तक जरूरी होगा।
0: मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
1: अपने लिए।
0: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
1: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
0: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
1: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
0: आपसे कहा था जरा बच्चे की जाँच कर लो।
1: जाँच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
0: ये क्यों नहीं कहते कि आप जाँच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
1: जैसी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
0: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
1: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
0: बंद भी करो ये सब, बाहरी चमक को

0: सौंदर्य समझने वाले आप।
1: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा।
0: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
1: मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है, और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
0: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
1: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
0: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
1: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
0: तुम्हें क्या हो गया है?
1: तुम उससे ज्यादा बेनी की फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
0: मिल गया संतोष। बेनी मुझे क्षमा करना, बेनी मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
2: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
0: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
2: कैसी शंका?
0: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
2: ओ डेजी, तुम्हारा सवाल बड़ा विचित्र है।
0: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
2: नहीं।
0: मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
2: लॉरेंस को? नो नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
0: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
2: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
0: आप ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
2: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ?
0: इस बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
2: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
2: क्या?
0: लेकिन वास्तव में डॉक्टर, डॉक्टर आप मेरे पर एक कृपा कीजिए।
2: बोलो।
0: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
2: मैं?
0: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
2: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है, मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता।
0: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
2: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
0: प्लीज डॉक्टर।
2: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही।

0: बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले, ये बेनी का प्रेत है।
1: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा, तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
2: डॉक्टर लॉरेंस?
1: ओ, डॉक्टर रामदास।
2: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
1: बैठ जाइए
2: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
1: जी,
2: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा ना ले, आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
2: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
3: समझा नहीं?
2: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
3: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
2: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
3: डॉक्टर।
2: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
3: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
2: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
3: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
2: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
3: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
2: नहीं, नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझ कर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
3: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
2: नो, इट वाज नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
3: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर।
2: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
3: नो नो नो,
2: क्यों डॉक्टर? सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों, बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए और इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
3: डॉक्टर, डॉक्टर
2: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
3: सच है, सच है डॉक्टर, लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
2: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर, डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
3: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर।

0: प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
1: नहीं कहूंगा।
0: हाँ? क्यों?
1: नहीं कहूंगा।
0: थैंक यू डॉक्टर।
1: क्योंकि ना कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर रॉबिन्स, मैं अब चलता हूं।
0: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
2: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
0: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
0: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
2: लॉरेंस, तुम अचानक,
0: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
2: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
0: हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
2: मैं भी तुम्हें,
0: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ। डेजी सब भूल जाओ।
2: भुला दूंगी।
0: हाँ,
2: हमेशा के लिए भुला दूंगी।
0: हाँ, वो डेजी, मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
2: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
0: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हाँ, ऊटी भी जरूर चलेंगे। चलेंगे ना?
2: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
0: डेजी,
2: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
0: ये क्या कह रही हो तुम डेजी?
2: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
0: नहीं, नहीं, डेजी,
2: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ली।
0: नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
2: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह
0: सकते। डेजी ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
2: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
0: ओह माय गॉड,
2: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
0: नो, ओ नो।
2: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूं।
0: विदा?
2: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
0: है। डेजी, डेजी,
2: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूं। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। आपको क्या हो रहा है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
0: डेजी, ये मेरी नसें टूट रही है डेजी।

0: डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है
1: नहीं
0: डेजी।
1: लॉरेंस, नहीं नहीं लॉरेंस, विश्वास करो, मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ओह नो, ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस लॉरेंस लॉरेंस लॉरेंस लॉरेंस, ये कैसे हो गया? डरो डरो, डॉक्टर बुला के लाती हूँ। भागी भागी हॉस्पिटल गई, डॉक्टर आए, लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
0: एक छोटी सी बात।
1: क्या?
0: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: छांव, कभी धूप तो कभी छांव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना हो
2: होगा।
3: तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका।
2: जी बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्र कवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो

0: की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया
1: जी
0: अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
1: अच्छा
0: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी, वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे,
1: जी
0: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा, रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
1: अच्छा जी
0: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
1: रखते ही
0: हैं।
1: हैं।
0: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे, तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
1: अच्छा
0: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बंबई थी।
1: जी बिल्कुल
0: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए। ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति, डेस्टिनी। तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था,
1: जी
0: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
1: अच्छा जी
0: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे। उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे,
1: जी
0: रावल जी,
1: अच्छा
0: और उन्होंने उनको सुना। उन्होंने जाकर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने, और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में।
1: जी
0: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूं भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई, और वो लोग बहुत इंप्रेस हो गए। और वो इंप्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में, और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए। हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं, और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा, और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया, और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार बन
1: गीतकार
0: गए।
1: बन गए थे। कौन
0: तो
1: से
0: अब
1: सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें लिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूं मैं
1: जी
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप,
1: प्रदीप
0: तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना, और तो कवि प्रदीप कैसे हुए। उस जमाने में, उसी दौरान, एक और नाम था प्रदीप कुमार,
1: जी एक्टर
0: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए,
1: और
0: प्रदीप
1: प्रदीप
0: कुमार
1: कुमार
0: अलग हो गए। तो ये
1: अलग
0: आपके सवाल का जवाब है।
1: हो गए। तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए।

0: ये सूरज रे जलते रहना,
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार की
1: हेमंत
0: आवाज में।
1: कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप, एक कैसा गोल्डन वो है साथ
1: एक
0: में।
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी
0: है
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: तो आइए सुनते हैं ये
0: हाँ
1: प्यारा सा।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था?
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में। तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: हुआ जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
0: जी।
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति,
0: और सिद्धांतवादी।
1: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया। हाँ, तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती,
0: जी।
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था,
0: हाँ
1: तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें।
0: इतनी फ्रीडम थी।

0: फ्रीडम, हाँ,
1: जी
0: तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई, और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं
1: नहीं
0: थी।
1: थी जी।
0: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने सात फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी
0: बहुत बहुत बहुत सारी
1: जी।
0: बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने, ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं। तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ,
1: जी।
0: आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी, वो गर्म
0: मैं
1: है।
0: गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो
1: हाँ।
0: बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा,
1: अच्छा।
0: हाँ मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ
1: अच्छा
0: लेना नहीं चाहता हूँ,
1: जी।
0: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियां तो दी
1: हाँ
0: होगी,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
1: पिता जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब।
1: अच्छा।
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: अरे हाँ।
0: तो उन्होंने बोल दिया माँ पर, मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
1: जी
0: लेके।
1: जी
0: तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान, उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
1: जी
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था, अरे नारायण जी आप आए हैं आइए। बोलते माफ कीजिए, लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है। तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है। खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए, और वैसे मतलब ये जो
1: विवाह,
0: यूनियन था
1: हाँ, वो संपन्न
0: विवाह
1: हुआ
0: का, तो वो खुशी
1: जी
0: खुशी उसकी समापन हुआ,
1: जी जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही उस
0: पानी बन के
1: दंपत्ति
0: रही।
1: जीवन में।
0: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी, लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी, ये सबसे बड़ी बात है जी।
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी।

0: और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
1: वाह, उनकी
0: मतलब
1: शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
0: ऐसी
1: में की
0: थी।
1: गई
0: हाँ
1: नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
1: जी।
2: गा रही है जिंदगी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, लाइक जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल।
1: है ना? ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे,
0: ठीक
1: वो सब पता चलने लगा।
0: जी।
1: और खैर, वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया,
0: घर में एक आम पिता की
1: आम
0: तरह वो
1: पिता की
0: रहे
1: तरह।
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, कि कोई
0: जी
1: स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी।

0: इसके लिए उनकी जो लिखने
1: लिखाई
0: की
1: थी
0: शक्ति
1: जी बिल्कुल,
0: वो और बढ़ी मेरी माँ के कारण।
1: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर
0: जी
1: दिखाया।
0: जी
1: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
0: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था। और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आजादी के लिए लड़ाई
1: जी
0: वो उन्होंने वहां बहुत नजदीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि जहां पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है, ये कोई
1: मतलब
0: जानबूझ के नहीं
1: स्वप्रेरित
0: हुआ।
1: हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था,
0: हाँ
1: तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है
0: हाँ
1: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
0: हाँ और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
1: जी
0: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
1: अच्छा
0: हाँ तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
1: हाँ,
0: और
1: तब
0: फिर
1: तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में।
0: नहीं, वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे
1: जी
0: मुंबई।
1: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान।
0: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया
1: उग्र
0: था उस
1: रूप में।
0: वक्त।
1: हाँ जी
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
1: जी क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी? आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो, जिस कविता ने।
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
1: जी
0: थी,
1: जी
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये
1: जी
0: कविता
1: जी
0: लिखी
1: बिल्कुल।
0: है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
1: बहुत खूब।
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है लेकिन
1: जी जी
0: ये यही
1: जी
0: कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त लिखी,
1: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ,
0: अंकुर
1: और
0: पैदा
1: वहां
0: हुआ।
1: से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, आज
1: जी
0: हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं, और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का।

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी
1: लेकिन जो बातें सुनी, और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी।
0: जी
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि ये कवि को पकड़ो, इसको
0: बिल्कुल
1: गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान,
0: जी
1: माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा।

0: इनको पकड़ के ले जाएंगे, उनको अंडरग्राउंड कर दिया। अंडरग्राउंड मतलब कहीं
1: भूमिगत कर दिया।
0: भूमिगत, भूमिगत तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे,
1: जी
0: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं, देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है, तो वो बात
1: जी
0: सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
1: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
0: शब्दों
1: क्योंकि
0: की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे, और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल। और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो है हिलोरे लेने लग जाता
0: और
1: है।
0: दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो
1: जी
0: उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती
1: कश्ती
0: निकाल
1: निकाल
0: के,
1: के,
0: तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात
0: सही
1: ये
0: बात है।
1: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा गांधी जी उनके हीरो थे, तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई, और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है, ये इस गाने के
1: कोई
0: सिवाय वो पूरी नहीं
1: गाना
0: होती।
1: जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
0: जी
1: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही गीत
1: साबरमती के संत।
0: साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं, मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ, और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी, या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश, बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी।

0: तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं,
1: भील
0: तो
1: जाति के
0: भील
1: लोग।
0: जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी। हाँ,
1: अच्छा।
0: तो वहां क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गांव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे। तो
1: जी
0: ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
1: जी
0: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
1: नहीं है,
0: सारे गामा नहीं है,
1: कॉपी की भी नहीं है।
0: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है। ठीक है, तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया,
1: जी
0: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
1: बिल्कुल।
0: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं
1: बिल्कुल, वो
0: कि
1: दर्शन
0: एक
1: जो
0: छोटे
1: उन्होंने
0: पिंजरे
1: दिया
0: में
1: है।
0: पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे
1: अध्यात्म के
0: संसार
1: गीत
0: की
1: ये।
0: हालत क्या हो गई, भगवान
1: हाँ,
0: कितना बदल गया इंसान। हाँ, और मतलब ये मैं कहूं कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर
1: देखी
0: देखी। हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको
1: मुखड़ा
0: क्या
1: देख ले
0: बताऊं,
1: दर्पण में।
0: मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक है,
1: सीरीज है उनके पास, और आज
0: हाँ,
1: भी उनके
0: सुनते हैं लोग,
1: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद
0: सुनते
1: करते
0: हैं।
1: हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
0: पिंजरे के पंछी सुनिए।
1: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था। शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे, तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं हैं जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे,
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आईका आईका सर्व लोग आईका, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं,
0: हाँ।
1: और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी, सब लोग तुम क्यों रो रही हो,
0: हाँ।
1: मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा।
1: जी,
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहाँ हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई,
1: चतुराई
0: कर्म का लेख मिटे
1: मिटे
0: ना रे
1: नारे
0: भाई,
1: भाई।
0: जरा समझो इसकी सच्चाई।

0: गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है, कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या है,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता
0: जीवन
1: है और अपने
0: दर्शन
1: मन को हम समझा लेते हैं
0: समझा
1: कि
0: लेते
1: अच्छा
0: हैं।
1: इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे भाई, तो
0: हाँ,
1: हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में ये
0: कर्मों
1: सब
0: में कुछ
1: लिखा
0: गलत।
1: है तो
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले
1: वाले।
0: तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो
1: हाँ
0: हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूं कि उनके हर एक गीत को, हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है। उजाले उन

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। FM बैंड 103.2 MHz पर संध्या के 5 बजे हैं। लीजिए, अब हम प्रसारित कर रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनक पुर, टकिया, मेंढारी, भगवानपुर, नवापारा, इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरना, नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बैडाण, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटा पानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ा माचा, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 124 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी और अर्जुनी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, फुरफुंदी, कोठारी, सरकारी कुआं, हाथी, जोगी डीपा, धौरा भाटा, कोल डीपा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

वन विभाग सरगुजा, यह आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र का प्रसारण है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 5:05 हुए हैं और अब लीजिए पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मिलन फिल्म के इस गाने से। आवाज इसमें है लता मंगेशकर और मुकेश की। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और लीजिए, अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रेम बंधन फिल्म का गीत। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं इस गीत में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आपको दे दें। श्रोताओं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https/awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको एतबार फिल्म का गाना, जिसे गाया है आशा भोंसले और भूपिंदर सिंह ने। हसन कमाल की लिखी गीत की धुन बनाई है भप्पी लाहिरी ने। आइए सुनते हैं।

और आइए अब चित्रपट संगीत कार्यक्रम के इस अंग को सजाते हैं अगले गीत से। गीत लिया है हमने प्यासी शाम फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की है। गीत लिखा है मजरूह ने और संगीत की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए सुनिए।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। मोम के गुड़िया फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाज़ें हैं इसमें। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा भी है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गाना।

जूली फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के ने गीत को लिखा है और राजेश रोशन ने धुन बनाई है। लीजिए सुनिए।

और इसी गीत के बाद चित्रपट संगीत कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। श्रोताओं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:35 हो चुके हैं और अब लीजिए पेश है ईमेल फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने। और कार्यक्रम के इस भाग के लिए पहले गीत के लिए आप सभी ने

ईमेल फरमाइशें भेजी हैं। नरगुड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश शाबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि शीतल राजेश। मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी रितिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप। वीरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन, रेनू, रजनी और प्रियंका देवांगन। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा। सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांस कुमार चंदन। पोड़ीभाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोआराम, यदु, निखिल, वसुंधरा चंदन और प्रांजल चंदन। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। कुम्भारगली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा और प्रतीक्षा चंदन। जोधपुर राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और गर्व, हिमाक्ष। पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री बुरांडे। बठिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। तिवर्ता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहोदरीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य और मेघा मस्कीन। आप सभी को आपकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं पतिता फिल्म का गाना। आवाज लता मंगेशकर की है, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत शंकर जयकिशन का है।

बिहार से नुसरत जहां मुसर्रत जहानाज अलतलत फरहत रिफ अत नुजहत साजिया साहिन नाज और नाजिया नूरी नाज चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन मोहम्मद यूसुफुद्दीन रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता जगराओं से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज पीयूष कुमार और रोहित राज नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता कर्ण शक्ति जिया रैया और दर्शन भाई महाराष्ट्र से रूपेश संघई महेश प्रगेश और प्रीतेश संघई यवतमाल से राहुल मनवर सरिलता सरला चेतन रोशनी और प्रियांशी विशाल मनवर भाटापारा से प्रेमलाल साहू भूपेंद्र कुमार दुष्यंत और राघवेंद्र साहू यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पनाताई शैलेश प्रतीक्षा स्वप्निल और रक्षता लोखंडे मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े वसंतराव भोजनी निवृत्ति आड़ोकर नेपानगर से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर नीति कुशल सुरभि अश्विन शाह मंगलाबेन और राजेंद्र शाह धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा सुनीता हर्ष विनीत और कृष्टि पटवा आप सबकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं आपको लूट मार फिल्म का गाना सुनवाकर आशा भोसले और अमित आशा भोसले की आवाज में ये गीत है अमित खन्ना ने इस गीत को लिखा है और राजेश रोशन ने इसकी धुन बनाई है आइए सुनते हैं ये गीत

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश आप सभी ने की है बरका कारा से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी मोहम्मद अफजल मलिक, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा हनुमान बोडखे, पलेरा टीकमगढ़ विश्व से व्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी सोनाली, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू, और लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, पीएम थांदी, वामिका और वाणी थांदी, फिल्म सिटी मुंबई से अबीदा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, पूर्णा जंक्शन मुस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना और चेतन भगत, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी और अन्नपूर्णा वर्मा, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र सिंह डूडी, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी और उमा तिवारी, हांसी से राज मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता और सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, दुर्राबांधा बाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन और युवराज साहू, और बुलंदशहर से है मोहम्मद सईद इब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी। लीजिए, आप सबने सुनना चाहा है दाग फिल्म का गाना, सुनवा रहे हैं आपको लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

अब कार्यक्रम के इस अंक के अंत में आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश। आप सभी हैं खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, मुरादाबाद दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाहबख्श, राबिया शेख, शेख रही मुन्ना, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमार, बुलढाणा वर्सिंडी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार, लघान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणि बघेल, साहिल भारती बघेल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल और पूजा परिहार, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी चौधरी, मालती चौधरी, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चौवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भूमन कामरी, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वाशु, डॉली और पूर्वेश साहू, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला और विशाल नावकर, और गांव हीरावाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा। लीजिए आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं गिरफ्तार फिल्म का गाना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, इंदिवर के लिखे गीत की धुन बनाई है भप्पी लाहिरी ने, आइए सुनते हैं।

और इसी गीत के बाद ईमेल करें। गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजने को हैं।

श्रोताओं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले हम आपको बता दें इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, आज संध्या 6:30 पर कानून की बात कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा जानकारी का, घरेलू हिंसा एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों के संबंध में कानूनी सहायता। और इस विषय पर जानकारी देंगे श्री मयंक सिंह ठाकुर, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल जिला धमतरी। मन की बात कार्यक्रम के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण हम रायपुर केंद्र से रात 8 बजे रिले करेंगे। ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम सभा में संध्या 7:20 पर बेरा के गोट का विषय होगा सामयिक कृषि कार्य। और इसके अलावा क्रम होगा फरमाइशी छत्तीसगढ़ी गीतों का, आप मन के गीत। रजनीगंधा कार्यक्रम हम पेश करेंगे रात 8:30 पर। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात 9:15 से। ये थी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। और अब एक नजर हमारे केंद्र से कल यानी सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

कल हमारी प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में सामयिक सुझाव का विषय रहेगा कोचाई के खेती। सुबह 6:45 पर फ्लैगशिप कार्यक्रम नवविहान में चर्चा सुनिएगा पीएम गतिशक्ति बहु मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान। आज सुबह कार्यक्रम का समय रहेगा 7:05 पर। सुबह 7:30 पर प्रसारित करेंगे कार्यक्रम यादों के झरोखे से। श्रोताओं 8:30 पर छत्तीसगढ़ी गीतों के कार्यक्रम अमराई में कलाकार विजय राठौर और साथी एवं बरसाती कौशिक ईश्वरी बनर्जी और साथियों के गाए गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे। तुहर गोट हमर गीत छत्तीसगढ़ी बातों और गीतों का ये फोन इन कार्यक्रम, इसका प्रसारण हमारे श्रोता सुन सकते हैं दिन में 10 बजे से आपकी पसंद। फरमाइशी कार्यक्रम हम आपके रेडियो सेट तक पहुंचाएंगे 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय रहेगा दिन में 11 बजे। इसके बाद 11:30 से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

श्रोताओं, कल संध्या 5:35 पर युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवा जगत में आज की बात का विषय रहेगा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और ग्रंथालय की महत्ता। इसके अलावा क्रम रहेगा प्रकृति और पर्यावरण। ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम सभा में संध्या 7:20 पर बेरा के गोठ में चर्चा सुनिएगा नान्हे लैकन ला सुरक्षित रखाओ। इसके अलावा भेंटवार्ता के क्रम में पोषण वाटिका का महत्व एवं आधुनिक मॉडल, ये बातचीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल रात 8 हम सुनवाएंगे कलाकार आदेश श्रीवास्तव के गाए कुछ गीत। और रजनीगंधा कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8:15 पर। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रोज की तरह रात 9:15 से।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 होने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद जिले की चिट्ठी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। जिले की चिट्ठी में सुनिए, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख है संजय मानिकपुरी का।
1: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू। श्रोताओं, कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू की अध्यक्षता में बीते 25 मई को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एग्रीस्टेक पंजीयन का काम जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अभी तक एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन नहीं कराया है, उन्हें आगामी खरीफ सीजन में धान बेचने में परेशानी हो सकती है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे 15 जून तक अपना पंजीयन अवश्य करा लें। बैठक में खाद और बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि खाद की कालाबाजारी

0: जमाखोरी और अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। श्रोताओं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में डायल 112 सेवा के तहत 10 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पांस वाहन प्रदान किए गए हैं। बीते 19 मई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर विधायक कविता प्राण लहरे और कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि पर सबोबर थीम पर शुरू की गई ये सेवा लोगों को त्वरित और आपातकालीन स्थिति में सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वाहनों में जीपीएस सिस्टम, डैश कैमरा, वायरलेस रेडियो और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इससे कंट्रोल रूम सीधे घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेगा। श्रोताओं, राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण की चयन सूची 16 से 22 जून तक जारी की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की चयन सूची 26 जून से 3 जुलाई और तीसरे चरण की चयन सूची 8 से 12 जारी की जाएगी। श्रोताओं, सुशासन तिहार के तहत इन दिनों जिले में जन समस्या निवारण शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में लोगों की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया रहा है। इसी कड़ी में बीते 28 मई को केडार गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित शिविर में अधिकारियों ने ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 हितग्राहियों को आवास पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं हितग्राहियों को श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और उन्नत बीज तथा हरी खाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में 5 लखपति दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस शिविर में मांग और समस्याओं से संबंधित 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। श्रोताओं, उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने सारंगढ़ नगर पालिका परिषद बस स्टैंड में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के प्रावधानों के अनुरूप ये राशि अधोसंरचना मद से स्वीकृत की गई है। इस राशि में बस स्टैंड में यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, प्रतीक्षालय और सुविधाओं का विकास किया जाएगा। श्रोताओं, खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले में 1 से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र छात्राओं को एथलेटिक्स, योगा, कराते, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट सहित विभिन्न खेल का प्रशिक्षण दिया गया। खेल प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी बच्चे अपने पसंदीदा खेल जरूर खेलें। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करें, साथ ही उन्हें मोबाइल गेम और मोबाइल की लत से दूर रखें। खेल प्रशिक्षण शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रही थी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख था संजय मानिकपुरी का। ये आकाशवाणी रायपुर है। 6:10 होने को है। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ह छत्तीसगढ़ में ज्ञान भारतम अभियान के तहत मल्हार में मिले दुर्लभ तांबा पट्टिका के करें जिक्र। जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर ले घलो करिन बात। मुख्यमंत्री ह किहिन की प्रदेश में खातू और बीजा के कोनो कमी नहीं हवे औ प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम उपचुनाव में काली 1 जून के होही मतदान। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह किहिन है कि सरकार ह देश के अमूल्य धरोहर ल बचाए बर प्रयास करत है। आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम में ओमन बतैन की ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला स्थित मल्हार 6वीं-7वीं शताब्दी के वंश के महर्षि बलार्जुन ले जुड़े दुर्लभ तांबा के 3 ठिन पट्टिका मिले हैं।

0: किन्यान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री है रांची में।

0: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सेलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: श्री मोदी ह देशवासी मन ले ए दारी जोरदारहा गर्मी के दौरान ज्यादा ले ज्यादा सावधानी रखे और सरकारी दिशा निर्देश के पालन अपील करें। ओमन किहिन की ए मौसम में पानी पियत रहे और अगर निकलना ही पड़े तो थोरकुन जतन करके निकले। प्रधानमंत्री ह लोगन ले गर्मी ले बाचे बर आमपना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेलपना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और साले कढ़ी जैसन पेय पिए के अपील करीन हैं। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान है देश के हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगात है। खगोल विज्ञान है देश में तेजी ले लोकप्रिय होत है। ओमन युवा मन ले खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होए और छुट्टी में तारा मंडल देखे के अपील करें। प्रधानमंत्री ह काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर के आम फल के गोट बात करत हुए कहिन कि सबो जगह के आम के स्वाद और सुगंध अलग अलग होते। श्री मोदी ह कहिन कि भारतीय आम ह दुनिया के बाजार तक अपन पहुंच बनाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह आज रायपुर स्थित अपन निवास कार्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और आम लोगन संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात ल सुनेन। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ह कहिन कि आज प्रधानमंत्री ह जशपुर जिला टांगर गांव के युवा धावक अनिमेश कुजूर के उपलब्धि के बारे में बात करत हुए प्रदेश के युवा मन ल यही संदेश देहे कि कम संसाधन ह प्रतिभा के उड़ान ल रोक नहीं सके। ओमन कहिन कि प्रधानमंत्री ह राष्ट्रीय मंच ले प्रदेश के प्रतिभा और सांस्कृतिक धरोहर दोनों के बात करके पूरा छत्तीसगढ़ के मान बढ़ाए है। सुनिया मल्ल बता दें कि अनिमेश कुजूर ह 100 मीटर दौड़ ला सिर्फ 10.15 सेकंड में पूरा करके नवा रिकॉर्ड बनाए हैं और राष्ट्रमंडल खेल 2026 बर क्वालिफाई घलो हो गए हैं। खेत बचाओ अभियान देश भर में काली 1 जून ले 30 जून तक चलैया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ह कहिन है कि खेत बचाओ अभियान में खेत, किसनहा और गांव मल्ल जोड़त हुए एला बड़का देशव्यापी अभियान बनाए जाना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री ह नई दिल्ली में खेत अभियान के तैयारी के बारे में एक ठिन बड़का बैठका के अगुवाई करत हुए ए बात कहिन। ओमन कहिन कि ए अभियान के मुख्य ध्यान खातु के संतुलित और सही उपयोग, मौसम के चुनौती ल देखत हुए किसनहा मल्ल सही बेरा में परामर्श, पंचायत स्तर में किसान मन के सक्रिय भागीदारी और गांव ल सीधा ये योजना ले जुड़े ऊपर ध्यान होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह सुशासन तिहार में आज दुर्ग जिला में रखे गए कार्यक्रम में 737 करोड़ रुपया के आने आने विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करें। ए मौका में मुख्यमंत्री ह कहिन कि ए सबो परियोजना ह क्षेत्र में नागरिक सुविधा के विस्तार और विकास ल आखिरी आदमी तक पहुंचाए के हमर सरकार के संकल्प ल और ज्यादा बल दही। मुख्यमंत्री ह आज दुर्ग में आईटी पार्क के उद्घाटन घलो करिन। आईआईटी भिलई, नगर निगम और राज्य सरकार के सहयोग ले बने ए आईटी पार्क ह युवा मन बर रोजगार, नवा प्रयोग और स्टार्टअप के नवा मौका बनही। इही मौका में पत्रकार मन ले गोट बात करत हुए मुख्यमंत्री ह कहिन कि प्रदेश में खातु और बीजा के कमी नहीं हवे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमारे समसामयिक कार्यक्रम के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमारे फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बढ़वो बाचे समाचार कोती। प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाव में काली 1 जून के मतदान होही। राज्य निर्वाचन आयोग ह मतदान बर सबो तैयारी पूरा कर ले है। ए चुनाई बर सनिच्चर रतिहा 12 बजे प्रचार थिरागे है। एकर बाद प्रत्याशी मन घर घर जाके मतदाता करत है। सुनिया मल्ल बता दन कि नगरी निकाय में

0: कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायत में कुल 392 प्रत्याशी मैदान में है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनई में नाम वापसी होय के बाद पंच के 640 पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो गए रहिस, जेखर बाद काली 1 जून के 107 पद पर वोटिंग कराए जही। उन्हें सरपंच के 15 पद ऊपर निर्विरोध निर्वाचन हो गए है और अब बाचे 34 पद पर मतदान होही। एकरे जैसन जनपद सदस्य के 10 पद पर वोटिंग होही। नगरी निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष के 5 पद पर मतदान होही। नगरी निकाय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के माध्यम ले और पंचायत चुनाव में मत पेटी के माध्यम ले वोट डाले जही। कोरबा जिला में काली संझा 3 युवक मन ऊपर पेड़ के डारा गिर गए, जेखर ले तीनों जन के मौका में ही मौत हो गए। बताया जावत है कि पाली थाना क्षेत्र के चोरका डांड गांव में पानी और तेज हवा ले बांचे बर ए तीनों जन यह पेड़ के तरी खड़े रहिन। इसी दौरान तेज हवा कारण पेड़ के एक हिस्सा हर टूट के सीधा उही ऊपर गिर गए, जेमा दब के तीनों जन के मौत हो गए। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस हवे। ए मौका के आने आने जिला में जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करे जावत है। के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली पोस्टर और रील प्रतियोगिता रखेगी। संगे संग दांत के डॉक्टर मन ह लोगन ल तंबाकू खाए ले होवैया नुकसान के बारे में घलो बताइन। उन्हें समाज कल्याण विभाग के मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ह प्रदेशवासी मन ले तंबाकू और आने नशीला सामान दूरिया रहे के अपील करे है। ओमन कहिन की तंबाकू ह मनखे के संगे संग परिवार और समाज तीनों बर बड़का खतरा है। युवा मल्ला नशा ले बचाए बर समाज के सब्बो वर्ग ल मिलजुल के काम करना होही। और अब थोर कुन समाचार सार मा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा आज कबीरधाम जिला के रामहेपुर गांव में आयोजित माता अहिल्याबाई होलकर के जयंती समारोह में शामिल होइन और कबीरधाम जिला के बैहरसरी गांव ले एक युवक के हत्या के मामला व पुलिस ह 3 आरोपी ल गिरफ्तार करे है। आखिरी में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में ज्ञान भारतम अभियान के तहत मल्हार में मिले दुर्लभ तांबा पट्टिका के करिन जिकर, जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर करिन बात। मुख्यमंत्री कहिन कि प्रदेश में खातु और बीजा के कोनो कमी नहीं हवे और प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम और उपचुनई में काली 1 जून के होही मतदान। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 6:20 हुए हैं और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम के इस भाग के पहले गीत के लिए ईमेल फरमाइशें आई हैं आप सभी की। रायपुर से नीलू मेघ वंदना कुमार बिट्टू कुमार, भोपाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत और अर्पिता, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राचीन और प्रवीण पुजारी, तखतपुर से मिश्रलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाजिद साहिद, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, निवान सौरभ, साइना वेंडी शर्मा, मुरादाबाद दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एसएम जावेद और गुप्ता अंजुम, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, माधुरी और किरण, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मंजू भाटिया और मयंक भाटिया, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे, निम्नाबाद जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गम्हाणकर, टुकटुक गम्हाणकर, प्रिंस एकांश, सुमित, ध्वनि गम्हाणकर, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलियस डिकैस्ट्रो, तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा और सुजाता पोहरकार। आप सभी को सुनवा रहे हैं कामचोर फिल्म का गाना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। इंदिवर के लिखे गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से भारतराम पडौड़ी जयंती, हेमंत उमंग और मोक्ष पडौड़ी, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इसप्रीत शर्मा, और कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सरवद देशमुख और सानवी देशमुख, दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नगमा अजीम, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री देवांगन, ऋषभ और ऋचा देवांगन, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय कटनकर, दिल्ली से सोनम सना और अदीबा, मलौट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजोरिया, दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और मक्कड़ जहां, और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष देवांगन, रवि, सनी, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन, बुड़गहन से हैं रामदुलारी प्रजापति, रामचरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, कस्बा बराड़ा अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए अनमोल मोती फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत की धुन बनाई है रवि ने।

0: और इसी गीत के बाद ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का यह अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:30 होने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद कानून की बात कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। इस कार्यक्रम में आज घरेलू हिंसा एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों के संबंध में कानूनी सहायता पर विषय पर श्री मयंक सिंह ठाकुर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल जिला धमतरी के द्वारा जानकारी प्रसारित की जाएगी। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: और एफएम एंड पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, कानून की बात। इस कार्यक्रम में सुनिए घरेलू हिंसा एवं समाज व्याप्त कुरूतियों के संबंध में कानूनी सहायता विषय पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल श्री मयंक सिंह ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति है।

0: श्रोताओं नमस्कार। कानून की बात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हमारा विषय है घरेलू और समाज में कुरीतियों के संबंध में कानूनी सहायता। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं श्री मयंक सिंह ठाकुर, असिस्टेंट लीगल एट डिफेंस काउंसिल धमतरी से है। तो मयंक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मयंक जी, हम ये जानना चाहते हैं कि घरेलू हिंसा क्या है और इसके क्या क्या प्रकार है।
1: जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मुझे अपनी मंच

0: प्लान किया अपनी बात रखने के लिए।
1: जी
0: जी, घरेलू हिंसा बहुत कम लोग समझते हैं कि होता क्या है। मेरा ये कहना है कि घरेलू हिंसा को लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां कुरीति हैं। घरेलू हिंसा से ज्यादा जो पीड़ित हैं वो महिलाएं हैं। घरेलू हिंसा में हम ये जानते हैं कि घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो घर के परिप्रेक्ष्य में रहती हैं, उनके साथ विभिन्न प्रकार के शोषण किया जाता है, जिनसे उनको स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन और मानसिक और शारीरिक कई प्रकार की अपहानि होती है।
1: जी
0: शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक हो, भावनात्मक हो या आर्थिक दुरुपयोग भी इसकी श्रेणी में आता है,
1: जी
0: जिसके में हम विभिन्न सकते हैं। जिसको अगर हम कहें तो शारीरिक हिंसा, शारीरिक हिंसा में होता है मारना, पीटना, धक्का देना, बाल खींचना या विभिन्न प्रकार की शारीरिक चोट पहुंचाना, ये शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। मानसिक और भावनात्मक शोषण भी अपने आप में बहुत ज्यादा तकलीफदायक है महिलाओं के लिए, कि लगातार अपमानित करना कि आप समाज में मुख्य धारा में रहने लायक नहीं है, या बुरा भला कहना, या धमकाना, घर से निकालने की कोशिश करना, दहेज के लिए मारना, बच्चा ना होने को लेकर उन्हें बातें कहना, कम पैसे अपने मायके से लाने को लेकर कहना, या रहन सहन, खान पान, कपड़ों को लेकर ताने मारना, यह मानसिक शोषण के अंतर्गत आता है।
1: जी
0: यौन हिंसा में हम कह सकते हैं कि महिला की मर्जी के बगैर उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर करना या जबरदस्ती करना, यौन हिंसा के अंतर्गत आता है।
1: जी
0: इसमें आर्थिक शोषण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि महिलाओं को नौकरी करने से रोका जाता है, और अगर वो कमाई करती है तो उसकी कमाई को छीन लिया जाता है, कि घर खर्चे में डाल दिया जाता है और उसे अपने पास रखने का अधिकार नहीं दिया जाता है। घर खर्चे की जो बुनियादी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए एक महिला को, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कई प्रकार की धारणा रहती है और आर्थिक रूप से हमेशा अपने आप को कमजोर और पिछड़ा महसूस करती है।
1: जी तो मयंक जी, जैसे आपने बताया घरेलू हिंसा के बारे में महिलाओं को लेकर, तो इसमें क्या महिला ही पीड़ित हो सकती
0: जी,
1: है?
0: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो बनाया गया है, इसमें पूर्णतः स्पष्ट किया गया कि केवल एक महिला ही जो है घरेलू हिंसा की पीड़ित हो सकती है।
1: अगर जो पीड़ित महिलाएं हैं स्वयं घरेलू हिंसा की सूचना न दे पा रही हो, तो कौन कौन महिला की ओर से सूचना दे सकती है?
0: जी, सबसे पहले तो महिला खुद अगर स्वयं अपनी जो साथ जो गलत हो रहा है वो बताए तो ज्यादा बेहतर है, परंतु अगर उसे घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, या वो डर रही है, या बताने को हिचकिचा रही है, या किसी प्रकार से नहीं बताना चाह रही है, व्यक्ति है जो उसका, चाहे उसका पड़ोसी हो, नाते रिश्तेदार हो, या किसी प्रकार से कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे इसकी जानकारी कि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो वह आकर इसकी सूचना थाने में दे सकता है, सखी सेंटर में दे सकता है, नव बिहान में दे सकता है, ताकि किसी प्रकार से ये एक सही चैनल में अगर आता है
1: जी
0: तो उसके बाद वो महिला को हम संरक्षण कर सकते हैं और उसको हम बचा सकते हैं कि घरेलू हिंसा से उसके पीड़ित रहने के है, समाज उसके लिए बेहतर करना चाहता है और कानून उसके साथ है।
1: अच्छा, घरेलू हिंसा के कोई ऐसे प्रमुख कारण होंगे कि घरेलू हिंसा आखिर होती क्यों है, उसके बारे में कुछ बताइए।
0: घरेलू हिंसा के मूल कारण अगर हम कहें तो एक जो पुरुष प्रधान जो मानसिकता है, सत्ता जमाने की जो इच्छा है कि मेरे नियंत्रण में ही पूरा घर रहे, ये जो पुरुष की एक संकीर्ण मानसिकता हम कह सकते हैं कि वो अपनी पत्नी को या अपने घर में जो महिला है उस पर पूर्णतः अपना अधिकार समझता है, उसे एक वस्तु की तरह प्रयोग करने का प्रयास करता है। यह जो पुरुषवादी मानसिकता है कि लड़कियां या महिलाएं जो है वो कमतर हैं, या दहेज को लेकर उसकी जो लालसा है कि मुझे कितना पैसा या क्या संपत्ति मुझे शादी के माध्यम से प्राप्त हो जाए, या जो शराब की जो लत है, या जो अन्य प्रकार के नशे जो हम देख रहे हैं समाज में जो व्याप्त हो रही है, उस नशे की वजह से जो संकीर्ण मानसिकता आ रही है इंसान के अंदर, ये हो सकता है। और विवाह के दौरान जो संबंध अलग स्थापित किए कर रहे हैं लोग, जो अपनी पत्नी के अलावा जो गैर संबंध बनाए जा रहे हैं, या जो यह शक करना अपनी पत्नी के ऊपर कि इसका कहीं और संबंध है, और उस कारण से महिला को जो शोषण कर रहे हैं कि मैं इसे मारना, पीटना, चिल्लाना, पैसे ना देना, अन्य प्रकार से जितनी भी तकलीफें महिलाएं जो आज फेस कर रही हैं, उनका मेन कारण यह है कि पुरुष ये मानने को तैयार नहीं है कि महिला उसके बराबर की व्यक्ति है।
1: जी तो मयंक जी, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला कैसे सहायता प्राप्त कर सकती है?
0: घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है वो चाहे तो अपने पास के थाने जा सकती है, वहां जाकर बोल सकती है, है न्यायालय आकर अपनी व्यथा बता सकती है, या विधिक सेवा हर जिले में स्थापित है वहां आकर अपनी पीड़ा बता सकती है। सखी वन स्टॉप सेंटर जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, जो हर जिले में स्थापित है, वहां जाकर अपनी व्यथा बता सकती है, या वो चाहे तो नव बिहान जो हर जिले में संचालित है, वहां जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वहां बता सकती है। महिला हेल्पलाइन नंबर है 181, वहां कॉल कर सकती है और स्वयं भी कर सकती है।

0: ही इंसान बता सकता है कि इस महिला को यह तकलीफ हो रही है और उसको पूर्णतः सुरक्षा प्रदान की जाती है।
1: जी, जैसे मयंक जी आपने जिक्र किया अभी कि जो घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला है उसके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से कौन सी योजना है जो चलाई जा रही है?
0: जी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 2005 में एक योजना शुरू की थी, नवा बिहान योजना। इसके प्रमुख उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता एवं आश्रय सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत एक महिला अफसर जो संरक्षण अधिकारी के तौर पर कार्य करती है, यह धारा 8 घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिकारी अंतर्गत है। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संरक्षण अधिकारी जो एक महिला ही होगी वह इसकी देखरेख करती है और पूर्णतः महिला को सपोर्ट करती है, उसका समर्थन करती है, उसे न्यायालय तक लाना, मजिस्ट्रेट के सामने उसकी उसकी मदद करना, केस फाइल करने में मदद करना, थाने में जाकर के उसकी मदद करना, उसको आश्रय प्रदान करना। तो हर प्रकार से एक तरह से संरक्षण जो शब्द शाब्दिक रूप से महिलाओं को संरक्षण देने हेतु संरक्षण अफसर ही उसको पूर्णतः समर्थन करता है।
1: जी, मयंक जी अभी आपने जिक्र किया था कि सखी वन स्टॉप सेंटर, तो इसमें सखी वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त होती है उसके बारे में बताइए।
0: जी, जैसे कि नवा बिहान योजना जो पूर्णतः घरेलू हिंसा को लेकर ही फोकस्ड है, परंतु जो वन स्टॉप सखी वन स्टॉप सेंटर है जो केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंतर्गत महिलाएं या लड़कियां जो घरेलू हिंसा से हो, चाहे यौन हिंसा से हो, चाहे वो बलात्कार पीड़ित हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार से पीड़ित हो, किसी भी केस में वन स्टॉप सेंटर में आ सकती है। वन स्टॉप मतलब महिलाओं से रिलेटेड जो भी तकलीफ है वो
1: जी
0: सखी वन स्टॉप सेंटर में हर जिले में जो उपलब्ध है वहां आ सकती है, वहां पहुंच सकती है और वहां पर 5 प्रकार की सुविधाएं ले सकती हैं।
1: इनका भी कोई संरक्षण अधिकारी होता है?
0: जी, ये संरक्षण अधिकारी जो महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो नवा बिहान में घरेलू हिंसा के लिए विशेष तौर धारा 8 के अंतर्गत, वो तुरंत इनकी सहायता हेतु तत्पर रहते हैं। उन्हें इनकी वो सूचना दी जाती है और वो कानूनी सहायताएं प्रदान करती हैं उन्हें और मजिस्ट्रेट की कार्यवाही में मदद करती हैं कि किसी प्रकार से न्यायालय में ये केस जाए और इन्हें विभिन्न प्रकार के अनुरोधों का लाभ मिले।
1: जी मयंक जी, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुतोषों के आदेश अभी प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है इसके बारे में कुछ बताइए।
0: धारा 12 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम में धारा में कोई भी व्यथित व्यक्ति से मेरा कहना है जो महिला है जिसके साथ जो पीड़ित है, जिसके साथ जो गलत हुआ है, वह संरक्षण अधिकारी के समर्थन के साथ व्यथित व्यक्ति के अंतर्गत 1 से अधिक अनुतोष प्राप्त कर सकता है। चाहे वह घर में रहने का अधिकार हो जहां वो शादी होकर गई हैं, चाहे उन्हें किसी प्रकार का धनी लाभ लेने की आवश्यकता है वो है, चाहे स्त्री धन है। जैसे स्त्री धन को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ सर, स्त्री धन महिलाओं का अधिकार है। शादी के दौरान, शादी से पहले, शादी के पश्चात जो भी धन संपत्ति महिला को मिली है यह उसकी पूर्णतः उसकी संपत्ति है। इस पे किसी से ससुराल वालों का अधिकार नहीं है और महिला को इसे रखने का अधिकार है। अगर स्त्री धन महिलाओं का उससे उनसे लिया जाता है ससुराल वालों के द्वारा, तो ये उसे वापस पाने का अधिकार रखती है, जिसके लिए वह मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष आकर अपना आवेदन दे सकती है और अपनी स्त्री धन को वापस प्राप्त कर सकती है एवं अन्य मूल्यवान व्यक्ति वस्तु जो भी उसके उसके हक से वापस लिया गया है उसे दिया जा सकता है।
1: जी मयंक जी, जो पीड़ित व्यक्ति है वो धनी अनुतोष किस प्रकार प्राप्त कर सकती है?
0: जी, अनुतोष इस प्रकार से प्राप्त कर सकती है सर। धारा 12 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय जो है घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिला है उसे किसी संतान के व्यय हेतु या खुद की हानियों में जो उसे तकलीफ हुई है, मानसिक या शारीरिक जो उसे तकलीफ हुई, उसके लिए कंपनसेशन ये अनुतोष प्राप्त कर सकती है। न्यायालय उसमें स्पष्ट निर्देश कर सकता है कि इतने पैसे या 1,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये जो न्यायालय को उचित लगे उसे पैसे दिलवा सकता है ताकि उसको जो तकलीफ हुई है उसके लिए उसे अनुतोष प्राप्त।
1: मयंक जी, घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है?
0: जी, पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। सबसे पहले तो जैसे सखी सेंटर है वहां पूर्णतः महिला स्टाफ होता है।
1: जी,
0: अगर कोई तकलीफ है महिला आकर बताती थाने तो महिला स्टाफ उसे पूर्णतः देखेगा।
1: जी,
0: जो संरक्षण अधिकारी वो एक महिला होगी, मतलब महिला अफसरों को ही पूर्णतः नियुक्त किया जाता है कि महिलाओं को जो तकलीफ हो रही है उन्हें वो अपने विचार रख सके, क्योंकि हमारा जो समाज है वो महिलाएं अभी भी घूंघट में रहना या जल्दी समाज में खुलकर बोलने से अभी भी हिचकिचाती हैं। तो इस वजह से महिलाओं को ही इसका दायित्व दिया गया है कि वो अपनी बातों को जो महिलाओं को ही बोले ताकि जो महिला अफसर है उनका पूर्णतः समर्थन कर सके।
1: जी, मयंक जी, महिला और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी हेल्पलाइन उपलब्ध है इसके बारे में बताइए।
0: जी, हेल्पलाइन नंबर मैं बोल देता हूँ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

0: सेवा प्राधिकरण में 1500 में आप कॉल कर सकते हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 में आप कॉल कर सकते हैं। महिला हेल्पलाइन पुलिस नंबर है 1091 और सामान्य पुलिस इमरजेंसी है 112। आप इनमें से किसी भी नंबर में कॉल करके अपनी व्यथा बता सकते हैं और आपको त्वरित आपको समर्थन करने के लिए आपको ध्यान रखने के लिए पुलिस और अन्य जो हमारे प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं वो आपकी मदद करने के लिए उपस्थित रहेंगे।
1: जी जी, क्या घरेलू हिंसा के मामलों में समझौता और काउंसलिंग की भी व्यवस्था होती है?
0: जी बिल्कुल, काउंसलिंग की व्यवस्था सखी सेंटर में भी है, काउंसलिंग की व्यवस्था न्यायालय में भी है। न्यायालय भी आदेश करता है कि काउंसलिंग के माध्यम से केस को किया जाए, समाप्त किया जाए, क्योंकि राजी खुशी रहना ही समाज में मुख्य उद्देश्य है। चाहता है कि पति जेल ही जाए। न्यायालय का मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो पीड़ित है, जो अपनी व्यथा बता रही है, उसे न्याय मिले और न्याय मिलने के पश्चात वह खुशी खुशी दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहें। अगर काउंसलिंग के माध्यम से संभव होता है तो काउंसलिंग की जाती है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ये इसने बहुत ज्यादा तकलीफ दी महिला को और इसने जो हम कह सकते हैं क्राइम किया है, तो उन परिस्थितियों में जाने का भी प्रावधान रहता है। पर यह पूर्णता महिला पर है कि वो क्या चाहती है, कि अगर वो क्रुएल्टी में केस कर रही है सेक्शन 85 भारतीय न्याय या घरेलू हिंसा का केस कर रही है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रही है, तो अन्य या दहेज प्रताड़ना का कर रही है, तो या फिर मेंटेनेंस प्राप्त करना चाहती है। यह भी मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि मेंटेनेंस का जो अधिकार है महिला का, ये बुनियादी अधिकार है। शादी के पश्चात हस्बैंड की ये जिम्मेदारी है कि उसे वो मेंटेनेंस के पैसे दे ताकि वह सम्मान पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके।
1: जी, अंत में रेडियो श्रोतागण है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है श्रोताओं से कि आपको घरेलू हिंसा रोकना होगा। आपके घर में हो रहा है ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको रोकना होगा। रोकने का एक ही तरीका है, हर अपने पड़ोस में क्या हो रहा है ये देख लेना कि क्या मेरे पड़ोस में जो दीदी ये भाभी माता हैं उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, तो उसे टोल फ्री नंबर में अगर हम कॉल कर दे 1500 181 1091 या 112, आपका एक फोन कॉल उस महिला का जीवन बदल सकता है। आपको ये जो हमारी धारणा है कि हमारे घर में नहीं हो रहा है हमें क्या करना है, इससे समाज नहीं सुधरेगा। समाज सुधरने के लिए श्रोताओं को ये जागरूक होना होगा कि हमारे बिल्डिंग में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे जिम्मे, हमारे प्रदेश में ये ना हो। और एक बार ये कुरीति समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप देखेंगे कि महिलाएं और भी ज्यादा खुशी से समाज में योगदान कर पाएंगी।
1: जी, तो मयंक जी, आपने घरेलू हिंसा एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों के संबंध में कानूनी सहायता विषय पर इतनी विस्तृत से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
1: तो श्रोताओं, आज का अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: कानून की बात इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे घरेलू हिंसा एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों के संबंध में कानूनी सहायता विषय पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल श्री मयंक सिंह ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
5: पुलिस?
6: मिस सीमा
5: जी,
6: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
5: क्यों? लेकिन मैं
6: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
5: डिजिटल अरेस्ट?
6: 1,00,000 दो, बच जाओगे।

0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराध फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
9: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
8: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
7: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिले दुर्लभ तांबे की पट्टिकाओं का किया जिक्र। जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर से की बात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश में खाद बीज की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 30 मई तक पूरा कर लिया गया है, और प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को होगा मतदान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बल्लार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
11: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
10: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के घुईन टांगर निवासी 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले अनिमेश कुजूर से भी बात की।
12: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड ने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
10: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
11: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवा।

0: हमें ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आमपना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और आमजनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज जशपुर जिले के गर गांव के युवा धावक अनिमेश कुजूर की उपलब्धि का उल्लेख कर प्रदेश के युवाओं को यह संदेश दिया है कि सीमित संसाधन किसी प्रतिभा की उड़ान को रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मंच से प्रदेश की प्रतिभा और सांस्कृतिक धरोहर दोनों का उल्लेख कर पूरे छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ाया है।
2: बड़ी खुशी की बात है कि कई बार बात में छत्तीसगढ़ का लगातार जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज भी छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ है। एक तो जिस जिले से हम आते हैं जशपुर, वहाँ के अनिमेश कुजूर हैं, लेकिन उड़ीसा से वो खेलते हैं। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर और 400 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। आज छत्तीसगढ़ में जो मल्हार है वहाँ का जो ताम्र पत्र है जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, सभी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
1: गौरतलब है कि अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ मात्र 10.15 सेकंड में पूरी कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए क्वालिफाई कर प्रदेश तथा देश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुधार के तहत आज दुर्ग जिले में आयोजित कार्यक्रम में 737 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के सरकार के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री ने आज दुर्ग में आईटी पार्क का उद्घाटन किया। आईआईटी भिलाई नगर निगम और राज्य सरकार के सहयोग से निर्मित यह आईटी पार्क युवाओं के लिए रोजगार, नवाचार और स्टार्टअप के नए अवसरों का केंद्र बनेगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद बीज की कमी नहीं है।
3: प्रदेश में कहीं भी न बीज की न खाद की कमी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और चूंकि डीएपी वगैरह की उपलब्धता बाहर से होती है, उतना पैदावार नहीं है हमारे देश में कि मतलब पूर्ति कर पाए। कमी हुई है तो वो स्टॉक की कमी के कारण नहीं, वहाँ पर पहुँच नहीं पाया होगा। और जैसे जैसे लगातार रोज समीक्षा कर रहे हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसानों से आह्वान करना चाहूंगा कि उनको किसी भी दृष्टि से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। खेत बचाओ अभियान देश भर में कल 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। देश भर में इन दिनों जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 30 मई तक पूरा कर लिया गया है। प्रगणकों के घर घर जाकर 33 के आधार पर मकानों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संकलित की। राज्य में यह अभियान 33 जिलों, 252 तहसीलों, 195 नगरी निकायों और 19,000 से अधिक गांवों में चलाया गया। जनगणना कार्य में 62,000 से अधिक अधिकारी

0: और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। प्रदेश के जनगणना निदेशक ने अभियान की सफलता के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां जनगणना अधिनियम के प्रावधान के तहत पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी। गौरतलब है कि जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इन चुनावों के लिए शनिवार 12 बजे प्रचार थम गया। इसके बाद से प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंच के 640 पदों निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। इस तरह से 1 जून को 107 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है। शेष 34 पदों पर मतदान होगा। इसी तरह जनपद सदस्य के 10 पदों के लिए 1 जून को मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71, अध्यक्ष पद के 5 स्थानों के लिए मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से और पंचायत चुनाव के लिए मत पेटी के माध्यम से मत डाले जाएंगे। कोरबा जिले में कल शाम 3 युवकों पर पेड़ का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पाली थाना क्षेत्र के चोर का दान गांव में बारिश और तेज हवाओं से बचने के लिए ये तीनों युवक एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी दौरान तेज आंधी के कारण पेड़ का एक हिस्सा टूटकर सीधे ऊपर गिर गया, जिसमें दबकर तीनों युवकों की मौत हो गई। आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर स्थित शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली, पोस्टर और रील प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें छात्रों ने तम्बाकू निषेध का संदेश दिया, साथ ही दंत चिकित्सकों ने लोगों को तम्बाकू सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया। वहीं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेशवासियों से तम्बाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज तीनों के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर कार्य करना होगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज नवा रायपुर में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर की गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने वैज्ञानिकों से प्रदर्शनों और प्रभावी विस्तार तंत्र के माध्यम से नई विकसित कृषि प्रौद्योगिकी को खेतों तक स्थानांतरित करने के प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज कबीरधाम जिले रामेपुर में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती समारोह में शामिल हुए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद आज आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने मृतक का शव रखकर चक्का जाम किया। और कबीरधाम जिले के ग्राम बहर सरी में से एक युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किया है। में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिले दुर्लभ तांबे की पट्टी किया जिक्र। जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर से की बात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में खाद बीज की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 30 मई तक पूरा कर लिया गया है। और प्रदेश में नगरीय निकायों, त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव के तहत कल 1 जून को होगा मतदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7:02 होने को है और अब लीजिए पेश है ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का तीसरा भाग। कार्यक्रम के इस भाग के पहले गीत के लिए ईमेल फरमाइशें आप सभी की आई हैं। वर्निंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा, मेहरनगर उमर खेड़ से, अभिजीत गंवाणकर, सरिता प्रिंस।

सूर्यकांत गवांडकर, पैठन से सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद सोनल और सिया जाधव, कोटबा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित कुमार और हैप्पी राय, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र मणि और निखिल लाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, पजौनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, लसूड़िया पाता राजगढ़ जिले से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र नांगी, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या रामटेके, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल राजेश और रेशमा साहू, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल सलाम राइन और अब्दुल कलाम राइन, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, नागर कोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है राजा भैया फिल्म का गाना। उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है नदीम शमण ने।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइशें आप सभी ने ईमेल के जरिए भेजी हैं श्रोताओं। जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भारत, कमल साहनी, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्के, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली नारंग, बरेली कैंट, चनेहटी, उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन वर्मा, पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा, खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैंकरा, धुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैंकरा, भिलाई तीन चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन जीशान, शाहनवाज अहमद।

सिद्दीकी, बुढ़सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, बियालासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, नीरज रावत, शुभम सौरभ रावत, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लब्या, रव खुराना, एसके पप्पी, छोटी बलिया करजत, मुंबई से अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फुलवाले, इमरान अहमद, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फुलवाले, दिल्ली से प्रमिला हेमा और अनंतरा सिंह, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सोनम वली और आसमा वली। आप सभी ने सुनना चाहा है तेरे नाम फिल्म का गाना। उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है इस गीत को। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने। आइए सुनते हैं।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं आपको हमारे इन सभी श्रोता साथियों की ईमेल फरमाइशें। आप सभी हैं रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले, राजकोट से जूली, जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाइजिया इब्राहिम, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी, भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला और आसमा श्याम कुमार, लूतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, लोहारिडी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी लालिमा, खुशांत साहू और निशांत साहू, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज और चाहत, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन, लूतरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श और आतिका, डांडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और अल कबीर, सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा और कौशल सेन, दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी, सावंतपुर से हैं ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन सेन और माही सेन। आप सभी ने पसंद किया है सन्यासी फिल्म का गीत, आपको हम सुनवा रहे हैं। गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, विश्वेश्वर शर्मा के लिखे गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। आइए सुनते हैं।

इसी गीत के बाद ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम का ये भाग पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7:20 होने को हैं और अब आइए चलते हैं ग्रामीण श्रोता बहनों और भाइयों के मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा की ओर।

ग्राम सभा के सुनैया जम्मो संगवारी मन ला नंदू भैया के राम राम जय जोहार हे। संगवारी हो देखाओ आज जौन हे तो घाम थोड़कन कम जनाइस ऐसे कही सकत हन, काबर के कल हवा पानी जौन हे तेन हर गिरिस हवे। संगवारी हो पेपर मा और हमार आकाशवाणी ले घलौ बताए रहेन के हवा गर रहे बिजली पानी हे कहके, तो चेत करके रही हो ऐसे कहके। संगवारी हो और देखा हमन जौन अपन रबी फसल के जौन फसल लिए रहें तो ओकरो काम बूता हर बढ़िया ले हो गए। एकाक संगवारी के बाँचे हुए तो ओकरो बार बढ़िया से भीड़ गए, काबर के हमन आज जात पूछथन कका कहाँ जात हस गा, गमछा का मुड़ी में पागा बांध के तो बताते धान के ये मिसाई चलत के आजकल आधुनिक मशीनी जौन है ओकर से एकदमे आसानी ले काम होते। संगवारी हो तो हमन गोठ बात करबो जिस के आजकल जौन सामिक खेती किसानी होकर काम बूता कैसे चलत है कहके, तो संगवारी हो देखो हमार जौन भैया मन हवे ओमन काम बूता में लगे हे और बीजा की तैयारी करत है। खेत जौन हवे तो खेत की तैयारी पर घलो काम बूता ल करत है, जैसे जैसे बेरा है जैसे जैसे मौसम है ओकर अनुसार अपन सामिक कृषि कार्य के बढ़िया ले करत है। संगवारी हो मेड़ पार हो गए कि माटी ला बरोबर करे के काम बूता हो गए तो ये जम्मो काम बर आघू हवे। सिंचाई की व्यवस्था घलो बढ़िया ले पहलीच ले करके रखबो तभे तो बनी है ना। खातू माटी के आजकल तो हमन देखा थन तो खातू के बढ़िया व्यवस्था कर लेन, जैविक खातू हर ज़्यादा अच्छा है जी, काबर के जैविक खातू अपन घुरवा में हवा है और अपन जतका टाइम मन उतका टाइम

0: ये जा गाड़ा भैंसा नहीं है तो अभी के बेरा में ट्रैक्टर है और बढ़िया ले हमन खातू के व्यवस्था करी तो सुघर ही थे। जेकर ले निंदाई गुड़ाई है, कीरवा नियंत्रण है, फसल के कटाई के व्यवस्था कैसे करी, ये जम्मो काम बूता अभी कृषि कार्य के जौन बूता है तेन हर बढ़िया ले होवत है। संगवारी हो, संगवारी हो, बात करबो मानसून जौन है तो ओकर बेरा हर निकट है, एकदम लखठिया गए है। तो जम्मो किसान संगवारी मन खरीफ लगाए के अब तैयारी करीन, तब तो बनही किसान मन अपन खेत के जौन जुताई है ओ लकर के माटी ला बढ़िया नरम रखत है, जेकर ले उपजाऊ शक्ति हर बने रहे। ट्रैक्टर के बात करते रहें, वो आधुनिक मशीन है तो एकर ले खेत ला बढ़िया ले तैयार करत है। संगवारी हो, पहली रहे तो गोठ बात तो करते हैं कि बैला हो गए कि भैंसा हो गए, तो नांगर उंगर बर हमन गाड़ी उड़ी फांदा न चला ऐसे की के। फिर आजकल संगवारी हो आधुनिक मशीन आ गए है तो बेरा में काम उतर हवय तेन हर हो जाते, कम मेहनत में बढ़िया ले काम हो जाते, बेरा तक एकर ले समय जो उन्हें तेन हर बांसते। संगवारी हो, वर्तमान बेरा में हमन देखें तो संगवारी हो धान है, जोंधरी है और सोयाबीन है, बाजरा और दाल है, एकर खेती ला एकर खेती की जो तैयारी होकर ओला हमन प्रमुख रूप से करत हन तो बढ़िया रही। किसान भाई मन अच्छा बीजा के चयन करत हवे, अभी के हमन देखे हन तो सुघर धान जौन है का धान लगावे ऐसे की, तो अभी ले संकर बीजा होगी कि उच्च उत्पादन वाला होगी, एला बढ़िया ले रखत है संगवारी हो सकेल के, जेकर ले खरीफ मौसम में बढ़िया लगाए में ओला ज्यादा बीजा खोजे बर नहीं पड़ी। सिंचाई के जौन काम बूता गोठियाए छन तो सामिक कार्य आए हर वर्तमान में पानी के संरक्षण पर घलो विशेष चेत रखना है तो बढ़िया रही। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई ले हमन आधुनिक तकनीक के जौन उपयोग है तेकर बढ़िया बढ़ावा देथन तो सुघर रही। संगवारी हो, पानी के बचत होही और बेरा में हमार फसल ला बढ़िया ले पानी मिल जाही। गोठियात भरहन आना, आप मन ला संदेशा सुनाए ला भुला गए हैं तो लेवा संदेशा कति चलत हन।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हाँ तो देखो संगवारी हो, हमन पानी की बात करत रहन जी, और आप मन ला संदेशा सुनाए बहाना हमू मन पानी पिए गए रहन, है ना संगवारी हो। देखो गोट बात तो सिंचाई के रहे कि फसल के रहे कि जीवन के रहे, पानी के बड़े महत्व रही थे। और हमन सिंचाई की गोट बात करते हैं ते में हर बूंद के सही उपयोग करत हन तो अब बड़े बढ़िया रही फसल हर हमर। एकर साथ साथ किसान भाई मन जौन अभी सामिक काम के बात करें तो मैं जैविक खातू और गोबर खातू के उपयोग घलो एकर महात्म ला समझत हवे, जेकर ले रासायनिक खाद के ज्यादा उपयोग से जौन माटी की उर्वरा शक्ति हर कम होते, एला जानत तो ओकर प्राकृतिक खेती बर जैविक खाद ला बढ़िया ले सकेल के अभी ले घुरवा मा हवे ओला तैयारी करके बढ़िया ले अपन खेत मा छींचत हवे संगवारी हो। तो ये बात के चेत बढ़िया ले रखत है और अपन सामिक अभी के जौन कृषि कार्य है ओला बढ़िया ले संगवारी मन अपनात है। और आज तो चेत रखियो संगवारी हो कि आप मन की गीते फरमाइशी गीत के कार्यक्रम तो जरूर अगोरा रही थे चिट्ठी पाती के, और कतना टाइम शुरू हो ऐसे कही था, है ना। तो हमू मन घलो एला चेत रखे हवन, फिर थोड़कन गोठ बात कर लेथन। वर्तमान बेरा में संगवारी हो जौन कीरवा है रोग नियंत्रण है तो इहू ले चेत रखे बर पड़ते, हमार खेती किसानी में एकर जौन नियंत्रण करीन ओकर अब बड़े महात्म रही थे। काबर बदलत मौसम के सेतीर फसल में कई प्रकार के रोग राई हर लग जाते। किसान भाई मन कृषि वैज्ञानिक के सलाह लेके उचित दवाई के छिड़काव करते तो बढ़िया रही थे संगवारी हो। अब तो मोबाइल हवाए इंटरनेट हवाए किसान मन तुरते जानकारी ले सका थे। और संगवारी हो हमू मन ज़्यादा टाइम नहीं लगाथन, तुरते आप मन के चिट्ठी पाती आए है जी, एला बढ़िया सकेल के हमन आज के आप मन के गीत फरमाइशी लोकगीत के कार्यक्रम बढ़िया से हमन शुरू करत हन। तो देखो संगवारी हो चिट्ठी पाती माँ पढ़त हन हमन ग्राम बसी बार ले आप मन

भेजे हो शिव नारायण नामदेव जी, सविता देवी, राम प्रसाद, कुमारी आंचल, कुमारी चंचल, कुमारी चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, मनोज कुमार कंवर जी मन। संगवारी हो तेलीपारा बिलासपुर ले आप मन हो रज्जन साहू जी, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास, अनिशा श्रीवास जी मन। और गोट बात हमन चिट्ठी पाती वाला में पढ़वो तो जांजगीर मेहंदा ले आप मन हो राम नारायण कश्यप जी, कविता देवी कश्यप, कुसुम लता कश्यप, खुशबू कुमारी कश्यप जी मन। रुआ बांधा सनीचरी बाजार भिलाई से आप मन हो सुशील जैन, सेया जैन, कल्पना जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन, शुभम जैन जी मन। चिट्ठी पाती आप मन के गीत में भेजे हवाए तो संगवारी हो देखो ये गीत ल पंचराम मिर्झा और संगवारी मन के स्वर में आवाज सुना था नदिया के पानी बोहावे।

सिर तो बात है संगवारी हो, देखो नदिया के पानी बहावे धारे धार कथे अउ पंच राम मिर्झा ओकर संगवारी मन ये गुत्तूर गीतला स्वर दे रही संगवारी हो। पानी बचाए के अभी हमार नंग बढ़िया बेरा हवा है, पानी गिरही तो ओकर हम सही उपयोग कर सकें अपन फसल बर, तो जरूरी होते पानी ला बचाना। भू जल स्तर जौन कुआँ है नल है तो वो हर बढ़िया ओमा पानी रहते सुखाए नहीं, और सुखाए की स्थिति होते तो सिंचाई बर हमार काम आते, खेती किसानी करत हन तो है न। तो ऐसे करके जौन पानी के बात चलिए सवे संगवारी हो सुघर गीत में, और आपो मन गोठ बात चलत हवा चिट्ठी पाती के माध्यम से आप मन के गीत कार्यक्रम में। हमन चिट्ठी पाती रखे हवन अउ देखत हन संगवारी हो, हत केरा भाठा पारा ले आप मन भेजे हो पंचू यादव जी, दादू यादव जी, बावली से आप मन हो कमलेश साहू जी, हरेंद्र साहू जी, सुशील ये भैया मन बढ़िया से चिट्ठी पाती भेजे हवे। लोतरा खमहरिया ले आप मन हो नकुल श्याम जी, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीत जी, देवरी भाठा पारा ले आप मन हो गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक जी मन संगवारी हो। आओ हवाओ टानिया रजक जी औ काव्या रजक जी मन ये मन बढ़िया से चिट्ठी पाती भेजे है। और जतुका किशनपुर से आप मन हो आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज जीमन ये मन बढ़िया से चिट्ठी पाती भेजे हवाए। और अभी बेरा चला थे आमा खाए के, तो आवाओ ये गुत्तुर गीत ला सुनाथन आत्मा कोसा होकर संगवारी मन के स्वर में।

हाँ संगवारी हो, हमरो मन में रह रहे कि ये बात आते कि आप मन पेड़ बढ़िया से लगा हो, आमा के पेड़ लगा हो ना, तो ओकर बर जरूर अचार उचार अथान उथान बना हो ऐसे लगत हवे। तो बढ़िया से आप मन चेत कर हो, कावर ये तुर गीत ला स्वर देते ही आत्मा कोसा होकर संगवारी मन। और हमन एकत्र हैं कि सरकार मन घलो बढ़िया बढ़िया कृषि ले आधुनिक कृषि जौन हवा ओला आधुनिक बनाए बर कई ठन योजना चलात हे संगवारी हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और सौर ऊर्जा आधारित जौन सिंचाई के योजना है, तो एला बढ़िया ले चलाते किसान मन के हित बर, तो बढ़िया एमा सहायता मिलते संगवारी हो। एकर ले हमन अपन खेती जौन किसानी हवा ओकर बूता ल बढ़िया ले कर सकत हन। पहली ले ज्यादा अभी के बेरा हर वैज्ञानिक और लाभकारी खेती बनत जाते, तो ये बात के चेत रखियो, तो बढ़िया आमा के अथान कस बढ़िया हमो मन ला ओकर फायदा मिलत रही। चिट्ठी पाती मा आगू बढ़त हन संगवारे हो, आप मन हो बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन जी, मधु देवांगन जी, हिमांशु अंकित देवांगन जी मन चिट्ठी पाती भेजे हवे। दतरेंगी ले हवाओ आप मन विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु, लक्ष्मीना यदु जी मन संगवारी हो, आप मन बढ़िया चित्र बनाए हवाओ, छत्तीसगढ़ से हवा आप मन बनिया पारा धमतरी ले रामचंद्र माखीजा जी काफिर भार्गव, श्रीमती सविता बेबी स्वाति जी, पूजा और शरद कुमार जी मन आप मन बढ़िया चिट्ठी पाती भेजे हो संगवारी हो। ग्राम महमदपुर ले आप मन हो भक्तिन बाजार अकलतरा यहर आते संगवारी हो। रमेश कैवर्त जी, राजकुमारी आरती कैवर्त मन चिट्ठी पाती आप मन के गीत में भेजे है और बढ़िया से गीत आप मन ला सुना था लक्ष्मण मस्तुरिया के स्वर मा मोर संग चलौ रे।

संगवारी हो देखो संग संग चलबे तो बढ़िया रही थे, चाहे हमार उहर खेती किसानी बर रहे कि काम बुता बर रहे कि पढ़ाई लिखाई बर रहे, और जीवन में संग संग चले के सुघर ये गीत हर अमर गीत आए संगवारी हो लक्ष्मण मस्तूरिया जी मन के गुत्तुर स्वर में हमन सुने नि गीत ला। और हमन गोठ बात करबो संगवारी हो जौन अभी के बेरा में अकरस जोताई बर कैसे काम करे जाए, तो एकर ले जौन का होते कि माटी के छिपे जौन कीरवा है ओकर आड़वा है कि रोग जनक जौन भी रोग राई है तेन हर नष्ट हो जाते अगर अकरस जोताई हमन करत हन। तो घास फूस जौन है खरपतवार ज्यादा जामे के जौन आशंका रहते तेन हर कम हो जाते, बरसात के पानी जौन ज्यादा मात्रा में हवाए तो ये अकरस जोताई करे रही बिना तो माटी में बरसात के जौन पानी तेन हर ज्यादा बेरा तक समाये रही थे, उपजाऊ और भुरभुरा घलो बनते भुइयां हर जेकर ले हमर फसल के जौन जरई के विकास है तेन हर ज्यादा होते और आघु के फसल के जौन उपज है ना तेन हर बढ़िया ले बाढ़ते। और हमू मन आघू बढ़त हन आप मन के चिट्ठी पाती भेजे हो संगवारी हो दतरेंगी भाठा पारा छत्तीसगढ़ से आप मन हवा नोखीलाल वर्मा जी हीरा मणि वर्मा पारस मणि पुष्पेंद्र मणि वर्मा जी मन चिट्ठी भेजे है भैया डोंगर गांव राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आप मन हाओ राष्ट्रपाल गजभिये राधिका गजभिये बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये जी मन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप मन हाओ रोशन देवांगन जी कौशल्या देवांगन जी हेमलता डिंपल देवांगन जी मन संगवारी हो आप मन हाओ ग्राम रसेड़ा जौन हर अकलतरा पड़थे मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी साहू योगेश कुमार कीर्ति कुमार संध्या डीकेश कुमार साहू जी मन भेजे हो वासु डाली पूर्वेश साहू जी मन घलो संग मा भेजे हवे ओ कतना बढ़िया चिट्ठी मा आप मन के नाम हर हवे संगवारी हो रावण भाठा भाठा पारा से आप मन हो बबला यादव जी रिखी राम कमलेश्वरी यादव जी मन इहे चले हो आप मन श्याम रतन मुंधड़ा रचनाकार मुंधड़ा जी मन बढ़िया से चिट्ठी पाती भेजे है और आप मन तक बढ़िया हमन गुत्तूर गीत सुनाथन संगवारी हो जिला स्वर देवत है तीरथ राम गढ़ेवाल और ओकर संगवारी मन।

हाँ संगवारी हो, सिर तो कहे हे बिन पानी सब सुन की के। तीरथ राम गढ़ेवाल जिमन के हमन स्वर म सुनेन, पानी के बड़े महात्म हावे संगवारी हो। एक तो सम्मान हो जाते हो, एक तो है ना जौन है ओला हम घोरे के काम करता ना, वो एक मान मर्यादा वो अपन जीवन भर उपयोग करे जाते। रहीम जीमन बढ़िया ले एक बारे में लिखे हवे। पानी के हमन गोठ बात करें तो अभी के बेरा में हमन फसल उत्पादन जोन है वो स्थिरता लाए बारे है बने माने जाते संगवारी हो। पानी की बर्बादी कम होते अगर हमन पानी ला बचा के रखत हन तो, पर्यावरण के संतुलन घलाव बढ़िया ले बने रहते। किसान भाई मन बर जौन सिंचाई के लागत है वो हर कम हो जाते, आओ का लेबे तो हन। तो एकर ले हमन उपाय करीन के वर्षा जौन हवे ओला जल संरक्षण करके बढ़िया ले संचय करीन जी। खेत हवे तालाब हवे बढ़िया ले निर्माण करके रखीन तब तो ओकर मेड़बंदी के काम आही। ज्यादा हो गए ड्रिप सिंचाई अभी के बेरा में हमन उपयोग करत हन, स्प्रिंकलर सिंचाई है बढ़िया ले उपयोग करत हन। चैक डैम स्टाम डैम मल्चिंग के उपयोग करके पानी ला हमन बढ़िया ले बचा सकत हन। संगवारी हो दुधारू पशु मन बर दिन में 4 से 5 बार पानी ताजा पानी की व्यवस्था कामल हो ही बचाए रह तभी है ना। तो ये जब जिनिस ला जौन हमार वैज्ञानिक मन सलाह देते तो ओकर बर हमन ला पानी के बड़े महत्व रहते इला चेत रखना है। गर्मी के मौसम में प्रति पशु अगर हमन बात करें तो 50 से 60 ग्राम नून के घोल पानी मिला के देते तो बने माने जाते। तो देखो कतेक महात्म हवे है ना। अब आपो मन की चिट्ठी को उतके महात्म हवे तो एक लोटा पानी भर पूछते पहुना मन ला। अभी गर्मी के बेरा में मटका के पानी मिल जाते तो कतेक अच्छा लगते। वो स्नेच आप मन के चिट्ठी पाती हर आहे नवागढ़ कटई ले आप मन हो। नारायण प्रसाद वर्मा जी, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा जी मन चिट्ठी पाती भेजे हो संगवारी हो। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ ले आप मन हो। राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति जी जीवन बढ़िया से भेजे हो। नैला बोर्ड सरा जांजगीर से आप मन हो। हेमदेव तिवारी जी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई, ठगिया देवी, अंजुलता, विष्णु प्रसाद, मोंगरा देवी, प्यारे लाल मिश्रा जीमन आप मन चिट्ठी पाती बढ़िया ले भेजे है संगवारी हो। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी ले आप मन हो। द्वारका प्रसाद वर्मा जी, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार, आओ हवा महादेव घाट अमलेश्वर ले आप मन हो। डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर जीमन चिट्ठी पाती बढ़िया से भेजे हो संगवारी हो। तो आवाओ आप मन के पसंद में ये गीत ला बढ़िया ले सुना थन। आप मन की गीत फरमाइशी गीत के कार्यक्रम के तहत भीम यादव नीलिमा जैन के स्वर में।

हाँ संगवारी हो, देखो सुघर गीत जौन है भीम यादव नीलिमा जैन के स्वर में बढ़िया ले सुनेन। और आप मन के जौन गीत कार्यक्रम है वही नंग सिरावत संगवारी हो, आप मन पता बता देथन। आप मन के गीत द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 49 आकाशवाणी बिलासपुर छत्तीसगढ़ 495006 पिन नंबर हवे। अब एकरे संग देवा हमार ग्राम सभा आप मन के गीत कार्यक्रम ले नंदू भैया ला विदा। जय जोहार, राम राम।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम का अभी प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8 बजने को है। कुछ ही क्षणों के बाद मन की बात कार्यक्रम के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर, लीजिए सुनिए मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन के।
2: मन की मोर देश के मयारुक रहवैया हो, जोहार। मन की बात मा एक घाव फेर आप मन ले जुरिया के मोला बहुते खुशी होवत हे। देश के आने आने हिस्सा मा हमर देश के लोगन मन देश हित मा समाज हित मा ऐसन अद्भुत काम करत हैं, और जब उनखर विषय मा सुनथन त हमन ला एक नवा प्रेरणा मिलथे। आज कार्यक्रम के शुरुआत मैं एथलेटिक्स मा देश के ऐसने उपलब्धि लेकर हूँ। कुछ दिन पाछू झारखंड के रांची मा नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुईस। एमें करीबन 800 एथलीट मन हिस्सा लेन देश भर ले आए रहिन। ये दौरान चार आने आने आयोजन मा चार राष्ट्रीय कीर्तिमान टूटीस। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, ये संगवारी मान आने आने श्रेणी मा नवा कीर्तिमान बनाइन। मैं सबले पहली त ये सब मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। संगवारी हो, एक आयोजन जेखर देश भर मा बहुते चर्चा हुआ थे वो है 100 मीटर रेस, 100 मीटर के दौड़। खाली 2 दिन के भीतरी पुरुष 100 मीटर के दौड़ मा राष्ट्रीय कीर्तिमान 3 घाव टूटिस। जेन 2 झन एथलीट मन ये कमाल दिखाए हैं वो हैं गुरिंदर वीर सिंह और रमेश कुजूर। मैं सोचे ये पई मन की बात मा ये दोनों खिलाड़ी मन ले गोट करे जाए। अनिमेश जी जोहार, गुरिंदर वीर आप मन लग घर, सत श्री अकाल।
3: जोहार सर।
4: जोहार सर।

0: अच्छा भैया, आप मन त बहुते बड़का उपलब्धि पाए हो। आप मन के जोड़ी है घलो बड़का कमाल करे है। हमन संगीत मा त जुगलबंदी देखे रहन, फिर चुनौती मा अब जुगलबंदी होते कि एक घाव एक झन चुनौती दे, फिर दूसर उही चुनौती ला उठा लेते, फिर तीसरैया घाव कर लेते। बहुते रोचक है आप मन के। मैं चाहता हूं कि मन की बात के सुनैया मन ला पता चले कि आप मन के विषय मा वो मन ला जानकारी हो। आप मन आक्रम करे हो ओखर पता चले।
1: जोहार सर, मोर नाव अनिमेश कुजूर। मैं 200 मीटर और 400 मीटर के राष्ट्रीय कीर्तिमान धारक हूँ और मैं छत्तीसगढ़ के रहैया हूँ सर, और अभी मैं उड़ीसा ले खेलता हूँ। मैं पाछू बच्चर एशियाई पदक और विश्वविद्यालय खेलकूद पदक लेके आए हूँ, और मैं 2021 में एथलेटिक्स चालू करे हूँ जब मैं स्कूल ले पास हो रहे हूँ। सैनिक स्कूल अंबिकापुर ले पास हुए हूँ और मैं पहली फुटबॉल खेलत रहे हूँ। अब मोर दाई दादा मन कोविड के बखत मोला थोर बहुत छूट देवत रहिन कि तैं बाहर जाके दौड़ ले खेल ले। ता जब कोविड खत्म होए लगीस तब तो मोर फुटबॉल के दोस्त मन मोला कहिन कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होइया है, तय घलो भाग ले। अब मैं भाग ले और मोला पता नहीं रहीस कि वहाँ ले राष्ट्रीय स्तर के चयन हुआ थे। मैं वहाँ ले राष्ट्रीय स्तर में चयनित हुए और आज मैं भारत के प्रतिनिधित्व करत हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में।
0: और गुरिंदर वीर का है?
2: जोहार सर, मोर नाव गुरिंदर वीर है और मैं भारतीय जल सेना मा पैटी ऑफिसर हूँ और मैं भारत के सबसे तेज धावक हूँ। अभी मैं 100 मीटर मा 10.9 के राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाए हूँ और मैं पहली भारतीय हूँ जेन 10.1 के बाधा के नीचे भागे है। और मैं प्रयास करत हूँ कि मैं ट्रैक और वर्दी मा घलो अपन देश के सेवा करो। मोर दादा और बाबा दोनों खेल कूद वाला रहिन, ता हमर भारत के संस्कृति है जब भी कोनो तिहार आते जैसे दिवाली जैसे नवा बछर, ता हम अपन घर के सफाई करथन। अपन दादा के ट्रॉफी और पदक मन के सफाई करत रहे हो ता मोला वो बहुत अच्छा लागत रहीस। मैं बहुत सोवत रहे हो ता जब मैं कोनो ट्रॉफी साफ करत रहे हो तब मैं पूछत रहे हो कि भाई ये ट्रॉफी कहाँ जीते रहे हो, ये पदक कहा जीते रहे हो, ये फोटो कब के है। तब फिर वो मन मोला अपन कहानी सुनावत रहिन कि भाई मैं यहाँ खेले बर गेव, मैं ये राष्ट्रीय पदक जीते हूँ, मैं अपन टीम ला ए में जिताए हो। तब फिर मैं घलो वो मन ला बोले भाई मैं घलो कोनो खेल खेलना चाहत हो। वो बिहनिया दौड़े बर जावत रहिन तब मैं उन ला बोले हो भाई मोला घलो अपन संग ले जाए करो। तब मोला ले के जाए ता वो मन अपन खेल मा जिन सीखे रहिन वो मोला सिखाए लगिन, तब मोर रुचि बने लगीस। मैं उसेन बोल्ट के विश्व रिकॉर्ड टूटत देखे हो, एक मनोरंजक कहानी है। मैं टीवी देखत रहे हो तब मोर दाई टीवी ला बंद कर दीस कि बेटा अभी पढ़े के बेरा हो गए है तय पढ़। तब मैं कहो भाई ठीक है, आप मन मोला टीवी देखे ला नहीं देवत हो, एक दिन ऐसे आही आप मन मोला टीवी मा खोजू कि देखो वो गुरिंदर दौड़त है। तब मोला घलो खुशी होते जब मोर दाई मोला टीवी मा दौड़त देखते।
0: वाह वाह वाह, बहुत शानदार बात है भाई आप मन के।
2: हाँ जी, मध्यम वर्गीय परिवार है सर। फिर मोर दादा बाली बाल खेलत रहिन, घर के समस्या वो मन अपन खेलकूद छोड़ दिन। उखर जेन सपना रही गई रहीस तब वो मन मोर भीतर वो सपना देखिन भाई मोर बेटा वो सपना पूरा करही। तब मैं उखर ले बात करेऊ, फिर सुनत रहे हो मिल्खा सी अतका मेहनत करत रहिन। मैं वो मन ला कहत रहे हो मैं घलो एक दिन आप मन के सपना पूरा करूँ। तब बोलिन सपना पूरा ऐसे नहीं हुए, एकर बर बहुत कठिन करना पड़ते, मेहनत करना पड़ते। मिल्खा सिंह जी खून के उल्टी करत रहिन, धूप माँ भागत रहिन, पूरा पूरा दिन प्रशिक्षण करत रहिन। ता वो चीज मोला प्रेरित करत रहीस, मोर दादा मोला प्रेरित करत रहिन कि मैं भागू ता अपन देश खातिर पदक लावाओ जीताओ। और ये घलो रहीस कि भाई जब मैं 100 मीटर के विधा के चयन करेओ ता सबो मन कहत रहिन कि भाई 100 ला झन कर, 100 भारतीय मन के विधा नहीं है, भारतीय मन

0: के शरीर 100 मीटर बर नहीं बने हैं। तमय और मोर ददा हरदम बोलत रहन कि अभी गुरिंदर ए चयन करे है, हम एकर ले पाछू नहीं हटबो। जेन मन हमन ला बोलते कि भई हम नहीं कर सकन, हम वो मन ला करके दिखाबो और ते करके दिखाबे। मोला तोर ऊपर भरोसा है, तब वो भरोसा जब मोर ददा मोर ऊपर करीस, तब मैं वो भरोसा ला अपन हिम्मत बना के चले और आज हर बोलते कि भई भारती दौड़ाओ।
1: देखो आप दोनों जन बहुते बड़का कमाल करे हो, और खाली 2 दिन के भीतर आप दोनों जन 3 घाव राष्ट्रीय रिकॉर्ड हो। 100 मीटर रेस में दौड़ना, जैसे गुरिंदर वीर है कहिस कि लोगन कही थे कि भारत के लोगन मन के बदन ये काम बर नहीं, अत का अलका हुए घलो आप मन काम करे हो। तो ये दोनों मन ले मैं जानना चाहूं और मन की बात के सुनैया मन घलो सुनना चाहिए कि कौन से जज्बा रहीस, का जिद रहीस, का सोचे रहे हो और कैसे करत रहे हो, ये कतका मुश्किल होते।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं शुरू में जब संघर्ष करत रहे हो सर, कईयों बार संसो में रहे हो कि मैं सही करत हो, मैं सही चयन करे हो, काहे कि हर बारी आप मन नहीं जीतो, कभू कभू आप मन सीखता हो, जब मैं हारे हो, जब मोर सही प्रदर्शन नहीं आईस, जब चोट लग जात रहीस, तब मोर घर वाला मन मोला सहारा देन की भई कुछ नहीं, एक दिन बुरा चल दीस, एक बछर बुरा चल दीस, त एकर ले जिंदगी खराब नहीं होए, सपना देखना नहीं छोड़न। तब मोर प्रशिक्षा का घलो मोला ये सिखाइस कि अगर तय नहीं करबे त कोनो अऊ नहीं कर पाही। त ऐसने जब हमर समुदाय हमर तीर तखार के लोगन मन हमला उत्साहित कर, हमर प्रोत्साहन नहीं टूटे।
1: अनिमेश जी।
2: सर, मोला तो सबो मन बोलत रहिन जब मैं 2021 में एथलेटिक्स चालू करें, तब मोला कहिन कि देख ये नवा क्षेत्र है, तय कर पाबे कि नहीं, तब मैं कहूँ कि मैं ये क्षेत्र में घुस गए हों तक करवे करूँ। मोर ददा घलो हरदम मोला बोले कि तय ये क्षेत्र में घुस तो कभू पाछू मुड़ के झन देखबे, काहे कि सोचते था सबो मन कि ये करना है वो करना है, फिर करके बहुते कम झन दिखाते, तय बस यही क्षेत्र में घुसे हस तो यही मरेबे, यही माँ आगू बढ़बे। तोला सबो सुविधा सब जिनिस सहयोग हम करबो, पारिवारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, सबो चीज हमन करबो, बस तय मेहनत कर और भारत ल देख कि भारतीय मन घलो भाग सकते, काहे कि लोगन मन मोला घलो कहत रहिन कि भारतीय मन के जींस ऐसे नहीं है कि वो मन 10 के नीचे या 10.1 के नीचे माँ भाग या तेज दौड़ सकें। फिर अब हम दोनों जन सिद्ध करे हैं कि भारतीय मन घलो कर सकते, ऐसन कोनो कठिन नहीं है हमन बर, हम घलो सब कुछ कर सकत हन। त सर, ये सबो मोला बहुत प्रोत्साहित करते, और जैसे जैसे हम प्रशिक्षण करत हन, हम और अपन समय सीमा ला तोड़त हन, और बाकी भारतीय मन ला घलो ये दिखत है कि भारतीय मन घलो कर थे, और हम और सर अभी और हम दोनों जन के चयन कॉमनवेल्थ गेम खातिर घलो होए है, तो वहाँ अवैया प्रतियोगिता में हम और अच्छा प्रदर्शन करबो।
1: अच्छा, देखो मोर मन में घलो एक कौतूहल है और लोगन मन ला घलो हो ही। मैं सुने हूँ कि आप दोनों जन अच्छा दोस्त घलो हो, आप दोनों जन कुछ ठाने रहे हो का, मोर रिकॉर्ड तोड़ेस तो मैं तोर रिकॉर्ड तोड़ देवाऊ का, पहली अनिमेश बताही।
2: सर जी, पहली रिकॉर्ड 10.1 जेन मोरेच रहीस और फिर एला गुरिंदर वीर भाई सेमीफाइनल में तोड़ देस 10.17 करके, और मैं फिर ओला दूसर सेमीफाइनल में 10.15 करके तोड़ देऊँ। तो ओ बखत जब मोर सेमीफाइनल होइस तो हम दोनों जन खुश होइन कि चलो ठीक, आज रिकॉर्ड टूटिस और चलो हम दोनों जन तोड़ेन, काहे कि वो बखत प्रतियोगिता में प्रतिद्वंदिता रही थे, फिर हम दोनों जन पहली स्थान के रखे रहन, एकर ले पहले हमन प्रतियोगिता पर सऊदी अरब घलो गए रहन, वहाँ हम दोनों जन एक कमरा में रहन, तो हम दोनों वहाँ गोट करन कि भारत के दौड़ला आगू लेके जाना है और हमरे हाथ में है वो चीज, हम जेन करबो वो आने मनला प्रोत्साहित करही।
1: गुरिंदर वीर का कहना चाहू?
0: हम दोनों जन निर्णय करे रहन, हम दोनों जन बने दौड़बो, तो सर एक दूसर ला कभू होते एक दूसर संग खड़े होथन, जैसे अभी रिकॉर्ड पहली

0: जब मैं रिकॉर्ड करेव फिर अनिमेश करीस त जब हम वार्म अप करत रहेन त मैं अनिमेश ला बतावत रहे कि अनिमेश वो ब्लॉक सही है, ओमे जाके बैठ, उहाँ ले छलांग लेबे, हमन वार्म अप यहाँ करबो, यहाँ सही होही त एक दूसर के मदद करथन त दूसर मा घलो सुधार होते, हमन मा घलो सुधार होते, दोस्ती घलो चाही। फिर मैदान के बाहिर है सर, प्रतियोगिता के बाहिर है ता हम दोस्त हन, जब हम मैदान में जाथन ता एक दूसर के प्रतियोगी बन जाथन, ता ये होते कि मैं एकल ले ज्यादा तेज भागू, मैं एकल ले तेज भागू।
1: देखो, आप मन जेन स्पर्धा करे हो ना, वो देश के मान बढ़ाए खातिर करे हो, देश ल भविष्य मा ये ठिया तक पहुंचाए खातिर करे, और एक सकारात्मक भावना ले करे हो। और मैं मानता हूं कि आपके ये जेन खेल भावना है, खेलना घलो है, एक दूसर ल चुनौती घलो देना।

0: देश ल भविष्य में ये ठिया तक पहुंचाए खातिर करे और एक सकारात्मक भावना लेकर हो। और मैं मानता हूं कि आपके ये जेन खेल भावना है, खेलना घलो है, एक दूसर ल चुनौती घलो देना है और फिर आगू निकले प्रयास करना है और आगू जाए बर एक दूसर के सहायता करना है। ये अद्भुत काम करे हो आप मन, मोर कोती ले आप मन ल गाड़ा गाड़ा बधाई, मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना और आप मन देश के नाव घलो उजर करहू। मुला पूरा विश्वास है आप मन ऐसने मेहनत करत रहो, बहुत प्रगति हो ही, मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना।
1: धन्यवाद सर, आप मन के धन्यवाद,
0: गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, ये बखत देश के ज्यादातर हिस्सा मा बहुत गर्मी पड़त है, तेज घाम, गरम हवा, ऐसन मौसम मा अपन ध्यान रखना बहुते जरूरी है। पानी पियत रहो, घाम अगर निकलना पड़े तो थोकिन संभल के निकलाओ। ये दिशा मा सरकार के आने आने विभाग मन जिन दिशा निर्देश जारी करे हैं वो घलो भुलाहू जन। संगवारी हो, हमारे यहाँ गर्मी ले लड़े के तरीका कईयों बार रसोई में घलो मिलते, आप मन घलो देखे हो। जैसे जैसे गर्मी बाढ़ते वैसे वैसे घर के रसोई के स्वाद बदलत जाते, रसोई के प्रकार बदल जाते। कहूं मटका के पानी निकलते, कहूं दही लगते, तो कहूं कच्चा आमा उबले लगते और फिर शुरू होते देसी पेय के दौर। देसी पेय ले आप मन घलो परिचित हो। आप मन उत्तर भारत में जाहू तब बने जगह आप मन ल मिलही आम पना, कच्चा आमा के स्वाद और गर्मी ले राहत घलो। पंजाब हरियाणा जाहू लस्सी मिल जाही, बड़का गिलास वाला लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाना के संगवारी बन जाते और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू के शरबत, ओखर तो बाते का है, पेट घलो भरे, ताकत घलो देवाए। कोंकड़ गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी। दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और उड़ीसा में बेल। वो खाली पेय नहीं, भारत के आने आने क्षेत्र के परंपरा के हिस्सा है और एमे एक भारत श्रेष्ठ भारत के भावना के झलक घलो मिलते। और एक ठन बात खचित ध्यान रखू, एमे ले ज्यादातर जिनिस हमार अपन रसोई ले निकले है, हमार खेत खलिहान ले निकले है, कोनो बड़ा ब्रांडिंग नहीं है, फिर पीढ़ी मन के अनुभव एमे समाय हुए है। आप मन घलो गर्मी मा देशी पेय के खूबे आनंद लेवाओ। संगवारी हो, आतेच एक ठन औ चर्चा हर घर मा शुरू हो जाते और वो है आमा। आमा, आम चर्चा के विषय होते। भारत मा शायदे कोनो घर हो ही जिहां गर्मी मा आमा के बात नहीं होत होवे। हर इलाका के अपन आमा, अपन स्वाद, सुगंध। महाराष्ट्र और कोंकण के हापुस, अल्फांसो, गुजरात के केसर, ये ता आमरस के जान है। उत्तर प्रदेश के दही और मोर काशी के लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम के खास बात होते, पके के बाद घलो ओखर कईयों बार हरच रही थे। बिहार के जरदालू, जेकर सुगंध दूरे चले चिन्हा जाए। चौसा, मालदा, हर नाव के संग लोगन मन के सुरता जुड़ियाए है। दक्षिण भारत जावो तब बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल के हिमसागर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सुवर्ण रेखा। माने ठिया बदलते आमा के रंग रूप और ओखर स्वाद घलो बदल जाते। और संगवारी हो, आमा के ये यात्रा अब गांव ले वैश्विक बाजार तक घलो पहुंचा थे। आज मन की बात के माध्यम ले मैं आमा के पैदावार ले जुड़े अपन किसान भाई बहनी मन के प्रशंसा करूं। आप मन देश के कृषि अर्थ

व्यवस्था खातिर आम किसान नहीं, बहुत विशेष हो, आए रहो। संगवारी हो, गर्मी के ये दिन मा ऐसे ता स्कूल मन के छुट्टी होते, फिर मैं एक ऐसन वर्ग के बात करहूं जे में आप मनला प्रवेश लेके मन कर जाही। संगवारी हो, एक स्थिति के कल्पना करो, एक ऐसन स्कूल जिहां लइका मन आथे, युवा मन आथे और सियान मन घलो, जिहां कोनो फीस नहीं लगे, कोनो बड़का इमारत नहीं है, कोनो कक्षा घलो नहीं है और सबले रोचक बात उहां कक्षा नदिया में लगते। संगवारी हो, ये कोनो कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा मा साजी वाला शेरिल जी ऐसने एक ठन तैराकी क्लब चलावत हैं। अब तक 15,000 ले ज्यादा लोगन मन यहां तौरना सीख चुके हैं। साजी जी हा दिव्यांग लइका मन ला घलो तौरना सिखोए हैं। ये प्रयास के पाछू एक पीड़ा घलो छुपे है। कुछ बछर पाछू एक नाव दुर्घटना मा कईयों छात्र मन के मौत हो गए रहिस। ये घटना हा साजी जी ला भीतरी झकझोर देस। वो मन सोचिन, अगर लइका मन ला तौरना आवत होतीस तो शायद कईयों जान बच जाती। बस इन्हें ले शुरू होइस उनखर ये अभियान। संगवारी हो, साजी वाला शेरिल जी के जिंदगी हमन ला एक ठन बहुते बड़का सीख देते। सेवा करे बर बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होए, जरूरी होते एक अच्छा इरादा और सरलक करेगे प्रयास। एखरे दम मा हजारों लोगन मन के जिंदगी मा बदलाव लाए जा सकत है। मोर देश रुक रहवैया हो, पहाय दिन मा मुला यूरोप के नीदरलैंड जाए के मौका मिलिस। उहां मैं कईयों ठन बैठक में सम्मिलित होए। इही दौरान एक ऐसा आइस जेन हर भारतीय ल गर्व ले भर देस। नीदरलैंड मा आयोजित एक विशेष समारोह मा चोला काल के प्राचीन ताम टिका भारत ला वापस सौंपे गईस। ये कार्यक्रम मा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री घलो उपस्थित रहिन। ये ताम टिका मन ला लेके मुला देश विदेश ले सरलग संदेशा मिला थे। लोगन मन खुशी व्यक्त करत हैं, गर्व व्यक्त करत हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय मा घलो एला लेके विशेष उत्साह है। संगवारी हो, ये ताम्र पट्टिका मन ला लेके लोगन मा बने जिज्ञासा घलो है। इही पाए के आज मैं एखर ले जुड़े कुछ बात आप मन संग साझा करना चाहत हूं। एमे 21 बड़ा और 3 छोटे ताम्र पट्टिका है। ये मुख्य रूप ले राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपन पिता राजा राज राजा चोला के एक ठन वचन ला पूरा करे ले जुड़े है। एमे आने मंगलम गांव के एक बौद्ध बिहार ल दान दे के उल्लेख है। ये ताम्र पट्टिका मन मा चोला वंश के उपलब्धि के वर्णन घलो मिलते। एखर ले पता चलते कि चोला साम्राज्य के समुद्री शक्ति कत का जबर रहिस। दक्षिण पूर्व एशिया के देश मन संग इनखर संबंध के जानकारी घलो एमे मिलते। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति मा हम सबो मन ला बहुत गर्व है। संगवारी हो, हमर सरकार भारत के ऐसन अमूल्य धरोहर मन के संरक्षण खातिर सरलग प्रयास करत है। इही क्रम मा ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार मा घलो एक महत्वपूर्ण खोज होए है। यहाँ 3 ठन दुर्लभ ताम्र पट्टिका मिले है। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासन काल ले जुड़े माने जाते। विशेषज्ञ थे कि ये शिलालेख 6वां-7वां सदी के है, माने 1400-1500 बछर जुन्ना ये ताम्र पट्टिका मन प्राचीन लिपि और पाली भाखा मा लिखाए है। एमे वो बखत के शासन व्यवस्था धर्म और संस्कृति के बारे मा महत्वपूर्ण जानकारी मिलते। संगवारी हो, हम भारतीय मन मा खगोल विज्ञान माने एस्ट्रोनॉमी ला लेके हरदम विशेष आकर्षण रहे है।

प्रदेश मा आज घलो कईयों सदी जुन्ना वेधशाला है। यहाँ अद्भुत खोज होए है। नवचालन हो, पंचांग हो या हमर परब तिहार, ये सब बंध आगास और तारा मन ले रहे है। हमर यहाँ एस्ट्रोनॉमी हर पीढ़ी मा कौतूहल जगाए है, एला अन्वेषण बर प्रेरित करे है और आज के युवा मन मा घलो एला लेके बने उछाह दिखते। आजकल आप मन घलो देखत हो, देश भर मा एस्ट्रोनॉमी क्लब तेजी ले लोकप्रिय होवत है। बड़ा शहर ले छोटा कस्बा तक, स्कूल ले बगीचा तक इनकर गतिविधि देखे ला मिलते। मुला बंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में जानकारी मिलिस, यहाँ अवलोकन सत्र आयोजित करे जाते। ये संस्था है ग्रामीण क्षेत्र मा एस्ट्रोनॉमी ला लोकप्रिय बनाए के मिशन घलो शुरू करे है। खगोल मंडल नाव के एक टीम है 30 घंटा के एक बहुते नवाचारी पाठ्यक्रम शुरू करे है। संगवारी हो, रात मा तारा मल्ल निहारना अपन आप मा अद्भुत अनुभव होते। एस्ट्रो केरला नाव के एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप कार्यशाला आयोजित करते। यहाँ युवा साथी मन टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स के उपयोग करना सीखते। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब है गीर के जंगल ले कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट आयोजित करे है। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था घलो एस्ट्रोनॉमी के सबले जुन्ना संस्थान मा एक है। यहाँ अवलोकन सुविधा के संगे संग किताब, पुस्तकालय और टेलीस्कोप लाइब्रेरी के सुविधा घलो है। मैं आईसेक के घलो उल्लेख करना चाहूँ, ये एक विद्यार्थी मन द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है जिन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब मनला आपस में जोड़ते। संगवारी हो, अपन शौक बर बखत निकालना और सरलग कुछ नवा सीखत रहना बहुते जरूरी है। मैं युवा मन ले आग्रह करूँ कि कोनो एस्ट्रोनॉमी क्लब ले खचित जुड़े और ये छुट्टी मन मा कोनो तारा घरला घलो देखेला खचित जावें। संगवारी हो, मन की बात कार्यक्रम ला जेन लोगन मन टीवी मा देखत हैं, मैं वो मन ले कहूँ एक वीडियो देखाओ। ये वीडियो पाछू दिन बहुते चर्चा मा रहिस। एमे लोगन मन बहुत धैर्य ले, बहुत सावधानी ले एक गंगा डॉल्फिन ला बचाए की कोशिश करत हैं। आप मन ला ये जान के आश्चर्य हो ही, ये जम्मू पर मा करीबन 13 घंटा लगिस और आखिर वो डॉल्फिन बच गईस। संगवारी हो, एमे बहुते बड़का भूमिका रहीस भारत के पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस के। ये घटना उत्तर प्रदेश, वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गए रहीस। ऐसन बखत में नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत बने ये एम्बुलेंस ओखर बर उम्मीद बन के पहुंचीस। फिर बहुते सावधानी ले ओला बाहर निकाले गईस, ओखर जांच करे गईस, ओखर इलाज करे गईस और ओखर बाद ओला सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दे गईस। एक रकम ले कहन ता फिर अपन घर लहूट गईस। संगवारी हो, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुते खास है। एला एक चलत फिरत अस्पताल कस तैयार करे गे है। एमे डॉल्फिन ला सुरक्षित रखे के व्यवस्था है, ऑक्सीजन के सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। माने अगर कोनो डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी ले कट जाए तो तुरते ओखर सहायता करे जा सकत है। संगवारी हो, जब हम गंगा डॉल्फिन ला बचाथन तो हम खाली एक प्रजाति ला नहीं बचावन, हम गंगा के जैव विविधता ला बचाथन, नदी के पूरा जीवन तंत्र ला बचाथन और अपन अवैया पीढ़ी खातिर प्रकृति के एक अमूल्य धरोहर घलो बचाथन। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, आप मन ले बहुत अकन लोगन के नदिया

दरिया या कुआं के पानी ले जुड़े सुरता खचित होही। कोनो ला तरिया में तौरना याद होही, कोनो ला संगवारी मन संग तरिया के तीर में खेलना, कोनो ला वो माटी के सुगंध के सुरता होही। नानपन की याद जिंदगी भर मन में बसे रही थे। संगवारी हो, ऐसने याद मन ला बचाए के एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश बस्ती जिला ले आघू में आए है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपन गांव के मनोरमा नदी ला देख के बहुत दुखी होवत रहिन। काहे कि जे नदी ला वो मन ननपन मा साफ और जीवंत देखे रहिन, बखत के संग वो नदी मा प्लास्टिक जमा होय लगिस, गंदगी बाढ़त चले जात रहिस। श्रीमान आकाश ह तय करिन कि शिकायत नहीं करही, एक नवा शुरुआत करही। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गईस। वो मन अपन संगवारी मन ल साथ खाली जाल रहीस, रापा रहीस, झुहा रहीस और सबले बड़का ताकत रहीस कुछ बदले के संकल्प। ये युवा मन नदिया मा उतरत रहिन, जल कुंभी निकालत रहिन, प्लास्टिक और कचरा बाहर लावत रहिन। कईयों बार एक दिन मा 50-60 किलो तक कचरा नदी ले निकाले गईस। धीरे धीरे मनोरमा नदी के वो हिस्सा फिर साफ दिखे लागिस। तीर तखार के लोगन मन के ध्यान घलो ये काम कोती गईस। लोगन मन मा स्वच्छता ला लेके जागरूकता बाढ़िस। संगवारी हो, ऐसने एक प्रेरक कहानी गोवा ले घलो आघू आए। गोवा के बालकृष्ण अय्या जी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, फिर समाज भर काम करे के उनकर उछाह आज घलो वैसने हैं। उनला मड्डी तोलाब क्षेत्र मा पानी के समस्या बहुत परेशान करत रहिस। वो मन घलो समाधान खातिर काम शुरू करिन। बालकृष्ण जी हा पाइपलाइन बिछाए के काम मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाइन। एखर ले कईयों घर तक पानी पहुंचिस। जिन परिवार मन ला पानी खातिर रोज संघर्ष करना पड़त रही, उनखर बर ये बहुत बड़ा राहत बनिस। संगवारी हो, पाछू महीना मुला एक बहुते अच्छा अनुभव होइस। एखर संबंध मन की बात ले घलो जुड़े है। इही पाए के आज मैं एखर चर्चा आप मन ले करना चाहत हूँ। तमिलनाडु के नागर कोइल मा मोर भेंट एक शिक्षक ले होइस। करीबन 3 दशक पहली घलो वो मन ले मिले रहे हूं। मैं बात करत हूँ गिरिजा अम्मा जी के। ये भेंट के दौरान कुछ युवा विद्यार्थी मन घलो उनखर संग रहिन। संगवारी हो, गिरिजा अम्मा जी करीबन 15 स्कूल चलाते। एमे चेन्नई के जय गोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनखर देशभक्ति के भावना हर भारतवासी ल प्रेरित करने वाला है। वो मन की बात ले प्रेरणा लेके देश के अनेक सैनिक मन बर योगदान के संकल्प लिए हैं। एखर बर वो मन अपन सब्बो स्कूल के विद्यार्थी मन ल प्रेरित करिन। वो मन लैका मन ले कहिन कि वो मन वीर जवान मन बर हर दिन 1 रुपया योगदान करें। माने एक बछर मा हर विद्यार्थी कोती ले 365 रुपया जमा होइस। ये नान नान योगदान ले करीबन 40 लाख रुपया इकट्ठा होइस। गिरिजा अम्मा जी हा ये पूरा राशि के चेक मुला सौपिन। वो मन ले गोटबात के दौरान मैं महसूस करे हूं कि माँ भारती के प्रति उनखर समर्पण का गहिर है। पाछू बछर चेन्नई के पहली हिंदू विद्यालय हा अपन 50 बछर पूरा करे है। देश के शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव ला आघू बढ़ाए मा ये स्कूल नेटवर्क के भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं एखर ले जुड़े सब्बो लोगन मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ और वो विद्यार्थी मन के घलो विशेष सराहना करत हूँ जेन मन अपन वीर सैनिक मन खातिर योगदान दिए हैं। संगवारी हो, भारत के हर गांव मा हर शहर मा कुछ न कुछ ऐसन होवत है जेन हमन ल प्रेरणा देते। कईयों बार ये प्रयास मन के ज्यादा चर्चा
नहीं होवे।

0: फिर जब हम इनला जानथन तो ये विश्वास औ मजबूत होते कि देश अपन लोगन मन के शक्ति ले आघू बढ़ाते। मोर आप मन ले आग्रह है अपन तीर तखार मा ऐसने प्रयास मन ला खचित देखाओ, जिन लोगन मन समाज खातिर अच्छा काम करत हैं वो मन ला चिन्हाओ, उनखर सराहना कराओ, वो मन ले सीखाओ और हो सके तो खुद घलो कोनो अच्छा काम ले जुड़ाओ। अवैया महीना मन की बात मा कुछ औ प्रेरक गाथा मन संग मैं फिर आप मन ले जुड़ू। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद, जोहार।
1: मन की बात के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण अभी हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8:34 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम रजनी गंधा। सभी प्रिय श्रोताओं को शुभ संध्या। महकते हुए लम्हों के कारवां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त मदन और आप सभी सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम रजनीगंधा। दोस्तों, जब रात अपनी काली चादर ओढ़कर इस जमीन को सुलाने आती है तो आसमान में एक जादुई कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है लेकिन हर रात नई लगती है। जी हाँ, आज हमारे इस सुरीले सफर का नाम है चंदा और चांदनी। कितना गहरा, कितना पावन पवित्र और कितना मुकम्मल रिश्ता है ना इन दोनों का। चंदा अगर एक खामोश प्रेमी है तो चांदनी उसकी रूह है। चंदा के बिना चांदनी का कोई नाम नहीं और चांदनी के बिना चांद सिर्फ एक बेनूर पत्थर है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो चांद बनकर आसमां पर चमकता रहा, मैं चांदनी बनकर उसकी राहों में बिखरती रही। फासले तो बहुत थे दोनों के दरमियान, मगर वो रात भर मेरी रूह में उतरता रहा।

सोचिए, एक ठंडी शांत रात हो, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हो और आप अपनी खिड़की के पास बैठे हों। अचानक बादलों की ओट से चांद मुस्कुराता है और उसकी दूधिया चांदी चांदनी आपकी उंगलियों को छूकर गुजर जाती है। उस पल जो सुकून मिलता है, वही सुकून है रजनीगंधा की इस महकती महफिल में। चांदनी सिर्फ रोशनी नहीं है, ये धरती के नाम चांद का एक खत है। एक ऐसा खत जिसमें कोई अल्फाज नहीं होते, सिर्फ एहसास होता है, ठंडक का, सुकून का और उम्मीद का। चाहे रात कितनी भी खामोश अंधेरी क्यों न हो, चांदनी ये भरोसा दिलाती है कि सुबह का सूरज दूर नहीं है।

इसी गीत के बाद रजनीगंधा कार्यक्रम का यह अंक पूरा होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे

0: धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा केलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइगर

0: का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open Badminton Tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayya, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
2: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन

0: मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल एंड वेस्ट मध्य प्रदेश टुमारो. द मेट डिपार्टमेंट हैज प्रिडिक्टेड थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग ओवर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार ड्यूरिंग द नेक्स्ट टू डेज. एंड नाउ बिफोर वी एंड द बुलेटिन द हेडलाइंस वंस अगेन. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 people killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty clinch men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे. यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है. रात के 9:15 हुए हैं. अब से लेकर 11 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे.
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है. रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है.
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है.
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी.
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा.
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे.
4: तेरा जवाब नहीं.
2: छिड़ता है मोहब्बत का राग.
4: प्यार का राग सुनो रे.
2: बजता है छाया गीत विविध भारती से.
4: सदा रही है सदा रहेगी.
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला।

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में कार्य करते थे।

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है दोस्तों। फिल्में जो भी हो लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल कहा गया।

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।

राज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

0: ने अपनी शैली से हटकर, स्टाइल से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म सोलवा साल।
1: हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा।

पृथ्वीराज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।

0: चली है चोरी हो चोरी काली पलक पिया मूरी।
1: राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में ली।

वो तो यकीनन इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताजा बनाए रखेगा।

0: नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से। बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन, तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता रहा सदियों से। सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का सुख।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चले जाना।

कहीं कोई आवाज नहीं हुई, कुछ टूटा जरूर, पर भी आवाज दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान का लेबल चिपकाए जीते रहते हैं लोग, एहसास नहीं होने देते कि उनका दिल टूटा है।

कुछ कहना नहीं होता है, ना ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता, सब कुछ होंठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सा पुल है जो एहसास बनाती है।

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाती हैं, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क होता है।

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना, तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

दुनिया की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका

0: अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

0: is the last day for filing nomination papers for the elections. In the high-voltage IPL title clash, Gujarat Titans set a target of 156 runs for defending champions Royal Challengers Bengaluru (RCB) at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, RCB were 133 for 5 in 14.3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 11:10 हुए हैं। अब आज की हमारी सायंकालीन सभा संपन्न होती है। कल सुबह के विभिन्न